शुभ प्रभात। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलो हर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026। इस समय 5:57 और 10 सेकंड्स हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, 6 बजने जा रहे हैं। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में

0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। ओर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
3: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है और ऐसे में तर्क नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति का पतन आरंभ होने लगता है। इसलिए मन के विकारों पर विजय प्राप्त कीजिए और फिर निर्मल मन से ईश्वर की आराधना कीजिए।

जीवन में लक्ष्य अवश्य निर्धारित कर लेना चाहिए। बिना लक्ष्य के उसका आकार बढ़ाना संभव नहीं होता। जब हम चिंताग्रस्त होते हैं तो आम तौर पर उसका कारण होता है ईश्वर पर अविश्वास, और जब हम मन से शांत हों तो मुख्य रूप से उसका कारण होता है हमारा ये मानना कि जो है वो ईश्वर की इच्छा से है।

ईश्वर पर प्रगाढ़ विश्वास हो तो प्रयत्न भले ही कम हो, सफलता मिल ही जाती है। पूरे विश्वास से किया गया कर्म पूजा के समान होता है, जो हमेशा सकारात्मक फल देता है।

हम जानते हैं हम परिपूर्ण नहीं हैं, उपासना में भूल हो ही जाती है, श्रद्धा और विश्वास तो है मगर कितना ये भी नहीं जानते, कभी कभार क्रोधित भी हो जाते हैं। हमें एक नई शुरुआत के लिए ईश्वर की कृपा से फिर एक नया दिन मिला। हे प्रभु, आज का ये दिन देने के लिए हम नतमस्तक हैं।

हमें अपने प्रभु के प्रेम और कृपा पर पूर्ण विश्वास है। हमारा ईश्वर ही हमें दुख संतापों से बाहर निकालता है, वही हमारे बिगड़े हुए काम बनाता है।

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आज आपने समूह स्वर में देशभक्ति पूर्ण रचना के पश्चात हरिओम शरण, वाणी जयराम, शर्मा बंधु, प्रदीप चटर्जी और मुकेश के गाए भजन सुने। अब आज की वंदना संपन्न होती है।
1: भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का प्रसारण अभी आपने सुना आकाशवाणी भोपाल से। 6:30 हो चुके हैं। आइए श्रवण करें श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति को।

गरुड़ को अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाते हुए काकभुशुंडी ने कलयुग की चारित्रिक विशेषताओं का प्रसंग छेड़ दिया है, जिसे उन्होंने स्वयं अपनी आंखों देखा ही नहीं अपितु बहुत कुछ भोगा भी था। कलिकाल वैसे तो पाप और अवगुणों का युग है, किंतु

0: अनुराधा पौडवाल के स्वर में अभी आपने श्रवण किया श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति को। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से। समय हुआ है चिंतन का, आइए सुनते हैं।
1: जब स्कूल में पढ़ते थे तब टीचर अक्सर ये कहानी सुनाकर पाठ याद करने की प्रेरणा देती रहती थी। एक लड़का था, नाम था बोबदेव। पाठशाला में पढ़ने जाता तो था, परंतु मुसीबत ये थी कि उसे व्याकरण याद ही नहीं होती। एक दिन गुरुजी ने उसे डांटा, उसे बहुत शर्म आई, पाठशाला छोड़कर चल पड़ा निरुद्देश्य। भटकते भटकते एक कुएं के पास पहुंचा, वहां देखा कई स्त्रियां पानी भर रही हैं। उसने देखा स्त्रियां जहां घड़ा रखती हैं वहां तो गड्ढा पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, कुएं के जिस पत्थर से रस्सी लटकाकर भी पानी खींचती हैं उसमें भी रस्सी की रगड़ से गड्ढे पड़ गए हैं। ये देखकर बोबदेव की आंखें खुल गईं। अरे, मिट्टी के घड़े को रखते रखते या सन की रस्सी को खींचते खींचते उसकी रगड़ से पत्थर पर गड्ढे पड़ सकते हैं, तो क्या मेरा दिमाग इतना भोथरा है कि अभ्यास करते करते मुझे व्याकरण याद ही ना होगा। वो लौट पड़ा, उसने जी तोड़ परिश्रम किया और वो सफल होकर रहा। जिस व्याकरण के नाम से उसकी रूह कांपती थी वही व्याकरण उसके लिए खेल बन गया। आगे चलकर व्याकरण का वो महान पंडित बना। उसने व्याकरण पर एक पुस्तक भी लिखी। उसने चरितार्थ कर दिया हिंदी का वो दोहा, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल्वर परत निशान। आज भी ये कहानी किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले को प्रेरणा देती है। विद्या और कला, रुपया और पैसा, पद और सम्मान, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो परिश्रम से न मिल सके। लक्ष्मी परिश्रमी के पैर चूमती है, सफलता उसके गले में जयमाला डालती है। बस शर्त इतनी है कि हम हिम्मत ना हारें। इसी प्रसंग में पंत जी की ये पंक्तियां याद हो आती हैं। भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं जिसका छोटापन, वो समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय, दिन भर में मीलों चलती अथक कार्य से कभी न डरती। पंत जी ने चींटी का उदाहरण देकर हमको परिश्रम के प्रति जागरूक बनाया। चींटी का लघुत्तम जीवन परिश्रम से भरा हुआ जीवन।

0: जीवन है। वो अनवरत श्रम करती है, इसीलिए उसे अपना छोटापन नहीं अखरता। तो फिर क्या हम श्रम से अपने जीवन को सुख और समृद्धि के मार्ग पर नहीं ले जा सकते? इस तरह के उदाहरणों की कमी नहीं है। उद्योग और कठिन परिश्रम से ही मनुष्य का कार्य सिद्ध होता है, केवल इच्छा मात्र से नहीं। जैसे कि सोते हुए सिंह के मुंह में मृग स्वयं नहीं घुसते। परिश्रम के साथ ही साथ हमें समय की महत्ता का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि असमय परिश्रम व्यर्थ जाता है। इस प्रसंग में समय की महत्ता पर एक कहानी याद आ रही है। एक चित्रशाला में एक दर्शक ने एक चित्र देखा। उसका मुंह बालों से ढका हुआ था और पाँव में पंख लगे हुए थे। दर्शक ने चित्रकार से पूछा, ये चित्र किसका है? चित्रकार ने कहा, ये चित्र समय का है। फिर पूछा, इसका मुंह क्यों ढका हुआ है और इसके पैरों में पंख क्यों लगे हुए हैं? चित्रकार ने उत्तर दिया, इसका मुंह इसलिए ढका है कि जब ये लोगों के सामने आता है तो वे इसे पहचान नहीं पाते। इसके पैरों में पंख इसलिए लगे हैं कि जब कोई मनुष्य इसे नहीं पहचानता तो ये एकदम चल देता है, रुकता नहीं। चित्रकार की बात हृदय में बैठ गई और मन में समय का चित्र मंडराने लगा। अगर हम इसे केशों से पकड़ लें तो उसे पा सकते हैं, नहीं तो उसके मुड़ जाने पर उसे पाना असंभव है। फिर हम तो क्या, वो देवता की भी पकड़ के बाहर है।
1: चिंतन का प्रसारण अभी आपने सुना आकाशवाणी भोपाल से। 6:45 हुए हैं। कृषि चर्चा में अब आप सुनने जा रहे हैं कृषि अवशेषों का उचित प्रबंधन, और इस विषय पर डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा से ये जानकारी।
2: किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में हम बात करेंगे कृषि के अवशेष एवं उत्पादों की सही रूप से देखरेख करने के लिए। जैसा कि स्पष्ट है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 350 करोड़ टन इससे भी अधिक ज़्यादा कृषि अवशेष इतना हमारे फील्ड से प्राप्त होता है। हमारे किसान भाई अपने फील्ड में जैसे गहरी जुताई करते हैं या रोटावेटर से या इन्वर्टेड प्लाउ से, पलटीदार हैरो से, इनसे जो भी नरवाई या कृषि अवशेष निकलते हैं उस कृषि अवशेष को गहरी जुताई के दौरान मिट्टी में दबा देते हैं। मिट्टी में दबाने से अगली जब बरसात जब आएगी तो उस बरसात में ये सब कृषि अवशेष निश्चित तौर पर ये विखंडन होकर और ये भूमि में मिल जाएंगे। भूमि में वायु संचार बढ़ेगा, जल धारण क्षमता बढ़ेगी और जल धारण क्षमता बढ़ने से मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं उन सूक्ष्म जीवों को जो है कि खाना भी मिलेगा और इससे मिट्टी में NPK, नेत्रजन, स्फुर पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फर और CAMGS और माइक्रो न्यूट्रिएंट और सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी उसमें समावेश होगा। सूक्ष्म पोषक तत्वों का समावेश होने से मिट्टी की भौतिक दशा के साथ साथ रासायनिक दशा एवं बायोलॉजिकल या जैविक दशा भी सुधरती है और जैविक दशा सुधरने से मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है, वायु धारण क्षमता है और उत्पादन देने की जो दक्षता है वो बढ़ जाती है। कृषि अवशिष्ट फसल अवशेष का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, इसे हम नरवाई भी कहते हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी क्या जायद का सीजन चल रहा है, हमारे कई किसान भाइयों ने गहरी जुताई करने के बाद में अपने फील्ड ओपन रखे हुए हैं और ओपन रखने से फील्ड क्या क्लॉड यानी बड़े बड़े ढेले छोड़ दिए हैं। तो जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो मिट्टी में या जो ढेले में, ढेले के नीचे या आजू बाजू में हानिकारक जो कीट हैं और जो रोग पतंगे हैं यानी जिनके कारण फसलों में रोग आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही जून के अंत सप्ताह में जब मानसून आएगा तो मानसून के आने तक मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगी और ये गर्म होने से जो हानिकारक जीव हैं वो खत्म हो जाएंगे और हानिकारक जीव खत्म हो जाने से अगली फसल बहुत अच्छी प्राप्त होने की उम्मीद रहेगी। तो क्या कि नरवाई का प्रबंधन जो है कि करने के लिए हम एक चीज़ और है, जिन किसान भाइयों के पास में भूसा बनाने की मशीन है, जैसे स्ट्रॉ रीपर है या वेलर मशीन है, तो

0: से भी गत्ते बना सकते हैं, पैकेट्स बना सकते हैं, जिनकी बाजार में बहुत ज्यादा डिमांड है। और जिस समय चारे की कमी रहती है उस समय ये भूसा है तो जुगाली करने वाले जितने भी पशु हैं उनके लिए ये चारे का कार्य करेगा, भोजन का कार्य करेगा। तो इस प्रकार हम नरवाई का प्रबंधन यानी जो किसान करता है वो बुद्धिमान कहलाता है। इसके साथ साथ अगर नरवाई के जो प्रबंधन में अगर अपन वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो बहुत कुछ थोड़ा सा हिस्सा गैसिफिकेशन भी कर सकते हैं या इसमें ब्रिकेट्स बना सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। तो इन सब पद्धतियों से नरवाई से भाप या बिजली बनाने में भी इनका योगदान कर सकते हैं। बाकी अधिकांश जो यानी कृषि अवशेष हैं ये अनुपयोगी पड़ा रहता है। तो अनुपयोगी को हम जो है MB प्लाऊ से, जो इन्वर्टेड प्लाऊ है, उस प्लाऊ से हम मिट्टी में दबा दें। मिट्टी में दबाने से ये निश्चित तौर पर इनका विखंडन हो जाता है और मृदा की भौतिक दशा सुधरती है। तो आज की कृषि चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
1: कृषि चर्चा में अभी आपने ये जानकारी सुनी डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा से। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से मीडियम वेव 188.32 मीटर पर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ಹೀ ಕಟ್ಪಡೆ
1: ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें. धन्यवाद. जय हिंद.

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से मीडियम वेव 188.32 मीटर्स अर्थात 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। 6:55 होने जा रहे हैं। अब संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कर्तुं शक्नुवन्ति उतोवा अङ्कनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानाम् उत्तराणां पुनर्मूल्याङ्कनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इज़राइल लेबनानदेशौ वाशिङ्ग्टन् नगरे सञ्जातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः पञ्चचत्वारिंशत् दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिकादेशस्य विदेशविभागः अवदत्। विदेशविभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृतवार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जूनमासस्य द्वित्रिदिनाङ्कयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडाङ्गणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। सीएसके इत्यनेन प्रदत्तस्य अष्टाशीत्यधिकैकशत धावनाङ्कस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन एलएसजी इति दलेन सप्तदशैव क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलम् अष्टत्रिंशत् कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य नवतिधावनाङ्कानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तमक्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर

0: ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का और इसमें हम आपको जानकारी दे रहे हैं हमारी आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। सबसे पहले जानकारी आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। रोजाना की तरह दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल का प्रसारण आप सुनते हैं सुबह 7:20 पर। इसमें आज आप सुनेंगे नेशनल डेंगू डे के अवसर पर मध्य प्रदेश वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर हिमांशु जैसवार से वार्ता। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर पंकजा शुक्ला से खाद्य प्रसंस्करण पर बातचीत। इसके अलावा नमस्कार भोपाल में ही आप सुनेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के अवसर पर आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल के संग्रहाध्यक्ष और प्रकल्प समन्वयक साकेत सिंह कौरव से बातचीत। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा सुना जा सकेगा सुबह 8:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे रही सिंह यादव और साथ ही इनसे आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीत। समय रहेगा सुबह 9:15। अनमोल धरा इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा सुबह 9:30। इसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता पिघलते ग्लेशियर खतरे में दुनिया इस विषय पर विशेषज्ञ लोकेंद्र ठक्कर से पंकज नागर की बातचीत। जिले की चिट्ठी का प्रसारण किया जाएगा 10 बजे और फिल्मी गीतों को संयोजित कार्यक्रम गीत सागर का प्रसारण किया जाएगा 10:05 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला का प्रसारण समय रहेगा सुबह 10:30। इसमें आप सुनेंगे रविंद्र गरुड़ से राग भैरव में बांसुरी वादन और इसके अलावा 7:21 पर शाम को 7:21 पर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। बात आपकी गीत हमारे इसे आप सुनेंगे सुबह 11:00। आपकी फरमाइश का प्रसारण किया जाएगा दोपहर 12:00 और 2:30 पर। पंचतंत्र इसकी तीसरी कड़ी का प्रसारण आप सुनेंगे संग्रहालय से के अंतर्गत प्रसारण समय दोपहर 12:30। महिला सभा इसे आप सुनेंगे दोपहर 1:00 पर। लोक संगीत का आनंद लिया जा सकता है सुगम।

0: संगीत का प्रसारण किया जाएगा 1:45 पर, और शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी। ये चारों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र का योगदान होंगे। आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का तीसरा भाग आप सुनेंगे आज शाम 6:00। इसमें होगी भेंटवार्ता, यादें, अनुभव और बदलता प्रसारण परिदृश्य विषय पर आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक कार्यक्रम अनिल श्रीवास्तव से अमिता त्रिवेदी की बातचीत पर आधारित। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण किया जाएगा 7:45 पर। सुर्खियों में इसे आप सुनेंगे रात 8:00 और चित्र भारती। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से रात 9:30 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इसे भी आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से आज रात 10:00। इसमें कलाकार होंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव, इनसे आप सुनेंगे ख्याल गायन। ये था कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे का दूसरा पड़ाव, नीदरलैंड्स, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात से हुए कई समझौते। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर गैंगटोक पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। भोजशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया स्वागत, बोले ब्रिटेन से वापस लाएंगे मां वाग्देवी की प्रतिमा। और प्रदेश में गर्मी का कहर जारी, मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। यहां एम्स्टर्डम में विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने उनका स्वागत किया। यहां के बाद प्रधानमंत्री स्वीडन, नॉर्वे, इटली भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में 5 देशों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। कल श्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ $5 अरब के निवेश पर सहमति बनी है।
1: और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम जाएंगे। गैंगटोक में राज्य स्थापना दिवस समारोह में वे मुख्य अतिथि होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1975 में राजशाही खत्म होकर यह भारत का 22वां राज्य बना था। धार की भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने भोजशाला को मां वाग्देवी की आराधना स्थली माना है। डॉ. यादव ने कहा है कि अब श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना का पूरा अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे।
2: हमारी

0: इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूँ कि न्यायालय ने माना कि हाँ ये भोजशाला का स्थान था जहाँ राजा भोज ने माँ वाग्देवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूँ। स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो वाग्देवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक लेकर कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाएं। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत जमीन की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करने और ग्रामीणों को मुफ्त पट्टे देने का अभियान चलाने के निर्देश दिए। डॉ. यादव ने गांवों में स्कूल, खेल मैदान और बेहतर सुविधाएं देकर शहरों की ओर पलायन रोकने पर जोर दिया। देवास के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े इस एकल सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता करेंगे। आयोग घटना से जुड़े 5 बिंदुओं की गहन जांच करेगा और 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवा उद्यमियों अपर्णा और दिनेश से मुलाकात की। ये युवा उद्यमी रूडा नोट्स के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बने कागज के उत्पाद गुणवत्ता, कार्यक्षमता और टिकाऊपन में बेहतरीन हैं। मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अच्छी स्टेशनरी हमेशा से उनके दिल के करीब रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल शाम भोपाल के रविन्द्र भवन में नर्मदा चिंतन संगोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। गुड़ी पड़वा से शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान के तहत कुएं, बावड़ियां, तालाबों को फिर से उपयोगी बनाने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को समर्थ नर्मदा अलंकरण से सम्मानित किया। 3 मई को पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा अब 21 जून को दोबारा होगी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए 2 चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। पहले चरण में 19 से 22 मई के बीच ₹700 प्रति विषय शुल्क देकर उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मांगी जा सकती है। दूसरे चरण में 26 से 29 मई के बीच गलती के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। हर चरण में सिर्फ 1 आवेदन मान्य होगा। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को इसके लिए 9,522 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। राज्य सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत 1,32,000 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सब्जी में 54,000, मसालों में 56,000 और फलों में 18,000 हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। किसानों को ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस, आधुनिक तकनीक की मदद भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं। वहीं 98% से अधिक घरों का निर्माण शुरू हो गया है। 9 लाख से ज्यादा घर बनकर तैयार हो चुके हैं और लोगों को सौंपे जा चुके हैं। मंडला जिले के रामनगर में 2 दिवसीय आदि उत्सव का आज दूसरा और आखिरी दिन है। कल केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ज्वेल ओराम ने इस उत्सव का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि आयोजन जनजातीय संस्कृति परंपराओं को जीवित रखने का बड़ा मंच है। राज्य सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1,01,00,000 रुपए का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया है। इसके साथ 21 लाख का राष्ट्रीय सम्मान और 5-5 लाख के 3 शिखर सम्मान भी दिए जाएंगे। न्याय, सुशासन, कला, शौर्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश विदेश के लोग और संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। awards.mpmvspujain.com पर

कर आवेदन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग एकेडमी की बॉक्सर माही लामा ने वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह पक्की कर ली है। एनआईएस पटियाला में हुए ट्रायल में उन्होंने 2 मुकाबले जीते। आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खंडवा में सबसे ज्यादा 45.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। 12 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास के लिए तेज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन और मंडला में रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गांव-गांव जल संरक्षण के काम हो रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर ने पद्मश्री लोक कलाकार रमेश परमार और शांति परमार की कार्यशाला का भ्रमण किया। धार में 3 दिवसीय 11वें पद्मश्री फड़के संगीत समारोह का शुभारंभ कल शाम विक्रम ज्ञान मंदिर लालबाग परिसर में हुआ। पन्ना में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शहर के वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। खंडवा में शनिचरी अमावस्या पर हजारों श्रद्धालु माँ नर्मदा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आगर मालवा के सुसनेर में युवा संगम रोजगार मेले में 33 युवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ। अशोकनगर में संपर्क अभियान के तहत बिजली संबंधी सेवाओं के लिए घर घर शिविर लगाए जा रहे हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने 72 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आप सुनिए आकाशवाणी भोपाल से दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: नमस्कार, अभिनंदन। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में आपका स्वागत है।

ताज़ा तरीन खबरें, चुनिंदा फिल्मी गीत और विविध जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल का एक नया अंक लेकर हाजिर हूं मैं मेघा तिवारी। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलें। भारतीय संस्कृति में प्रकाश केवल रोशनी नहीं बल्कि ज्ञान, आशा और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे तत्व की जिसके बिना जीवन, विज्ञान, संस्कृति और सभ्यता सब अधूरे हैं। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के बारे में। हर वर्ष आज के दिन यानी 16 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें प्रकाश के महत्व, उसकी वैज्ञानिक उपयोगिता और मानव जीवन में उसकी अनिवार्यता का स्मरण कराता है। यूनेस्को द्वारा 2018 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। 16 मई की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन वर्ष 1960 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक थियोडोर मेमन ने पहली बार सफल लेजर का प्रदर्शन किया। प्रकाश केवल सूर्य की किरणों तक सीमित नहीं है। आज विज्ञान और तकनीक के युग में प्रकाश ने चिकित्सा, संसार, शिक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान तक में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में लेजर तकनीक ने अनेक जटिल उपचारों को सरल बनाया है। इंटरनेट और फाइबर ऑप्टिक संचार व्यवस्था भी प्रकाश पर आधारित है। सौर ऊर्जा आज स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत बन चुकी है। और प्रकाश का महत्व केवल ज्ञान तक सीमित नहीं, यह हमारे मानसिक और सामाजिक जीवन का आधार बन चुका है। दीपक की लौ हो

सूर्योदय की पहली किरणें हो या ज्ञान का प्रकाश, हर तरह से मानव जीवन को दिशा देता है। लेकिन आज जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, तब हमें ऊर्जा के विवेकपूर्ण उपयोग की भी आवश्यकता है। अनावश्यक बिजली की खपत कम करना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना इस दिवस का वास्तविक संदेश है। क्यों ना आज इस दिवस पर हम सुने ये गीत फिल्म भाभी की चूड़ियां।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: न्यूज ऑन AIR और DTH के ऑडियो चैनल्स के माध्यम से आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल और कार्यक्रम है नमस्कार भोपाल। वक्त मिलाइए, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:28 हो चुके हैं। अब हम आपको समाचार पत्रों की सुर्खियां बताते हैं। पहली खबर है, मध्य प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ ने धार भोजशाला परिसर के विवादित हिस्से को मंदिर माना है। आदेश में अंकित है कि हमने इस स्थल पर हिंदू पूजा की निरंतरता को नोट किया है, हालांकि समय के साथ इसे विनियमित किया गया। हमने ये निष्कर्ष

निष्कर्ष को दर्ज किया है कि यहाँ का ऐतिहासिक साहित्य इसे राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के स्थान के रूप में स्थापित करता है। ये धार में वाग देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर के अस्तित्व का संकेत देता है। यह वाग देवी के मंदिर वाली भोजशाला के रूप में माना जाता है। अगली खबर है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस नीट यूजी टेस्ट के 3 मई की परीक्षा रद्द करने के बाद अब सरकार ने नई परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया है। अगली परीक्षा 21 जून को होगी, जिसके लिए 14 जून तक विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। खास बात यह है कि अगले साल से नीट परीक्षा में ओएमआर शीट बंद कर दी जाएगी, इसकी जगह कंप्यूटर बेस्ड कर ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाएगी। और मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा माह के तीसरे शनिवार को हिंदी भवन में वरिष्ठ विमर्श का आयोजन किया जाता है। विमर्श में हर बार किसी समसामयिक विषय पर विमर्श होता है। इस बार नवाचार करते हुए व्यंग पाठ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम आज शाम को 4 बजे हिंदी भवन में होगा। विमर्श के संयोजक श्री महेश सक्सेना ने बताया कि विमर्श में शामिल लोग समसामयिक विषयों पर व्यंग पाठ कर सकते हैं। हर व्यंग पाठ के लिए 3 से 4 मिनट का समय नियत किया गया है। और भारत भवन में 22 से 24 मई तक 3 दिवसीय संतवाणी समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में संत कवियों के पदों और भक्ति रचनाओं के गायन देश के ख्याति प्राप्त गायकों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। समारोह का आयोजन अनहद भारत भवन द्वारा किया जा रहा है। और द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भोपाल शाखा द्वारा आज महिलाओं और युवा सदस्यों के लिए 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर किरण बेदी खास मेहमान होंगे। कार्यक्रम मिंटो हॉल में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन विमेन एंड यंग मेंबर्स एक्सीलेंस कमेटी के तत्वाधान में किया गया है। और राजधानी में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। दिन के साथ अब रातों में भी लोगों की राहत की खबर नहीं मिल रही है। तेज धूप, गर्म हवाओं और उमस भरे वातावरण ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों ने लू की चेतावनी देते हुए बचाव की सलाह दी है। गुरुवार के मुकाबले तापमान 0.6 डिग्री की मामूली गिरावट आई, लेकिन गर्मी का असर बरकरार रहा। गुरुवार को अधिकतम तापमान 83.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी हीट वेव की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है। विशेषज्ञों के अनुसार लगातार बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और एक और खबर है, स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर नगर निगम का पूरा अमला मैदान में उतर गया है। शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त ने स्वच्छता अमले के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। कमिश्नर ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि शहर के सभी गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन की स्थिति में तत्काल सुधार किया जाए। बैठक में कचरा पृथक्करण यानी कि वेस्ट सेग्रीगेशन पर सख्त रुख अपनाते हुए आयुक्त संस्कृति जैन ने आदेश दिए हैं कि कचरा संग्रहण वाहनों में किसी भी कीमत पर मिक्स्ड कचरा नहीं लिया जाएगा। नागरिकों को सूखा और गीला कचरा अलग अलग देने के लिए जागरूक किया जाए। इसके साथ ही गार्बेज स्टेशन पर कचरे के ढेर को कम से कम करने और वहां से त्वरित निष्पादन के निर्देश जारी किए हैं। ये थी कुछ प्रमुख खबरें। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का, जो हमने चुना है फिल्म मिस मैरी से।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल और कार्यक्रम है नमस्कार भोपाल, और अब आपको सुनवाते हैं एक जानकारी प्रदवार्ता। असल में आप सभी जानते हैं कि गर्मी बढ़ रही है और तापमान में उछाल के संकेत क्लियर हैं। विविध जानकारियों के दिशा निर्देश अगर माने तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन स्वास्थ्य तब अच्छा रहेगा जब हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका भी ख्याल रखें। भोजन का किस तरह से ध्यान रखा जा सकता है, कैसे फूड को हम नेचुरली प्रिजर्व कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकजा शुक्ला का, जो हमें जानकारी देंगी खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं।
2: मैं फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल से रिटायर्ड प्रोफेसर हूं और मेरी पोस्टिंग इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल में रही है। हमारा जो देश है कृषि प्रधान है, यहाँ पर फल सब्जियाँ अनाज दालें बहुतायत से होती हैं, लेकिन क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं वो अशिक्षित हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि इसका प्रिजर्वेशन या संरक्षण कैसे किया जाए। तो ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारी जो फसलें हैं उनका हम ये देखते हैं कि लगभग 30-40% खराब हो जाता है अज्ञानता के कारण, और इसी को हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी कहते हैं। तो यदि हम इसको बचा लें तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो समाज है या हमारी जो जनता है उसको पौष्टिक भोजन भी मिलेगा और इसके साथ ही साथ हमारी जो निर्यात की क्षमता भी बढ़ेगी और बाहरी देशों से भी हमें विदेशी मुद्रा का लाभ हो सकेगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जो भी फसल प्रकृति में हमारे द्वारा प्राप्त की जा रही है उसको हम संरक्षित रखें। तो संरक्षण बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ये देखते हैं कि संरक्षण 3 तरीके से किया जा सकता है। धूप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हम ये देखते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है और जब धूप तेज़ रहती है, जब हमारे यहाँ का टेम्परेचर जनरली हम देखते हैं कि 42 से 45 डिग्री के बीच में रहता है, तो ये जो है हमारे सूक्ष्म जीवों की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है, और फूड में जो पानी होता है उस पानी की उपस्थिति के कारण ही हम देखते हैं कि उसमें बैक्टीरिया की और यीस्ट की और इसके साथ ही साथ फफूंद की ग्रोथ होती है। तो यदि हम भोज्य पदार्थों में से पानी के परसेंटेज को कम कर दें, यानी पानी उड़ा दें या पानी सुखा दें, तो उस भोजन को हम बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे आलू, हमारे बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि प्राचीन समय से हमारे यहाँ की जो महिलाएं थीं और जो पुरुष थे उनको फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री यद्यपि उनके पास नहीं थी, लेकिन उनका जो ज्ञान था, पूर्वजों का ज्ञान भोजन के संरक्षण के बारे में बहुत अच्छा था। तो हमारे यहाँ की जो महिलाएं थीं वो अचार, पापड़, बड़ी, इस तरह से भोजन को संरक्षित रखती थी जिससे कि उनका लंबे समय तक वो टिकाऊ रह सकें और साल भर तक हम उनके स्वाद का आनंद ले सकें। इसलिए सूर्य की किरणों में जो है हम देखते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं और वो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। इसलिए गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि महिलाएं अधिकांशतः चिप्स, बड़ी, पापड़ बनाती हैं, और जिन जगहों पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, विशेषकर हम देखें

0: यूपी और बिहार में वहाँ पर अचार को सुखाकर बनाया जाता है। ये देखा गया है कि पानी का परसेंटेज यदि हमें करना है तो वो क्या करते हैं कि फल और सब्जियों को जिनका अचार बनाना है उनको काट के धूप में 1 या 2 दिन बहुत अच्छे से सुखा लेते हैं, जिससे कि उनकी वाटर एक्टिविटी, इनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो वाटर एक्टिविटी बहुत बढ़ी रहती है। और उस वाटर एक्टिविटी को कम करने के लिए हमें पानी उड़ाना ज़रूरी है। आंवला सुखाया जाता है, आंवले की विभिन्न चीज़ें बनाकर, मेथी को, पुदीना को सुखा कर यदि रख लिया जाए तो ये हमें लंबे समय तक उसका हम आनंद ले सकते हैं। एक तो ये हो गया धूप से सुखाने वाला। फिर दूसरा हम ये देखते हैं कि फर्मेंटेशन यानी खमीरीकरण से भी हम बहुत लंबे समय तक चीज़ों को अच्छा रख सकते हैं। जब हम अचार बनाते हैं तो अचार बनाने की प्रोसेस में नमक से हम संरक्षण करते हैं। नमक एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। यदि हम 15% नमक का उपयोग करते हैं वजन से, यदि किसी भी हमने फल या सब्जी को लिया है, जैसे मान लीजिए 1 किलो हमने कैरी ली है और उसमें हम 150 ग्राम यदि नमक डाल देते हैं तो इस लेबल के ऊपर, इस स्तर के ऊपर आकर जो स्पॉइलेज का कॉजिंग या जो खराब करने वाले, भोजन को खराब करने वाले जो बैक्टीरिया है उनकी वृद्धि रुक जाती है और नमक से संरक्षण हो जाता है। नमक के साथ ही साथ जब हम नमक डालते हैं उसमें तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, नमक उसको प्रमोट करता है, उसको बढ़ाता है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से हमारे अचारों का फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक फर्मेंटेशन उसको हम कहते हैं, और उससे भी हम अचारों को, सभी प्रकार के जो फल और सब्जियां हैं उनके अचारों को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये एक प्राकृतिक विधि नमक के द्वारा हो गई। दूसरी विधि हमारी है शक्कर के द्वारा। हमारे समाज में, हमारे इसमें शक्कर की बहुत आयत है, बहुत महंगी भी नहीं है शक्कर, आसानी से उपलब्ध है। तो जो सब्जियां और फल हैं उनका हम मुरब्बा बनाकर भी उनको साल भर के लिए संरक्षित कर सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि दूध एक ऐसा पदार्थ है कि जो बहुत जल्दी ख़राब होता है और गर्मी के दिनों में दूध को संभालना मुश्किल होता है। संपन्न घरों में हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर की सुविधा होती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जहाँ की आबादी गरीब वर्ग की है, इसके साथ ही साथ बिजली पूरे समय उपलब्ध नहीं होती, तो यदि दूध को हम खमीरीकृत कर लें, यदि दूध से दही बना लिया जाए और छाछ बना लिया जाए तो दूध की बजाय इसकी शेल्फ लाइफ यानी हम कह सकते हैं कि उसकी जो टिकाऊ रहने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है, तो दूध के बदले हम उसको दही बना सकते हैं। दही से छाछ, घी वगैरह इस तरह की चीज़ें बनती है, तो दूध से दही और छाछ थोड़ा सा ज़्यादा टिकाऊ होता है और उतनी जल्दी ख़राब नहीं होता जितना कि दूध ख़राब होता है। दाल और अनाजों में भी यदि मॉइस्चर की या आर्द्रता की मात्रा 12 से 14% से ज़्यादा हो तो उसमें घुन लगने की और कीड़ा लगने की संभावना होती है। इसलिए यदि जब अनाज आता है और अनाज को यदि हम गर्मी में, धूप में बहुत अच्छे से सुखा लें, 1 या 2 दिन अच्छे से सुखा लें, तो धीरे धीरे धीरे उसका पानी उड़ जाता है और उनको भी, अनाजों को भी हम लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं।
1: इन्फॉर्मेटिव रहा आपसे ये बात करना, थैंक यू वेरी मच। आपने कीमती वक्त निकाला और ये विशेष जानकारी हमारे सभी श्रोताओं को दी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर पंकजा शुक्ला अभी हमारे साथ थी, जो हमें खाद्य प्रसंस्करण के बारे में जानकारी दे रही थी। गीत फिलहाल पर से।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: नमस्कार, भोपाल सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। जैसे कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है, लेकिन इसी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज है नेशनल डेंगी डे। ये एक ऐसा दिवस है जिसमें बरसात आने से पहले हमें किस तरह से अवेयर रहना चाहिए इस वायरल डिसीज से बचाव के लिए, आइए जानते हैं विस्तार से। जानकारी देने के लिए स्वागत करते हैं वेक्टरबॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर हिमांशु जैसवार का।
3: धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, आज के दिन जिसको हम नेशनल डेंगी डे के रूप में मनाते हैं, बेसिकली इसका जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य वही है कि आमजन को हम डेंगी रोग के प्रति सजग करें, जागरूक करें। और ये सही समय है कि बरसात के पूर्व जब ये डेंगी के प्रारंभ की केसेस आना प्रारंभ हो जाते हैं, तो उसकी तैयारियां, उसकी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जो जो उपाय हम कर सकते हैं, उसके लिए हम एक आवश्यक कार्य योजना तैयार करें। तो ये एक दिन हमें याद दिलाता है कि हम आगामी समय में मानसून प्रारंभ होने वाला है और हमें उसकी डेंगी रोग की रोकथाम के लिए क्या आवश्यक तैयारियाँ या क्या आवश्यक रोकथाम के उपाय हैं, उसको हम कैसे अपना सकते हैं, उसके बारे में हम आम आदमी को जागरूक कर सकते हैं।
2: जी, अगर आप शुरुआती लक्षणों के बारे में बेसिक जानकारी दें।
3: देखिए, डेंगी रोग आप स्वाभाविक है, सभी को पता है कि एक वायरल रोग हो गया है, और वायरल रोग के होने के साथ साथ में मध्यम से तेज बुखार आता है। बुखार के साथ में अगर शरीर पे रैशेस हैं या मतलब चकत्ते पड़ रहे हैं, उसके साथ में ही दर्द है शरीर के अंदर, खासकर जॉइंट पेन है, पीठ में दर्द है, और आंखों के पीछे अगर दर्द बना है जिसको रेट्रोऑर्बिटल पेन हम कहते हैं, तो वो डेंगू के प्रमुख लक्षण हैं। पर प्रायः देखने में आया है कि अन्य लक्षणों के साथ में जैसे सिर दर्द है, हल्की सर्दी खांसी है, और बदन दर्द के साथ में भी डेंगू के तेज बुखार के लक्षण अगर आते हैं, तो हम इसको डेंगू बुखार के रूप में पहचान सकते हैं। इसकी आसान सी जाँच है, अगर आप अपने नज़दीकी शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, अस्पतालों में, तो एलाइजा मेथड से आप इसका डेंगू का जांच कर सकते हैं। तो इसमें आप NS1 एलाइजा टेस्ट करा सकते हैं और IgM एंटीबॉडी एलाइजा टेस्ट करा सकते हैं।
2: इसमें कितना टाइम लगता है सर रिकवरी में? और ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से अगर कोई ड्राइव है अवेयरनेस के लिए, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसकी जानकारी भी दें।
3: देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। ये डेंगू एक बेसिकली वायरल रोग है, तो वायरल रोग सामान्यतः 7 से 10 दिन के अंदर स्वतः ठीक हो जाते हैं, या इसे कहा जाए ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है। तो लगभग देखा गया है कि 80 से 90% लोग सामान्यतः सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़, वायरल डिसीज़ के अंदर ठीक हो जाते हैं, अगर वो कोई उपचार ना ले तो। केवल उनको कुछ साधारण सी सावधानियाँ अपना रखना है और सिम्टोमेटिक उपचार लेना है। सिम्टोमेटिक सा मेरा कहना है कि जैसे लक्षण हो रहे हों, जैसे मान लीजिए बुखार आ रहा है तो बुखार के लिए हम पैरासीटामोल ले सकते हैं, कोई अन्य दर्द निवारक गोलियां ना लें, और अगर सर दर्द है, उल्टी है, पेट दर्द है, या फिर जो अन्य

0: जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनका लक्षण आधारित उपचार होता है, तो उसको सिम्टोमेटिक उपचार कहते हैं। तो कोई इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। अच्छी मात्रा में मतलब प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थ लें, शरीर का हाइड्रेशन मेंटेन रखें, प्रॉपर रेस्ट रहें, बॉडी को अपना बैलेंस डाइट प्रदान करें, बहुत हैवी ना खाएं। इससे आपका शरीर जो है बीमारी के प्रति लड़ने में ज़्यादा महत्वता दिखा सकता है और इससे आप जल्दी रिकवर हो सकते हैं। तो कुल मिला के जो देखा गया कि लगभग 70-80% अगर पेशेंट्स अगर अपने घर में आराम करते हैं, मच्छरदानी में रहते हैं, प्रॉपरली हाइड्रेट होके अपना मेंटेन करके रखते हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं, रेस्ट करते हैं और अपना बैलेंस लाइट लाइट डाइट अगर लेते हैं, तो वो स्वतः ठीक हो सकते हैं। और इसके अलावा जो 10 से 20% पेशेंट अगर थोड़े से सीरियस जाते हैं, जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगी हेमरेजिक्स सिंड्रोम में जो कन्वर्ट होते हैं, उनमें यही है कि कुछ पेशेंट्स में प्लेटलेट कम होता है या ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती है, तो उनमें एक थोड़ी सीवियरिटी देखने में आती है। पर प्रदेश में यह देखने में आया है कि जन जागरूकता होने के कारण स्वाभाविकता सभी लोग जो हैं समय रहते हैं डेंगू की जांच करा लेते हैं और उसका प्रारंभिक उपचार प्रारंभ कर देते हैं।
1: नमस्कार। भोपाल में अभी हमारे साथ है वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर हिमांशु जायसवाल। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कीमती वक्त निकाला। अब वक्त हो चला है एक और गीत का, लीजिए सुनिए।

0: जैसे कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट आज मनाया जाता है। इस अवसर पर अब हम आपको सुनवाते हैं हमारी बातचीत आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल के संग्रहालय अध्यक्ष और प्रकल्प समन्वयक डॉक्टर साकेत सिंह कौरव से। आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार, आपके आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की ओर से ढेर सारी प्रकाशमयी शुभकामनाएं।
0: जी, वेरी राइटली सेड। आज का दिन इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में भी आइडेंटिफाई किया जाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे साइंटिफिकली आज के दिन के क्या मायने हैं आपके नज़रिए से।
1: 16 मई जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार सक्सेसफुल लेज़र कम्युनिकेशन 1960 में हुआ था। और आप जानते हैं लेज़र कम्युनिकेशन का मतलब है कि लाइट को ट्रैवल कराया गया। लाइट को ट्रैवल कराया गया तो द पावर ऑफ लाइट जो आज हम और आप आपकी श्रोता भी अगर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और अगर वो डिजिटल एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट में अगर वो फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है तो उनके घर तक भी प्रकाश के माध्यम से ही सूचनाएं जा रही हैं। यानी लेज़र लाइट जो है, ऑप्टिक्स जिसमें काम करती है, ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन था एज अ एडवांस सिविलाइजेशन, कि हमने जानकारी को और अधिक मात्रा में प्रवेश करना या भेजना सीख लिया है। पहले हम रेडियो कम्युनिकेशन से माइक्रोवेव के थ्रू सिग्नल, जो आज भी हम मोबाइल्स में या बाकी टेलीफोन एंटीनाज या बाकी सेटेलाइट कम्युनिकेशंस में करते हैं, पर लेज़र कम्युनिकेशन जो है उसके लिए फाइबर ऑप्टिक्स, यानी उसमें ऑप्टिक्स प्रकाश के वो दर्पण की श्रृंखलाबद्ध चीज़ें भी लगती हैं और लेज़र का इस्तेमाल भी होता है। तो ये कमाल का सेलिब्रेशन 16 मई को होता है। तो विज्ञान केंद्र ने भी कुछ बच्चों को, विद्यार्थियों के साथ में प्रकाश से जुड़ी हुई गतिविधियों को प्लान किया है, जिसमें कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे

0: एग्जिबिट हैं जो ब्रदर्स हैं, जो प्रकाश के रंगों को मिक्स करने पे बनने वाली छाया या उनकी अनुपस्थिति से वो दोबारा रीइमेज करना, या दर्पण गैलरी में एक हमारा कैलिडोस्कोप है जिसमें लाइट और जो एक्चुअल लाइट सोर्स को रिफ्लेक्शन से मल्टीपल इमेजेस बनना, तो इन सब से हम अवगत कराएंगे। और जो प्रकाश अबंडेंस में इस प्लैनेट पे है सन के कारण, पूरी पृथ्वी पे अगर सबसे ज़्यादा कोई क्लीन एनर्जी है तो वो है सूर्य प्रकाश, तो उसके प्रति एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन कि हम अभी भी पूर्ण रूपेण सूर्य से निकलने वाली किरणों के आधार पर जो लाइट हमारे पास पहुंचती है उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एज आधुनिक सभ्यता होने के नाते भी हमारे पास बहुत स्कोप है। जिस दिन इसकी कन्वर्जन लगभग लगभग 90% भी हो गया, एक स्क्वायर मीटर में रफली 1300 से 1400 वॉट के आसपास एनर्जी सन से आती है, इरेडिएशन बोलते हैं। वो एनर्जी हम हमारे जो करंट सोलर फोटोवोल्टिक सेल हैं वो 8 to 15 और मे बी आसपास के ही दक्षता के साथ कन्वर्ट कर पाते, तो पूरी ऊर्जा नहीं कर पाते। तो इतनी क्लीन एनर्जी अगर हम कन्वर्ट कर पाए तो ऊर्जा की जो सबसे बड़ी चुनौती है आज और आप और हम जब बात कर रहे हैं, एनर्जी इज एवरीथिंग। हर राष्ट्र अपनी एनर्जी को सेव करना चाहता है और अगर उसे आधुनिक होना है तो ऊर्जा के नए जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर निर्भर होना, तो उसमें प्रकाश बहुत ही पुंजमय रोल प्ले करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जो प्रकाश की ताने वाने के इर्द गिर्द बुने गए हैं, यानी उसकी जो साइंस है लाइट से भी जुड़ी हुई है, चाहे इंफ्रारेड लाइट के सोर्स की बात हो, चाहे आप आरजीबी यानी तीन कलर जो हैं उससे मिलकर जो शेडो बनती है अलग अलग कलर्स में, या फिर फोटो ल्यूमिनेसेंस मटेरियल हो, ऑप्टिक्स हो। तो आप 9:30 से 6, 7 दिन विज्ञान केंद्र खुला है। जिस दिन भी उत्कंठा जागृत हो उसका इंतजार ना करें, बस आप तो रुक करें, श्यामला हिल्स स्मार्ट सिटी रोड भोपाल में स्थित है ये, और ये 7 दिन खुलता है साल में 363 दिन। तो प्रकाश से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं और उससे रोमांच और जो अनुभव है उसको आपको साधना है, एक्सपीरियंस करना है, तो आपको आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल आना होगा। और खास में एक कमाल की बात, इस श्रोता जो आपके टकटकी लगाकर सुन रहे होंगे कि यार प्रकाश की बातें कर रहे हैं पर ध्वनि तरंगों की ताल से तो ये आवाज़ पहुंच रही है उनके कानों तक, तो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है और इस दिन हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स की भारत में जितने भी साइंस सेंटर हैं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन, उन सब का प्रवेश जो एंट्री टिकट है वो फ्री होगी निःशुल्क, ताकि आप साइंस सेंटर में जो टिकट लगता है एंट्री वो उस दिन नहीं लगे क्योंकि उस दिन हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे मना रहे हैं। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि 16 मई को प्रकाश दिवस मनाएं हमारे साथ और 18 मई को निःशुल्क एंट्री के साथ विज्ञान की यात्रा में जुड़ें, और शाम को हम कुछ जानकारी भी देखें जिसमें जुपिटर हमारा इंतजार कर रहा होगा और हम उस कार्यक्रम को मानव संग्रहालय में भी कर रहे हैं।
1: जी, बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह हमसे बात करना बहुत ही जानकारीप्रद रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी आकाशवाणी परिवार को, आपको भी जिस प्रखरता और उत्सुकता के साथ आप अपने श्रोताओं तक हमारे सहपाठी बन के विज्ञान केंद्र के ये जानकारी लेके पहुंचते हैं। यही बात है, आकाशवाणी हमारा सबसे अद्वितीय माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार भोपाल का प्रसारण अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी भोपाल है। 8 बजने जा रहे हैं, थोड़ी देर में समाचार प्रभात का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
3: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत

0: साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
4: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
5: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री

0: ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और UAE के बीच LPG की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा LPG संकट, UAE से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हमलों की निंदा की। लोक सत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा UAE। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, NEET UG की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही CBI दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, CNG के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना UAE पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे

चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Modi reaches Netherlands on second leg of his five-nation tour. Prime Minister Modi rejects media report imposing tax on foreign travel. CBSE announces window for re-evaluation of answer sheets for class 12 students. Israel and Lebanon extend ceasefire for 45 days. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Malaysian duo in semi-finals of Thailand Open. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। मित्रों, आज विश्व प्रकाश दिवस है। ये दिन याद किया जाता है लेजर के योगदान में, जिसकी वजह से हम आज चिकित्सा विज्ञान में इतनी तरक्की कर पाए हैं। और मित्रों, कुछ दिवस ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन मनाए जाने चाहिए। एक ऐसा ही दिवस हमने कल मनाया था, विश्व परिवार दिवस। परिवार जिसके बगैर समाज नहीं बन सकता, परिवार जिसके बगैर एक व्यक्ति की अहमियत को बताने का सबसे बड़ा जरिया है परिवार। परिवार जिसके माध्यम से समाज विकास के रास्ते खुलते हैं। हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस घोषित किया था और 1995 से यह सिलसिला हर साल मनाया जा रहा है। मित्रों, परिवार एक बहुत छोटी सी इकाई होता है, लेकिन ये वो इकाई होती है जिससे समाज बनता है और समाज से राष्ट्र। तो किसी भी राष्ट्र की बुनियाद अगर कही जाए तो वो होती परिवार में। परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना भी दुष्कर है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या फिर है, उससे अलग होकर उसके अस्तित्व को सोचा ही नहीं जा सकता। हमारी संस्कृति और सभ्यता कितने ही परिवर्तनों को स्वीकार करके अपने को परिष्कृत कर ले, लेकिन परिवार संस्था के अस्तित्व पर कोई आंच नहीं आई है।

दोस्तों, परिवार कुछ लोगों के साथ रहने से ही नहीं बन जाता। इनमें रिश्तों की एक मजबूत डोर होनी चाहिए, सहयोग के अटूट बंधन होने चाहिए, एक दूसरे की सुरक्षा के वादे के और इरादे होने चाहिए। हमारा ये फ़र्ज होना चाहिए कि इस रिश्ते की गरिमा को हम बनाए रखें। हमारी संस्कृति में, परंपरा में पारिवारिक एकता पर हमेशा से बल दिया जाता रहा है। परिवार एक संसाधन की तरह होता है, परिवार की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं और इस संसाधन के कई तत्व होते हैं। एक पहुंचे हुए दार्शनिक दूलन दास ने कहा है, दूलन ये परिवार सब नदी नाव संजोग, उतरे परे जहते हैं चले सबे बटाऊ लोग। जैनेन्द्र ने इतस्त में कहा है, परिवार मर्यादाओं से बनता है, परस्पर कर्तव्य होते हैं, अनुशासन होता है और उस नियत परंपरा में कुछ जनों की इकाई के हित के आपस में जुटकर चलने की वजह से ही हर सदस्य अपना आत्मदान करता है और जिसकी वजह से इज्जत खानदान की होती है और इसी खानदान में हम आगे अपने भविष्य को देखते हैं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, परिवार वो कड़ी है जिसकी वजह से ही हर धर्म, जातियों और संप्रदायों में लोग आपस में जुड़ पाते हैं। आज के दौर में भले ही परिवार में ये देखा जाने लगा है कि छोटा परिवार लोग अपनाने लगे हों, लेकिन फिर भी संयुक्त परिवार वो आदर्श है जिसके छांव तले प्रत्येक व्यक्ति रहना चाहता है। संयुक्त परिवार में दो या तीन पीढ़ियां और कभी कभी इससे भी अधिक पीढ़ियों के व्यक्ति एक ही घर में अनुशासन के साथ एक ही रसोई घर में भोजन और जीवन की ज़रूरी चीज़ों का उपभोग करते हैं, एक ही परिवार के धार्मिक कृत्यों और संस्कारों में भाग लेते हैं। ये वो परिवार होते हैं जिसमें आदर्शों को लेकर, संभावनाओं को लेकर और व्यक्तित्व विकास की बातों को लेकर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिनकी वजह से इस परिवार को प्राथमिकता दी जाती रही है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, जब आज का ये कठिन समय जिसमें मानसिक तनाव, अकेलापन और टूटते मानवीय रिश्तों की आहटें हमें सुनाई दे रही है, ऐसे भीषण दौर में परिवार न केवल रहने की जगह है बल्कि हमारे अस्तित्व, सुरक्षा और संस्कार और संवेदनाओं को समेटने वाली मजबूत छत बनकर भी हमारे सामने आता है। आज जब जीवन की आवश्यकताओं के लिए भागदौड़ इतनी बढ़ती जा रही है कि इस चक्कर में हम अपने आप को भी झोंक दे रहे हैं, ऐसे दौर में जहां आर्थिक संकट भी गहरा रहा हो, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी हम खोखले होते जा रहे हों, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबते जा रहे हों, तो ये संकट केवल एक व्यक्ति पर नहीं टूटता। अकेलेपन से उपजा अवसाद पूरे परिवार को भी ख़त्म कर सकता है। ऐसे दौर में जब हम बहुत छोटे छोटे से फ्लैटों में, छोटे छोटे से पिंजरों में खुद को कैद करने लगे हों, हर तरीके से आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद भी भीतर से कंगाल हो रहे हों,

तब परिवार की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। वृद्ध माता पिता उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, बच्चों संस्कारों से दूर हो रहे हैं और पति पत्नी के बीच संबंधों की ऊष्मा ऊर्जा कम होती जा रही है। ऐसे दौर में परिवार के बीच मानसिक रोग, तनाव, असुरक्षा और आत्महत्याओं की घटनाओं की बाढ़ आ रही हो, ऐसे दौर में परिवार की नामक एक संस्था की फिर से हमें उस संस्था की ओर लौटने की दरकार है।

दोस्तों, आज आवश्यकता इस बात की है कि परिवार को केवल उपभोग और सुविधा का केंद्र न बनाकर उसे आत्म जागरण का केंद्र भी बनाया जा सकता है, अहिंसा की प्रयोगशाला बनाई जा सकता है। अहिंसा का अर्थ केवल किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं है, कठोर शब्दों से बचना है, अपमान न करना है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना है, क्रोध पर संयम रखना है और सबसे बड़ी बात संवाद बनाए रखना है और क्षमा का अभ्यास करना भी अहिंसा ही है। यदि परिवार के भीतर भाषा की कटुता, अपमान और असहिष्णुता होगी तो समाज में शांति की कल्पना कैसे की जा सकती है। परिवार वो पहला स्थान होना चाहिए जहाँ पर बच्चा सहिष्णुता और करुणा का पाठ पढ़े, सीखे और जीवन में उतारे।

0: आकाशवाणी भोपाल से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आप 9 बजे से 9:15 के बीच भी सुन सकते हैं। अभी 8:58 होने जा रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। यहां एम्स्टर्डम में विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने उनका स्वागत किया। यहां के बाद पीएम स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम जाएंगे। गैंगटोक में राज्य स्थापना दिवस समारोह में वे मुख्य अतिथि होंगे। धार की भूशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने भूशाला को मां वाग्देवी की आराधना स्थली माना है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक लेकर कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाए। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। CBSE ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए 2 चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे और हर चरण में सिर्फ 1 आवेदन मान्य होगा। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खंडवा में सबसे ज्यादा 45.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ और 12 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार रहा। और IPL में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 ईडन गार्डन्स में KKR और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी भोपाल है और एक बार पुनः आपका

स्वागत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा में। मित्रों, परिवार वो पहला स्थान होना चाहिए जहाँ हमारे बच्चों को ये सिखाया जाए कि जीवन केवल प्रतियोगिता नहीं है, हमारा सहअस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जहाँ बुजुर्ग बोझ नहीं अनुभवों की धरोहर माने जाएं, जहाँ स्त्री को सम्मान मिले, बच्चों को संस्कार और युवाओं को विश्वास। आज दुनिया में बढ़ती हिंसा का एक बड़ा कारण ये भी है कि परिवार में संवाद और संवेदना कम हो रही है, यूँ कहें कि ख़त्म हो रही है। बच्चे मोबाइल से बातें कर रहे हैं लेकिन माता पिता से नहीं। परिवार साथ रहते हुए भी भीतर से टूट रहा है, बिखर रहा है। लाखों लोगों का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हो जाता है और इन वजहों से भी बच्चे अनाथ हो जाते हैं, महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। इन वैश्विक संकटों के बीच परिवार ही वो इकाई है जो टूटे हुए मनुष्य को फिर से जीने का साहस देता है और इस साहस को बचाने के लिए ही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति हमारे परिवार तंत्र में समाहित रही है। यहाँ परिवार केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्था रही है। हमारे यहाँ पुराण और कथाएं केवल मनोरंजन के साधन नहीं रहे बल्कि पारिवारिक मूल्यों, संबंधों, कर्तव्यों और त्याग की महान गाथाएं रही हैं। भारतीय जीवन दृष्टि वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। यदि इस भावना को जीवन में उतारा जाए तो युद्ध, हिंसा, आतंक और घृणा की कहीं कोई जगह ही नहीं बचेगी।

0: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: दोस्तों, आज का ये समय जिसमें हमारे परिवारों में उपभोक्तावादी संस्कृति प्रवेश कर चुकी है और इस वजह से रिश्तों को भी लाभ हानि के तराजू पर तोला जाने लगा है। सहनशीलता कम हो रही है, अपेक्षाएं बढ़ रही है, छोटी छोटी बातों पर टूटते हुए संबंध इस बात का संकेत है कि हमने सुविधा तो बढ़ाई है लेकिन संवेदना खो दी है। जबकि परिवार की असली ताकत संपत्ति नहीं बल्कि विश्वास होता है। जहाँ विश्वास बचा रहता है वहाँ अभाव भी उत्सव बन जाते हैं और जहाँ विश्वास टूट जाता है वहाँ वैभव भी बोझ बन जाता है। आज परिवारों को नई दिशा देने की आवश्यकता है। घरों में सामूहिक भोजन की परंपरा को फिर से लौटाना है। संवाद का समय तय हो, बुजुर्गों के अनुभवों को महत्व मिले और बच्चों को केवल करियर नहीं बल्कि चरित्र निर्माण की शिक्षा भी मिले। परिवार में क्रोध के स्थान पर करुणा, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग और अधिकार के स्थान पर कर्तव्य की भावना को विकसित करना होगा। यही परिवार हमारे जीवन का आधार बन सकता है।

मित्रों, समाज की रीढ़ होता है एक परिवार, और इस रीढ़ को सुरक्षित रखकर, इस रीढ़ को मजबूत बनाकर ही हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो बस आपसी संबंधों को एक बार पुनः जोड़ने का प्रयास करें। इस कार्यक्रम में हमने कुछ बातों को शामिल किया, कुछ बातें आप जानते भी थे, हो सकता है कुछ बातें अधूरी रह गई हों, फिर किसी दिन इस विषय पर हम और गहन चर्चा करेंगे। फिलहाल एक खूबसूरत सा गीत आपकी नज़र।

और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा संपन्न हुआ। इसे आपने सुना आकाशवाणी भोपाल से। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 188.32 मीटर्स अर्थात 1593 किलोहर्ट्स पर। 9:15 हुए हैं। ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं रही सिंह यादव और साथी। इनसे आप सुनेंगे कुछ बुंदेली लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ इस देवी गीत से।

और लोक संगीत के कार्यक्रम में अब ये दादरा आप सुन रहे हैं रही सिंह यादव और साथियों के स्वरों में।

और इसी लोकगीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण, मीडियम वेव 188.32 मीटर्स अर्थात 1593 किलोहर्ट्स पर। 9:30 हुए हैं, ये समय है कार्यक्रम अनमोल धरा का, और इसमें आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता, पिघलते ग्लेशियर खतरे में दुनिया, इस विषय पर विशेषज्ञ लोकेंद्र ठक्कर से पंकज नागर की भेंट वार्ता पर आधारित है।

0: नमस्कार साथियों, अनमोल धरा के इस नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज नागर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ पर्यावरण से जुड़ा है बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सीधे तौर पर प्रभावित करता है। हमारा आज का विषय है पिघलते ग्लेशियर, खतरे में दुनिया। इस विषय पर गहराई से बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी इपको भोपाल के मुख्य वैज्ञानिक श्री लोकेन ठक्कर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: सर। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर ये हिमनद या ग्लेशियर क्या होते हैं?
1: देखिए, जैसे सतपुड़ा के पहाड़ हैं, विंध्याचल है, ये पहाड़ पत्थर के हैं। लगभग ऐसे ही बड़े बड़े पहाड़ बर्फ के हैं और ये वहाँ बनते हैं जहाँ पर तापमान बहुत कम रहता है और बर्फ गिरती है। हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल से बर्फ़ गिर रही है और बर्फ़ पिछले साल की बर्फ़ पिघल नहीं पाती और फिर नई बर्फ़ आ जाती है। इस तरह से एक किस्म का पहाड़ बनता जाता है और ये पहाड़ ग्लेशियर्स कहलाते हैं। हमारे यहाँ हिमालय में हैं, यूरोप में हैं, देश के दुनिया के कई जगह पर ग्लेशियर्स हैं और ये ग्लेशियर्स हमारे पूरे जलवायु को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसी भूमिका आप समझिए कि तटीय क्षेत्रों की है, जैसी भूमिका मरुस्थल की है, वैसी भूमिका इन ग्लेशियर्स की है, जिसको हम हिंदी में हिमनद भी कहते हैं। हिम मतलब बर्फ, बर्फ की नदियां हैं ये, जमी हुई नदियां। ऐसी समझ लीजिए आप कि जमा हुआ बर्फ, हज़ारों करोड़ों साल का जमा हुआ बर्फ है और ये हमारे पूरे क्षेत्र को के तापमान को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है।
0: सर, पर्यावरण संतुलन में इनकी क्या भूमिका है?
1: देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जहाँ तक, जैसा मैंने कहा कि जलवायु को नियंत्रित करते हैं। हमारी बहुत सारी जो मानसून की जब हवाएं चलती हैं तो ये हिमालय से टकरा करके बारिश ठंडी होती है और फिर बारिश होती है। तो आप समझिए कि अगर हमारे पर्यावरण का नियंत्रण करना है, अगर हमारे जलवायु को नियंत्रित करने का, इन सब में जो हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है।
0: तो नदियों के अस्तित्व के लिए ये कितने ज़रूरी हैं?
1: देखिए, भारत में जो नदियां हैं वो एक तो ऐसी हैं जो कि ग्लेशियर से पिघलने से आती हैं
0: जी।
1: जैसे हमारी सबसे, देश की सबसे पूज्यनीय, सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा
0: जी।
1: ये ग्लेशियर फैड रिवर है। ग्लेशियर्स के, क्योंकि बर्फ़ है तो पिघलती तो है
0: जी।
1: जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि ग्लेशियर्स ऐसे बनते हैं कि साल भर में जब भी बर्फ़ गिरी तो वो जमती जाती है।
0: हाँ।
1: और कुछ समय से होता है जब बर्फ़ नहीं गिर रही है
0: जी।
1: लेकिन फिर से बर्फ़ गिरना शुरू होती है तो पिघलती कम है, जमती

0: ज़्यादा है,
1: जी
0: जब ऐसी स्थिति होती है तो ये ग्लेशियर्स बनते जाते हैं, लेकिन पिघलते हैं
1: जी
0: ग्लेशियर्स, क्योंकि जब कभी थोड़ी सी गर्मी होती है, थोड़ा तापमान बढ़ेगा, तो ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और इन ग्लेशियर्स के पिघलने से ही कई नदियों का जन्म होता है।
1: हाँ
0: कई नदियों में जो अविरलता है, उनमें जो प्रवाह है, वो ग्लेशियर से के पिघलने से आता है। तो ये बहुत सी नदियाँ ऐसी हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे बताया गंगा नदी, उसके दूसरी जो ऐसे हमारे प्रदेश की जो जीवन रेखा है, नर्मदा नदी, वो ग्लेशियर फेड रिवर नहीं है,
1: जी
0: क्योंकि वो तो निकलती है अमरकंटक से,
1: जी
0: वहाँ कोई ऐसी बर्फ़ नहीं जमती है। तो नदियाँ ग्लेशियर फेड भी हैं और बगैर ग्लेशियर के भी पहाड़ों से सतपुड़ा की

0: है, तो क्षिप्रा है, तो चंबल है, महानदी है, सोन है, नर्मदा है, ये सारी नदियाँ ग्लेशियर फैड नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र है जो हमारी पहाड़ों से निकलने वाली,
1: यमुना नदी है,
0: यमुना तो गंगा की सहायक नदी है, यमुनोत्री भी, लेकिन फिर भी इसके अलावा आप देखें तो जो पंजाब में प्रांत से ऊपर नदियाँ हैं, चाहे वो रेवा हो, सतलज हो, ब्यास हो, सिंधु हो, ये सारी नदियाँ ग्लेशियर फैड रिवर्स हैं
1: जी। इनमें साल भर पानी रहता है,
0: इनमें साल भर पानी रहता है, अविरलता रहती है क्योंकि बर्फ पिघलती रहती है, इसमें प्रवाह बना रहता है, इसलिए जीवन नदियों के जीवन, देखिए नदियों की जो दो महत्वपूर्ण नदियों के गुण हैं, एक है अविरलता, दूसरी उसकी निर्मलता
1: जी,
0: मतलब पानी स्वच्छ हो, निर्मल हो, और पानी इतना हो कि उसमें बहाव हो, उसमें अविरल रहा है, धार टूटे ना
1: जी।
0: तो अगर ये दो चीज़ें तो नदी जिंदा है, वरना फिर नदी में प्राण की कमी, कहीं उसमें जीवन की कमी हो जाती है।
1: सर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं?
0: देखिए ग्लेशियर्स दो प्रकार के होते हैं, जिनको एक हम कहते हैं वैली ग्लेशियर्स और दूसरा कहलाते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। जो वैली ग्लेशियर्स होते हैं वो पहाड़ों में की घाटियों में बहते हैं, और जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हैं वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका में है या ग्रीनलैंड में है
1: जी।
0: अब आपने कहा कि कौन से कारण हैं जिनसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो आप समझिए बर्फ़ पिघलने का कारण क्या होता है, सिंपल है कि बर्फ़ के तापमान से ज़्यादा तापमान कहीं होगा तो बर्फ़ पिघलेगी। फ्रिज में तो बर्फ़ नहीं पिघलती, लेकिन बर्फ़ को हम जैसे ही फ्रिज से बाहर निकालते हैं वो पिघलना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि तापमान में कहीं ना कहीं अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे। और तापमान में, जो पृथ्वी के तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है, उसका मूल कारण है जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही, जिसको हम कह सकते हैं कि तपती वसुंधरा, तो ये वसुंधरा क्यों तप रही है, ये कैसे तप रही है, इसका मूल कारण है कि जितने हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये या बहुत सारी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जिनको हम सुपर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस वातावरण में जा कर के पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं, और पृथ्वी के सतही तापमान में जब वृद्धि होगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे और बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। इसके साथ क्या हो रहा है कि समुद्र का जो पानी है उसका भी तापमान बढ़ रहा है, तो क्या होता है कि जैसे मैंने कहा जो अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स हैं ये समुद्र में हैं, तो क्या होगा कि जब समुद्र का पानी बढ़ेगा तो ये ग्लेशियर्स के बड़े बड़े पहाड़, अगर आप टेलीविजन पर या कहीं वीडियो में देखें तो आपको दिखाई देंगे कि आपको बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो टूट टूट करके समुद्र में आ रहे हैं, और समुद्र का तापमान बढ़ गया है
1: जी,
0: तो उससे क्या हो रहा है, दो नुकसान हो रहे हैं, एक तो समुद्र के तापमान के बढ़ जाने से ये बर्फ़ जल्दी से पिघल रही है, मतलब अगर बर्फ़ को हम गर्म पानी में डालेंगे तो जल्दी से पिघलेगा, तो समुद्र का तापमान बढ़ गया, उसमें ग्लेशियर्स गए तो बहुत जल्दी पिघलने लगे, उससे क्या हो गया कि और ग्लेशियर्स टूटने लगे, और समुद्र का एक्सपेंशन, जिसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, समुद्र भी पानी जब गर्म करते हैं, आप अपने घर में पानी गर्म करेंगे तो एक बर्तन में पानी गर्म करने से वो फैल जाता है, उसमें एक्सपेंशन होता है, तो समुद्र एक्सपैंड हो रहे हैं और समुद्र अपनी सीमा लांघ करके आसपास के इलाकों में घुस रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप, जिसको हम आइलैंड्स कहते हैं, जो समुद्री आइलैंड्स हैं, वो डूब गए हैं, या उनके ज़मीन में समुद्र बहुत तेज़ी से इनग्रेस कर रहा है, घुस रहा है, उससे उनके जीवन को, उनके अस्तित्व को संकट खड़ा हो गया है।
1: जैसे सर आपने बताया समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और जो तटीय इलाके हैं वो डूब रहे हैं
0: जी,
1: इसके अलावा पर्यावरण और हमारे जीवन पर सर इसका क्या प्रभाव है?
0: देखिए हम यहाँ मध्य प्रदेश में तो ग्लेशियर्स के पिघलने से बहुत सीधे रूप से प्रभावित नहीं है, लेकिन जो लोग, जैसे मैंने कहा, समुद्र के पास में रहते हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो लोग ग्लेशियर फैड रिवर्स पर, जिनका जीवन, जिनकी आजीविका निर्भर है, उन लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और अगर समुद्र से ग्लेशियर्स, पहाड़ों से ग्लेशियर्स अगर पिघलने लगे तो नदियों में जल की मात्रा, उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो उसको पानी को वहन करने की जो क्षमता है उनकी, उस क्षमता से अगर ज़्यादा पानी आएगा तो बाढ़ आएगी और बहुत सारे लोग उसमें परेशान होंगे, एक आपदा आएगी, और कहने को तो लगेगा कि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो ये मानव निर्मित आपदा है
1: जी। सर अंत में यह जान

0: चाहेंगे कि हम इस संकट से कैसे निपट सकते हैं?
1: ग्लेशियर्स को बचाना हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने कहा कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसके लिए हमको जलवायु परिवर्तन और अपनी पृथ्वी के तापमान को, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना होगा। और उसका एकमात्र वही कारण है कि हम अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाएं, हम ऐसे काम करें जिससे कि हमारा पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़े। आप जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान अभी करीब 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि पिछले जब से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है तब से लगभग 1.5 डिग्री बढ़ चुका है। सारी दुनिया ने पेरिस समझौते के समय एक संकल्प लिया था कि हम अपनी पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री से ज़्यादा अब नहीं बढ़ने देंगे और कोशिश करेंगे कि ये तापमान 1.5 डिग्री से ज़्यादा न बढ़े, मतलब 14 से 15.5 या अधिकतम 16 डिग्री हो। लेकिन जिस तरह का उत्सर्जन, मुझे कहने में ये संकोच भी है और दुख भी है कि जिस तरह का ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सारी दुनिया में हो रहा है, उससे लगता नहीं है कि हमने संकल्प जो लिया था पेरिस समझौते में हम उसको पूरा कर पाएंगे। आज ऑलरेडी दुनिया जो है 2 डिग्री से अधिक तापमान की दिशा में अग्रसर हो चुकी है। हमको तत्काल कुछ ऐसे, सारी दुनिया को तत्काल ऐसे प्रयास करने होंगे कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसको हम रोकें। और वो जब रुकेगा तभी ग्लेशियर्स के पिघलने की जो चुनौती है, जो समस्या है, जो एक बड़ी विशाल हमारे सामने प्रश्न चिन्ह लगा है, वो रुक पाएगा, तभी हम अपने अस्तित्व को, अपनी पृथ्वी को बचा पाएंगे।
0: सर, सरकार तो इस दिशा में कार्य कर ही रही है, आमजन क्या करे कि वो भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके?
1: देखिए, हर बूंद बूंद से खड़ा पड़ता है, तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि पर्यावरण पर उसका होने वाला प्रभाव कम से कम हो, जिसको हम फुटप्रिंट कहते हैं कि मेरा अपना फुटप्रिंट कितना है, क्या मैं जितना मेरी आवश्यकता है क्या मैं उससे अधिक चीज़ों का उपभोग कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी, चाहे वो बिजली का उपयोग हो, पानी का उपयोग हो, ऊर्जा के साधनों का उपयोग हो, कोई भी चीज़ है, आवश्यकता से अधिक अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा के उसका दुष्प्रभाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को अपने जीवन शैली में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, तभी हम इस पूरी चुनौती में अपना सार्थक योगदान दे सकेंगे।
0: सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसी के साथ हमारा यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: आकाशवाणी भोपाल से।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
0: और आकाशवाणी भोपाल से अब आप सुने फिल्म संगीत।

आप सुन रहे हैं इस गीत को प्रेम पुजारी फिल्म से, जिसे हमने लिया है, नीरज ने लिखा है, सचिन देव वर्मन की धुन, आवाज़ लता मंगेशकर की।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: और फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनने जा रहे हैं रामपुर का लक्ष्मण फिल्म का वो गीत जिसमें आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को शब्द दिए हैं और तर्ज बनाई है RD वर्मन ने।

0: और इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी है, 10 बजने जा रहे हैं। आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। बड़वानी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में

0: इन दिनों सूरज मानो आग उगल रहा है। जिले का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दोपहर होते होते सड़कें सुनसान नजर आने लगती हैं। गर्म हवाओं और लू से बचने के लिए लोग चेहरे को सूती कपड़ों से ढककर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि पानी की व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। खासकर जिले के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। प्रशासन क्राउलर बोरिंग मशीनों की मदद से नए पेयजल स्रोत तैयार कर रहा है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पूरी हो चुकी 5 नल जल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। दूसरी ओर जिले में गेहूं खरीदी का काम भी पूरे जोर शोर से चल रहा है। प्रशासन किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के साथ साथ मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी कर रहा है। इस साल रबी सीजन में गेहूं बेचने के लिए जिले से 4738 किसानों ने पंजीयन कराया था। जिले के 5 प्रमुख उपार्जन केंद्रों पर अब तक 1346 किसानों से 60,727 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। भुगतान की करीब 90% राशि यानी 14,42,00,000 रुपए सीधे किसानों के खातों में भी पहुंच चुके हैं। बड़वानी शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए नगर पालिका परिषद ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत खास अभियान शुरू किया है। नगर पालिका की IEC टीम घर घर पहुंचकर लोगों से स्वच्छता को लेकर फीडबैक ले रही है। इसी बीच जिले में लाडली उत्सव की खुशियां भी देखने को मिली। जिले के 1815 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में लाडली बेटियों और उनके अभिभावकों का सम्मान किया गया। वहीं शिशु मृत्यु दर को लेकर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। कलेक्टर ज्योति सिंह ने मामलों की गहन समीक्षा करते हुए मृत शिशुओं के परिजनों से सीधे बातचीत की। उन्होंने इलाज के दौरान आई परेशानियों, स्वास्थ्य केंद्रों पर मिली सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। न्याय व्यवस्था को आसान और त्वरित बनाने की दिशा में भी जिले में बड़ा कदम देखने को मिला है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निराकरण किया गया। लोक अदालत में लंबित 384 मामलों में से 294 प्रकरणों का समाधान हुआ और करीब 4,82,00,000 रुपए से अधिक की राशि के अवार्ड पारित किए गए, जिससे 588 लोगों को राहत मिली। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला मुख्यालय स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में 326 युवाओं ने पंजीयन कराया। विभिन्न कंपनियों ने 68 युवाओं का चयन किया। जिले की कलेक्टर ने जलगंगा संवर्धन अभियान और जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने फॉर्म पॉन्ड, अमृत सरोवर, डगविल और वाटरशेड डेवलपमेंट के कामों की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर 3 सब इंजीनियर्स का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए गए। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान भी शुरू हो गया है। आयुष विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में रोज सुबह ऑनलाइन और ऑफलाइन योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के 27 केंद्रों पर लोग योग के जरिए खुद को स्वस्थ रखने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निवाली में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कृत्रिम हाथ पैर शिविर लगाया गया। शिविर में 28 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया, जिनमें से 13 लोगों को मौके पर कृत्रिम हाथ और पैर उपलब्ध कराए गए। जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. गौतम टिटवाल का दौरा भी चर्चा में रहा। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठकों के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण किया। खास बात यह रही कि उन्होंने अधिकारियों के साथ कारों के लंबे काफिले की बजाय बस से यात्रा की। ग्राम ओझर में आयोजित रात्रि चौपाल में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। इन सब के बीच जिले की बेटी स्नेहा दाऊदी ने बड़वानी का नाम देशभर में रोशन कर दिया है। स्नेहा जिले की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है, जिनका चयन भारत के अंडर-18 टीम में हुआ है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर नई उपलब्धि हासिल की। अब वे जापान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां भी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। मकान सूचीकरण और गणना का काम तेजी से चल रहा है। कई प्रखंड को और पर्यवेक्षकों ने समय सीमा में 100% लक्ष्य पूरा कर मिसाल पेश की है, जिसके लिए शासन द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। बड़वानी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: बड़वानी जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था शिवपाल सिंह सिसोदिया का और वाचन किया था दीपा सिंह ने। ये आकाशवाणी है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर। पेश है फिल्मी गीतों का संयोजित कार्यक्रम गीत सागर।

सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में वो दिन जब आता है तब उसकी खुशियाँ हमारे चारों ओर नज़र आती है। जी हाँ, जन्मदिन। जन्मदिन वो मौका होता है जब बहुत सारी बातें, तरह तरह की यादें अपने साथ लेकर आती हैं। सारी बातें, अधूरी यादें आपको और करीब ले जाती हैं। किसके करीब? ज़िंदगी के करीब। इसी ज़िंदगी से गुफ्तगू को हम कभी रेट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं तो कभी इंट्रोस्पेक्शन। इससे पहले कि ज़िंदगी की उस गुफ्तगू को मैं आपके साथ में बांटूं, एक पुरानी कविता के चंद अल्फाज आपके साथ में साझा करूंगा। बस ऐसी ही होती है हमारी ज़िंदगी, सफ़ेद पन्नों सी, बिना सलवटों वाली, कोरी सी, सफ़ेद सी। कभी इसमें जुड़ते हैं स्कूल के दिन, तो कभी हॉस्टलों की रातें, तो कभी पुराने दोस्तों के किस्से, तो कभी किसी की कोई याद। और ज़िंदगी जब आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते जब 40 के आसपास का वो दौर आता है, जब उम्र बढ़ते हुए हमें उस मुकाम पर पहुंचा देती है जहां से ज़िंदगी को देखने का नज़रिया कुछ अलग ही रंग लेकर हमारे सामने आता है, कुछ 2 साल आगे, कुछ 2-3 साल पीछे। परिपक्वता का वो पहला पड़ाव यानी कि 40 की अवस्था, असल वाली खुली परिपक्वता, नॉट इन द 40 इसे कह सकते हैं। गुमान, गुरूर, खुद मिजाजी भी है इस उम्र के आसपास।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, बचपन के दोस्त, स्कूल वाले दोस्त, कॉलेज वाले भाई दोस्त, हॉस्टल वाले दिल के यार, सब आसपास ही हैं। सबकी अपनी अपनी कहानियाँ लिखते, अपने अपने किस्से बुनते, कुछ तो बात होती है, कुछ से गुफ्तगू, कुछ का जिक्र होता है, कुछ है मौजूद तो कुछ एकदम गायब हैं, कोई नाम और निशान नहीं। कुछ किस्सों में अमर हैं, कुछ किस्सों के मुरीद तो कुछ किस्से बाज हैं। कुछ पूर्णता पा चुके हैं, कुछ की तलाश अभी जिंदा है तो कुछ भटक रहे हैं। कुछ सेटल्ड हैं तो कुछ को अभी भी गोल पोस्ट को शिफ्ट करने में ही एक अलग आनंद की प्राप्ति होती है। कुछ बीच एनिमल हैं, कुछ जंगल प्रेमी तो कुछ हिमालयाज लवर्स हैं। कुछ का अंग अंग रॉक में बस गया है तो कुछ अभी भी गुलजार वाले जगजीत और आवारगी वाले गुलाम अली में रमे हुए हैं। किसी को आज का संगीत अच्छा लगता है तो किसी को पुराने दौर का। हाँ, कभी कभी 90 के दशक का वो गीत जो उड़ता हुआ हमारे कानों तक पहुँचता है, वो भी हमें गुदगुद आता है। कुछ खामोश से हो गए हैं तो कुछ झुर्रियों को छुपा रहे हैं, कुछ रंग रहे हैं बालों को तो कुछ फ़ख्र से सफ़ेदी को दिखा रहे हैं। कुछ के बच्चे कॉलेज जाने वाले हैं, कुछ के अभी बड़े हो रहे हैं और कुछ अपने बच्चों के साथ बच्चे बने हुए हैं।

मित्रों, जो कहानी राजा मंत्री चोर सिपाही से शुरू हुई थी, फिर मारियो सुपर कमांडो ध्रुव, प्लेस्टेशन से होते हुए एवेंजर्स के बाद अब आईपीएल और एमपीएल के आसपास है। कुछ दोस्त स्पिरिचुअलिटी के किसी किस्से में बंधे हुए अपने अपने कोनों पर मग्न हैं, जो एक दो रुपए लिए सीना चौड़ा किए हाफ पैंट में घूमते थे, अब लाखों के पोर्टफोलियो पर भी सिर खुजा रहे हैं। कुछ फिक्र में सराबोर हैं तो कुछ फिक्र में हैं। लंबा वक्त तय हुआ, लेकिन अभी ज़्यादा लंबा आगे खड़ा है। व्यस्तताएं सेटल हो रही है, पुरानी बातें जल्दी जल्दी याद आती है। साथ चले थे सब, अब कोई आगे तो कोई पीछे है, कोई ऊपर तो कोई नीचे है।

मित्रों, सबकी अपनी अपनी बात है, अपने हिस्से की गलतियाँ और अपने हिस्से की वजहें। सब सही है, गलत कोई नहीं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें केवल ब्लैक एंड वाइट के बीच में नहीं देख सकते हैं। कुछ सीपियाँ हैं जिन्हें खोलना अभी बाकी है। आखिर यही है लेखा जोखा अब तक की ज़िंदगी का, जो परिपक्वता ने अपने एवज़ में हमें बख्शा है। इस ज़िंदगी की सिंगल एंट्री बुक कीपिंग में हम संभाल तो सकते हैं, जो मिला है वो ख़जाना है, और जो खो दिया वो भी तो बहुत कीमती था। इस आपाधापी के बीच जो हम बचा सकते हैं वो है आने वाला वक्त। यही है इस कवायद का सबसे बड़ा हासिल।

0: गीत सागर का प्रसारण अभी आपने सुना आकाशवाणी भोपाल से।
1: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
2: पानी की हर बूंद है अनमोल,
3: बहने ना दें इसे बेमोल।
2: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
3: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दे हरियाली का गहना।
0: इस वक्त आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी भोपाल के संग। 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला अब हम लेकर हाजिर हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप सुनने

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आपने रविंद्र गरुड़ से राग भैरव में बांसुरी वादन सुना। अब यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। आप सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत और यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में हुए। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है एक सतत भविष्य के लिए प्रकाश। ये दिन प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। 3 मई को पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा अब 21 जून को दोबारा होगी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। देवास के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे। राज्य सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1,01,00,000 रुपए का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया है। इसके साथ 21,00,000 का राष्ट्रीय सम्मान और 5,00,000 के 3 शिखर सम्मान भी दिए जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 20 मई है। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को 9,522 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 11 बजे हैं। आप सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आज हम बात करेंगे जिंदगी की किताब के उन पन्नों की जो भरे हुए हैं जज्बातों के रंग से, जिनमें शामिल होता है प्यार का रंग, मस्ती का रंग, खुशी का रंग, नाराजगी, दुख, दर्द, दूरी और दोस्ती का रंग भी। और इन रंगों पर कहीं गाढ़ी स्याही ढुलक जाती है तो कभी रोशनी का रंग बिखरता है। मगर हम नहीं रुकते,

0: और ना ही जिंदगी रुकती है। अपनी रफ्तार से जीने के लिए चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, और हम भी चलते रहते हैं उसी के साथ। तो आज इन रंगों के एहसास को आप बांटेंगे, बयां करेंगे मेरे साथ। मैं हूं आकांक्षा, आपके साथ कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। तो श्रोताओं, देर किस बात की है, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और साझा कीजिए इन एहसासों से जुड़े कुछ किस्सों को, बातों को हमारे साथ। हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो आइए मिलते हैं हमारे पहले श्रोता कॉलर से। हेलो जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: जी जी बिल्कुल, बात आपकी गीत हमारी।
0: जी तो आज हमारा टॉपिक है कि हमारी जिंदगी की जो किताब होती है वो कई तरह के रंगों से भरी होती है। उसके हर पन्ने पे एक अलग ही रंग होता है, जिसमें प्यार का रंग होता है, मस्ती का रंग होता है, खुशी, दुख, दर्द, जुनून, दोस्ती का रंग भी उसमें शामिल होता है। तो हम ये चाहते हैं कि आज आप अपने जज्बात के इनमें से किसी भी रंग के एक एहसास के साथ जुड़ा अगर कोई आपका किस्सा है तो वो हमसे साझा कीजिए। पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं?
1: गांधी पार्क मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, दीदी मनोज नामदेव।
0: मनोज जी नमस्कार और स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: बस दीदी बढ़िया है, आपका कार्यक्रम रेगुलर सुनते रहते हैं। बिल्कुल दीदी, और कहें कि आकाशवाणी भोपाल से तो हमारे श्रोता अपार प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि बताया अब कैसे बता दूं मैं आपको।
0: वो हम आपके जज्बात समझते हैं, इसीलिए तो आज का विषय यही है कि अपने जज्बात के रंग का कोई उससे जुड़ा हुआ किस्सा या उससे जुड़ी हुई कोई बात हमसे शेयर कीजिए।
1: बिल्कुल दीदी, आपको मैं छोटा सा बात क्या बता दूं
0: जी
1: कि दीदी, जब मैं कहें कि छोटा था
0: जी,
1: तो इतना समझदार नहीं था, लेकिन मैं अपने जो पापा जी के साथ बैठा करता था, मेरे पापा जी क्या करते हैं, सिलाई वाली जो मशीन चलाते हैं दीदी
0: जी,
1: तो आपका जो रेडियो स्टेशन है वो सुनते रहते थे। तो पहले भोपाल भी आता था और हमारे पास में शिवपुरी है वो भी आता था, और हमारे पास में झांसी भी है वो भी सुनते थे। तो मैं सुनता रहा, बहुत दिन सुनता रहा, पर मेरे मन में एक कहें कि एक जिज्ञासा जगी कि इसमें ऐसा क्या होता है कि इसमें बढ़िया तो समय समय पर गीत आते हैं और समय समय पर इसमें कहें कि समाचार भी आते हैं, और आज दिख रहे हैं तो आज इसमें मैच भी आ रहा है
0: जी।
1: तो मैं सोचता रहा, अब मेरे मन में एक जुनून से पैदा, उस दिन से ऐसा हुआ कि मैंने अब मन में ठान ली, या आपका क्या कहें कि कसम खा ली, कुछ भी मान लो, तो उस दिन से जुनून ऐसा पैदा हो गया, ऐसा जुनून सवार हो गया मेरे ऊपर कि जब तक मैं सुबह से शाम तक रेडियो अगर मैं अपने शॉप पर हूँ तो सुनता ही हूँ, अगर शॉप पर भी नहीं हूँ तो कहीं भी हूँ, रेडियो बिना मेरे को चैन नहीं पड़ता।
0: बहुत अच्छी बात है। और आपको एक बात बताएं कि ये जो जुनून वाला एहसास है ये एक ख्वाहिश होती है कि आपने ये बना लिया है कि हाँ मुझे रेडियो सुनना है, और ये ख्वाहिश, ये जुनून बारिश की उन बूंदों की तरह होती है मनोज जी, कि जिसे पाने की चाहत में हम तो भीग ही जाते हैं और वो जो प्यास है वो बरकरार रहती है, या ये कहें कि बढ़ जाती है। अब आपको भी वो प्यास रहती होगी कि अब हमें सुनना है कि अब हमारे रेडियो में कौन सा प्रोग्राम आने वाला है।
1: बिल्कुल दीदी, और बिल्कुल दीदी, और बताना चाहती कि अगर मैं रेडियो से नहीं जुड़ता तो काश अभी जहाँ हूँ वहाँ मैं नहीं पहुँच पाता। आधे से ज्यादा तो भूमिका रेडियो की है कि आज मैं यहाँ तक हूँ, कहीं कि इतने श्रोता है मेरे, इतने श्रोता है कि अगर मैं चाहकर भी श्रोताओं से अगर मिलता या उनसे बात करता तो मेरा कहीं कि जिंदगी निकल जाती, लेकिन श्रोताओं से कभी मुलाकात या बातचीत नहीं हो पाती। इसलिए मेरे जिंदगी में रेडियो का इतना महत्व है कि अगर मैं अपने मुंह से बताऊं तो शब्द कम पड़ जाएंगे।
0: वो हमें आपकी बातों से समझ में आ रहा है मनोज जी, आपको बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है रेडियो से, और हम चाहते हैं कि आपका ये प्रेम हमेशा बरकरार रहे। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
1: अगर आपका आकाशवाणी भोपाल की जितनी भी अनाउंसर हैं, अगर सभी का आशीर्वाद मेरे साथ रहा और मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं को, तो आखिरी सांस तक रेडियो में छोड़ूंगा ही नहीं।
0: बिल्कुल, हम चाहेंगे भी नहीं कि आप छोड़ें हमारा साथ, लेकिन आशीर्वाद हमारा नहीं ईश्वर का रहता है, हमारा तो साथ है आपके साथ,
1: बिल्कुल
0: ना, जो हमेशा बना रहेगा। मनोज जी आपने कार्यक्रम में फोन किया, इतनी अच्छी बात हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी आप।

0: कार्यक्रम
1: हेलो,
0: बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, परिचय दीजिए अपना।
1: दीदी मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: बाबू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: धन्यवाद दीदी आपको।
0: जी, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जज्बातों के रंग की। हमारे जीवन के जो जज्बात हैं, जो एहसास हैं, कभी प्यार का, कभी खुशी का, कभी हमें दुख होता है, कभी दर्द होता है। तो आज हम जानना चाहते हैं आपके एहसासों से जुड़ा कोई वाक्या, कोई किस्सा या कोई बात जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं।
1: ये देखिए, अगर जीवन में जज्बात नहीं है तो
0: जी
1: जीवन का मतलब भी नहीं रहेगा। जज्बात तो होना चाहिए किसी बात का भी। तो
0: जी बिल्कुल सही बात है ये।
1: जज्बातों से जीवन में एक ऊर्जा मिलती है, तो
0: जी
1: हमें जज्बात को रखना चाहिए। और रह गए मुझे जज्बात जो है अपने देशभक्ति के लिए, ईमानदारी के लिए है। मैं ईमानदारी में विश्वास करता हूँ दीदी। मैं दुकानदार हूँ,
0: जी
1: तो मुझे ये जज्बात है ईमानदारी का।
0: बहुत बढ़िया।
1: हाँ,
0: ये
1: मैं अपने ग्राहकों से हमेशा ईमानदारी से बात करता हूँ। उनके प्रति मैं बहुत मतलब प्रेम रखता हूँ, चाहे वो कुछ भी रहे, मतलब मैं उनसे प्रेम करता हूँ क्योंकि वो मेरे भगवान हैं। तो
0: बिल्कुल
1: ये मेरा जज्बात है कि मैं उनसे प्रेम रखता हूँ और इसी बात से वो मुझसे खुश भी रहते हैं।
0: जी, तो यहाँ ये खुशी का एहसास है आपका, आपकी ईमानदारी में छुपा हुआ।
1: कभी मैं बार्गेनिंग किसी बात में नहीं करता हूँ। सामान मांगा है तो बोल देता हूँ भाई मांगा है,
0: जी
1: अब आपकी इच्छा लो ना लो, लेकिन मैं कभी बार्गेनिंग नहीं करता हूँ कि
0: जी
1: कुछ ही कम दे दूँ, कुछ कुछ किसी को बार्गेनिंग कर दूँ, ऐसी बात नहीं है। तो ईमानदारी मेरा जज्बात है।
0: जी और इस ईमानदारी के जज्बात से आपको खुशी मिलती है।
1: जी, बहुत खुश रहता हूँ। मुझे कुछ छुपाना नहीं पड़ता है, मैं ईमानदार हूँ
0: जी
1: तो मुझे कुछ छुपाना नहीं पड़ता कि मैंने कल क्या किया था क्या नहीं किया था।
0: जी तो ये जो खुशी है ना बाबू यादव जी, ये बहुत बड़ा रंग है, बहुत महत्वपूर्ण रंग है हमारे जीवन का।
1: जी, बिल्कुल, मैं उसी तो नाम से जाना जाता हूँ, वो अगला
0: जी
1: ईमानदार है।
0: और ये ऐसा जज्बात है, इसकी तलाश में सारी दुनिया लगी हुई है, और अगर
1: जी,
0: इसको हम
1: बिल्कुल
0: सही ढंग से ढूंढेंगे ना तो ये हमें हर कहीं मिल जाएगी। बस हमारे नज़रिए का फ़र्क होता है और उस पर निर्भर
1: हाँ,
0: करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। सबका अपना अपना नजरिया है।
0: जी तो आपने अपना ये ईमानदारी वाला एहसास हमसे बांटा, इसके लिए बाबू यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जय बजरंग रेडियो सोता था, बस ट्रेन बंडा पे ले चले, मतलब कुछ चाय वाले बोल रहा, दीदी काफी पी लो।
0: आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉफ़ी ऑफर की। जी, आप अपना नाम एक बार फिर से बता दीजिए।
1: लक्ष्मण देखो, हमने कही के वेदी दी है, काफी पीते हैं, आप तो चाय पी लो।
0: हम चाय कॉफ़ी सब पी लेंगे, आप इतने प्रेम से हमें पूछ रहे हैं तो हम भला ना कैसे कहेंगे। लक्ष्मण जी,
1: हाँ,
0: जी तो आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और इसका विषय हम आपको बता देते हैं। आज इस कार्यक्रम में बिखरे हैं जज्बात के रंग, हमारे जीवन से जुड़े हर एक जज्बात का एहसास, जो प्यार का हो सकता है, खुशी, दर्द, आपको कभी किसी ने तकलीफ़ दी हो तो उससे जुड़ा हम कोई किस्सा या कोई बात अगर आप हमसे बताना चाहते हैं उसे साझा कीजिए।
1: हाँ ये तो सही है। क्या हमारा छोटा भाई है जो मंजिला भाई, वो बिलर गया था थोड़ा, अब तो सही हो गया, भगवान जी बहुत परेशानी गई है। हाँ तो उसमें दिक्कत भाई है।

0: ज़्यादा।
1: हाँ, तो आप उस समय तकलीफ में रहे होंगे।
0: हाँ बहुत ज्यादा तकलीफ में, 1-2 साल। अब
1: जी
0: तो सही लेन पे आ गया है। एक दुकान बंद भी करना पड़ी थी उसके पीछे ना,
1: अच्छा,
0: 3 दुकानें थी, तो ये अब 2 बच्ची हैं।
1: तो जब परिवार को देखना होता है उसमें कहीं कुछ परेशानी होती है तो अपने ही तो साथ देते हैं लक्ष्मण जी,
0: हाँ ये तो सही है
1: है
0: तुम।
1: ना। और आप लोगों की लगन और मेहनत रही होगी उनको ठीक करने में कि वो आज ठीक हो गए हैं,
0: हाँ
1: है ना। तो
0: हाँ
1: ये
0: दीदी,
1: देखिए, जीवन है तो सुख दुख सब कुछ लगा हुआ रहता है हमारे
0: हाँ
1: साथ
0: सुख दुख आया जाएगा और जाएगा, चलता रहता है।
1: जी, क्योंकि
0: अब
1: ये
0: पहले
1: जो
0: बहुत हमने भी क्या है, बहुत तकलीफ में रहे, पटी पेंट पे रही, सब पे रही, दूसरे के काम भी किया, मगर अब भगवान ने बहुत अच्छा कर दिया है। अब
1: बहुत
0: अच्छा करोगे काम तो भगवान भी देगा साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जीवन की जो किताब है ना, उसमें अगर एक तरफ खुशी रहती है तो कहीं ना कहीं दर्द तकलीफ से भी हमारा सामना होता ही है, और
0: हाँ
1: उस ये पल हमें मिलते हैं कि हम कैसे उससे बाहर निकलते हैं, कैसे
0: हाँ
1: उनको संभाल पाते हैं हम
0: हाँ
1: जी। और आपने संभाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमसे इतनी बड़ी बात साझा की उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण
0: ठीक है
1: जी।
0: दीदी, नमस्कार।
1: नमस्ते, नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। क्या हम जान सकते हैं हमारी बात किससे हो रही है?
1: बिल्कुल जान सकते हैं। मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकायरी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ।
0: जी, मैं हूँ आकांक्षा
1: अच्छा, आकांक्षा जी, बहुत बढ़िया
0: जी।
1: बढ़िया। आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जज्बातों के एहसास की। हमारे जीवन में जो भी जज्बात हैं, प्यार का, दुख, दर्द, खुशी, दोस्ती, जुनून, इन सब से जुड़ा अगर आपका कोई किस्सा है या कोई बात आप हमसे बताना चाहते हैं, वो हमसे साझा कीजिए।
1: तो बताइए, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बोलने की। क्या बताया आपने? जी
0: देखिए, हमारा जो जीवन है उसमें कई तरह के रंग होते हैं। रंग मतलब
1: जी
0: एहसासों के रंग,
1: जी
0: जिसमें
1: जी
0: शामिल
1: जी
0: होते हैं प्यार का रंग, खुशी का रंग। कई बार
1: जी
0: हम पहली बार कुछ काम करते हैं या कोई हमें ऐसा मिल जाता है जिससे मिलके हमें बहुत खुशी होती है, तो वो हो गया
1: जी जी
0: खुशी का रंग। तो
1: जी
0: ऐसा कोई रंग आप साझा करना चाहते हैं हमारे साथ तो वो बताइए।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने और बहुत बढ़िया आपने विषय रखा है। और जो विषय रखा है ये बिल्कुल हमारे आपसे ही लिमिटेड है, जो है जैसे हमारा आपका आकाशवाणी का नाता है। हम आपको नहीं जानते थे, आप हमको भी नहीं जानती थी, तो
0: जी
1: एक आकाशवाणी के माध्यम से जो है हम आपको जानते हैं और जितने श्रोता हैं उनको भी हम जानते हैं। बहुत अच्छा लगता है।
0: जी
1: और ये जान परिचय जो है केवल हमारी आकाशवाणी की ही देन है और उसी आकाशवाणी की वजह से ही हम सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं।
0: ये तो हो गई आकाशवाणी की बात कि आकाशवाणी से आप जुड़े हैं, बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है। उससे आपको प्यार है, उससे बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनते हैं उसके ज़रिए। लेकिन हम जानना चाहते हैं आपके जीवन के एहसास का रंग। कभी
1: अच्छा
0: कोई ऐसी खुशी आपको मिली है या कभी किसी ने ऐसा चोट पहुंचाई है कि आप अंदर से टूट गए हों, आपको अच्छा नहीं लगा हो, तकलीफ है? क्योंकि जीवन में तो ये सब लगा हुआ रहता है ना।
1: हाँ, जी बात सही है बिल्कुल। बिल्कुल मुझे जो खुशी मिली है जीवन में वो शायद आप कहेंगे तो वो रेडियो से ही मिली है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और मुझे जितनी खुशी और जितना आनंद रेडियो सुन के आता है वो शायद कहीं नहीं आता है।
0: जी, ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे श्रोता ऐसे हैं।
1: जी जी जी जी बिल्कुल। मुझे बहुत आनंद आता है रेडियो के माध्यम से। जब मैं रेडियो सुनता हूँ, रेडियो के बारे में जब सोचता हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद मुझे रेडियो से ही मिलता है।
0: जी, फूलचंद पाल जी,
1: जी
0: देखिए, ये जो खुशी हमें मिलती है ना, तो ये ऐसी खुशी होती है मानो जिसे हम ढूंढ रहे थे वो यही है।
1: जी
0: और
1: जी
0: वैसे भी ज़िंदगी में आवाज़ देने वाले हमें बहुत मिल जाते हैं, मगर हम
1: जी
0: ठहरते वही हैं जहाँ अपनेपन और ख़ुशी का एहसास होता है ना।
1: क्या बात, क्या बात है,
0: और
1: बहुत अच्छी बात।
0: मुझे आपसे बात करके यही लग रहा है कि आपकी वो खुशी, आपका वो एहसास आकाशवाणी ही है।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी
1: मैं बता दूं, मैं आकाशवाणी से लगभग लगभग जो है बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरी मन में जो खुशी है, मेरे मन में जो आनंद है वो आज भी निकम हुआ है, बहुत ज्यादा है।
0: और हम चाहेंगे ये कभी कम ना हो। आपका ये आनंद दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: तो आप हमसे जुड़े, हमसे इतनी अच्छी बात की, अपना एहसास हमसे साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मनोज विश्वकर्मा, ग्राम पनारी, तहसील देवरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: मनोज विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी
0: जी, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जज्बात के खूबसूरत एहसास की, वो जज्बात जिनसे हमारी जीवन की किताब का हर एक पन्ना भरा हुआ है।

0: जी, उसमें आप जानते ही हैं, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी दुख होता है, तकलीफ होती है, कभी उसमें दोस्ती का रंग शामिल होता है। तो हम चाहते हैं कि आपका कोई एक ऐसा एहसास या कोई ऐसी बात हमसे साझा कीजिए जो आपके मन को छू गई हो, या आपको कभी कुछ ठीक ना लगा हो, किसी भी तरह की बात।
1: मुझे तो ऐसा है जैसे कहीं जब कहीं बाहर जाते हैं या कहीं से किसी से मिलते हैं अजनबी व्यक्ति से, तो
0: जी
1: कभी कभार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने से इतना खास या ऐसे जुड़ जाता है जैसा
0: जी
1: अपन कभी सोचते भी नहीं थे कि इस प्रकार का व्यक्ति हमें मिलेगा कभी। जी
0: जी तो आपसे कभी ऐसे किसी व्यक्ति की मुलाकात हुई है?
1: हाँ, ऐसा हमारे

0: लगता है जैसे कहीं जब कहीं बाहर जाते हैं या कहीं से किसी से मिलते हैं अजनबी व्यक्ति से
1: जी,
0: तो कभी कभार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने से इतना खास या ऐसे जुड़ जाता है
1: जी,
0: जैसा अपन कभी सोचते भी नहीं थे कि इस प्रकार का व्यक्ति मिलेगा कभी
1: जी
0: जी।
1: तो आपसे कभी ऐसे किसी व्यक्ति की मुलाकात हुई है?
0: हाँ, ऐसा हमारे एक मित्र है बिहार का एक, तो उससे हमारी ऐसी पहली दफा मुलाकात हुई थी और एकदम मुझे इतना वो हमारा करीबी बन गया
1: जी,
0: अपने परिवार जैसा हो गया।
1: मतलब वो अजनबी थे और फिर आपके करीबी हो गए, तो इस एहसास से आपको दोस्ती का रंग मिला, खुशी मिली। तो हालांकि वो आपसे बहुत दूर हैं, बिहार के आपके दोस्त हैं, तो हैं तो दूरी बनी हुई है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार भी है।
0: जी बिल्कुल
1: जी, आपने हमसे इतना अच्छा एहसास साझा किया, उसके लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, मेरी बात कैसे हुई मैडम?
1: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ
0: जी, आकांक्षा
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: दूर से आपने हमें फोन लगाया है।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल
0: कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के, क्योंकि जो मुझे सबसे ज्यादा आकाशवाणी भोपाल का मुझे फोन करके सुने उतना पसंद है तो जितना ये जो है बात आपकी गीत हमारे, ये पसंद क्यों होता है इस पे जो है अपने विचार रखने का अवसर मिल जाता है, तो इस पे मैं ज्यादा जुड़ता हूँ इस प्रोग्राम में।
0: बहुत बढ़िया। तो आज हमारा जो विषय है वो भी आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज कार्यक्रम में बिखरे हैं जज्बातों के रंग।
1: जी,
0: जज्बात जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं, तो आप अपना कोई भी एक एहसास हमसे साझा कर सकते हैं, उस बारे में बता सकते हैं।
1: जज्बातों के रंग, जी, बिल्कुल।
0: जी
1: तो मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो जज्बातों के जो रंग होते हैं
0: जी
1: इस, क्योंकि मैं अपनी बात कहूँ तो अपने जीवन का मेरा एहसास ये है कि मैंने कभी अपने लाइफ में ये नहीं सोचा कि कभी जज्बातों पे मैंने अपने हावी अपने पर हावी नहीं बन गया। कैसे हावी नहीं बन गया कि जैसे कि कई लोग मेरे से मित्र मिले हैं
0: जी
1: तो उनने मेरे को ऐसी बात कही जो वो बात टूटने वाली थी,
0: हाँ, मतलब आपको तकलीफ पहुंचाई बातों से।
1: मतलब कैसी तकलीफ, उनका कहने का मतलब था कि भाई अभी तो शायद आपके जो है माता पिता है अभी आपको सब आपके कर लेंगे कोई सेवा पानी, जब माता पिता नहीं होगी फिर क्या होगा, तो ऐसा क्या बोला गया था। तो मैं सुनता रहा
0: जी
1: इस चीज को,
0: जी
1: तो मैंने इस चीज को गौर से सुना, तो मैंने क्या किया कि मैं इनको जो है बोलने दो, क्योंकि बोलने वाले तो बोलेंगे, हमें अपने लक्ष्य पे खड़े उतरना चाहिए, क्योंकि बोलने वाले क्या नहीं बोलेगी, तो मैं इस चीज पे कभी, तो मैंने इस चीज को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलत बात
1: गलत
0: को अगर
1: बात
0: हम अपने
1: को
0: ऊपर हावी होने देंगे तो नुकसान हमारा ही होता है।
1: क्योंकि ऐसा क्यों बोलते लोग, देखो अब देखो लोग अगर हेल्प नहीं कर सकते हैं किसी की, तो ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए, कि ऐसा बोलना चाहिए कि चलो हम बाकी कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे, हम कुछ आपके लिए कर सके, तो आपको इच्छा होगी जानने की कि ऐसा क्या हुआ आपका जो ऐसा लोग बोल रहे हैं।
0: अगर आप बताना चाहते हैं तो
1: तो
0: बताइए।
1: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ, तो बचपन से ब्लाइंड हूँ, तो लोग जब मैं जब कोई भी आते थे अरे पूछते थे कि भाई इनको कब से दिखाई देता, मैं कहा बचपन से, तो लोग बोलते हे भगवान ऐसा क्यों किया, और बाकी तो चलो ठीक है अभी तो आप लोग करेंगे तो फिर बाद में क्या होगा, तो मैंने सोचा कि बाद में जो होगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन हम बाद के लिए हम अपने आज आज को जीना है, ना कि कल के लिए, कल के बारे में सोचते कि कल क्या होगा, कल जो भी होगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन अभी हम जो आज में जी रहे हैं तो हम बड़ी खुशी से जी रहा हूँ मैं बढ़िया से, आज आकाशवाणी केंद्र से आपके माध्यम से लोगों से दोस्तों से बात हो रही है और अपने विचार बांटने का अवसर हमें मिल रहा है।
0: राकेश जी, आपकी ये बहुत अच्छी सोच है कि हमें आज में जीना है, आगे जो होगा देखी जाएगी।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी को बोलता हूँ जितने मेरे ब्लाइंड साथी है, कई बार आकाशवाणी लखनऊ पे या भोपाल में कहते रहते हैं कि मैं ब्लाइंड हूँ मैं घर पे पड़ा रहता हूँ, मैं ये कह रहा था कि आप ऐसा मत बोलो कि मैं घर पे पड़ा रहता हूँ,
0: जी
1: जो भी है अब आज आज में जियो कि कल की, अब ये मत सोचो कि भगवान ऐसा क्यों किया, जो भी किया है, कहते हैं ना कि भगवान एक चीज अगर छीनता है तो दूसरी चीज देते हैं, लेकिन हम जो भी है आज में जियो और अपने ऊपर कभी कोई भी चीज हावी मत होने
0: बिल्कुल,
1: देना
0: ये
1: चाहिए।
0: अपनी, देखिए हर इंसान में कमियां होती हैं, अपनी
1: जी
0: कमी
1: जी
0: को भी हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है।
1: हावी नहीं होने देना,
0: जी,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल,
0: देखिए जीवन है, कभी धूप कभी छांव तो होती है, और हम
1: देखो
0: सोच भी
1: ना
0: नहीं सकते कि जीवन में क्या क्या होना होता
1: क्या
0: है।
1: क्या होता है, एक गाना है ना कि जैसे कि कविता कृष्णमूर्ति ने गाया कि थोड़ा सुख है थोड़ा दुख है, दुख में तो सुख है,
0: हाँ,
1: तो ये
0: आगे
1: थोड़ा थोड़ा
0: सुख तो
1: हमें
0: पीछे
1: ये
0: दुख
1: तर्क
0: है।
1: है कि हमेशा नहीं कि हमें सुख मिले, और अगर हम आपको सुख मिलेगा तो हम दुख दुख का अनुभव कैसे कर पाएंगे,
0: बिल्कुल, और दुख
1: नहीं तो
0: दुख नहीं आएगा तो हम सुख को कैसे पहचान पाएंगे,
1: कैसे
0: सुख
1: पाएंगे,
0: का अनुभव कैसे
1: क्योंकि
0: करेंगे।
1: अगर मानो कि हमें सुख की अनुभव तब होगी ना, पहले हमें दुख सहना करना पड़ेगा फिर हम सुख की कदर कर पाएंगे कि सुख क्या है,
0: जी
1: लेकिन अगर हम सुख की सुख मिलेगा शुरू से लेकर अब तक तो फिर हमें सुख का अनुभव होगा, तो फिर हम किसी की मजाक उड़ा सकते, किसी का मजाक उड़ा सकते, किसी का दिल भी दुखा सकते, तो जब हमें दुख मिलेगा तो फिर हम दुख सुख तभी तो दुख सुख तकलीफ को समझ पाएंगे, अगर हम सुख में जीते हैं तो हम दुख सुख तकलीफ के हम तो दुख सुख फिर मजाक उड़ा पाएंगे,
0: जी जी
1: इसलिए कि थोड़ा

0: हेलो, नमस्कार
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार। आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे।
1: जी,
0: हम जानना चाहेंगे हमारी बात किससे हो रही है।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: राकेश जी, शिमला से
1: जी जी
0: बहुत
1: जी
0: दूर।

0: थोड़ा दुख भी है, अगर थोड़ा दुख अगर होगा तो हम सुख का अनुभव कर सकते हैं और हम समझ भी सकेंगे, तभी तो हम दूसरों को समझ पाएंगे।
1: बिल्कुल, दूसरों को समझ पाएंगे और लोगों को समझा भी पाएंगे।
0: जी।
1: ना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा राकेश जी, आपने अपना एक अलग ही रंग हमसे साझा किया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद। वो कहते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते कि जीवन में ऐसे फंसाने होंगे, रोना भी ज़रूरी होगा और आंसू भी छुपाने

0: हेलो
1: नमस्ते कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए।
0: गोविंद जलोदिया खातेगांव। बस
1: गोविंद जी कैसे हैं आप?
0: ठीक है, गर्मी बहुत पड़ रही है।
1: जी गर्मी तो है, मौसम गर्मी का है तो गर्मी तो होगी।
0: अरे पर ये बहुत ज्यादा ही मतलब है।
1: देखिए हम इंसान क्या होते हैं ना, ठंड होती है तो कहते भगवान कितनी ठंड है, अभी गर्मी है तो गर्मी में भी हम परेशान हैं। अच्छा आज कार्यक्रम चल रहा है बात आपकी गीत हमारे,
0: हाँ
1: इसमें हम बात कर रहे हैं जज्बातों के रंग की।
0: हाँ
1: हम आपसे कोई एक ऐसा किस्सा या कोई ऐसी बात जानना चाहते हैं जिसने कभी आपको बहुत खुशी दी हुई हो या दिल को छू गई हो, या कभी किसी की बात से आपको बुरा लगा हो जिससे आप कह भी नहीं पाए, ऐसी अगर कोई बात है तो वो हमसे साझा कीजिए गोविंद
0: वो
1: जी।
0: जो है मेरे को अभी तक याददाश्त ये है कि मेरी शादी हुई थी और मैंने वो पिक्चर है नी चुपके चुपके देखी थी। मतलब चोरी चोरी पिक्चर थी वो, तो
1: जी
0: पर चुपके किसी को मालूम नहीं पड़े, मतलब ऐसा।
1: अच्छा, चुपके चुपके आपने चोरी चोरी मूवी देखी थी।
0: हाँ
1: अच्छा आपकी
0: तो
1: शादी
0: उसमें फिर
1: वाले
0: वो
1: दिन।
0: गाना भी था मन भावन के घर जाए।
1: तो ये था आपके जीवन का एक खुशी वाला किस्सा जो जुनून से भरा हुआ था। ठीक है, आपने इतना अच्छा।
0: जिन किसी से अपन बात करते हैं नहीं तो उनको बड़ा वो रहता है कि यार वो बड़ा सिनेमा का बड़ा वो। मैं वैसे दीदी मैं सिनेमा में नौकरी करता था,
1: अच्छा बहुत अच्छा
0: खातेगांव में भी मैनेजर रहा मैं, ताकि में।
1: जी। ठीक है गोविंद जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और इसी के साथ फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 11:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत 1,32,000 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। किसानों को ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस और आधुनिक तकनीक की मदद दी जाएगी। 3 मई को पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। राज्य सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1,01,00,000 रुपए का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया है। इसके साथ 21,00,000 का राष्ट्रीय सम्मान और 5,00,000 के 3 शिखर सम्मान भी दिए जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 20 मई है। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को 9,522 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने आज उज्जैन पहुंचकर ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती दर्शन में दर्शन लाभ लिए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। 12:12। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश का पहला गीत ये रहा। फरमाइशी नाम और बाकी की जानकारियाँ गीत के बाद।

अमर अकबर एंथोनी फंक का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश का गाया हुआ। धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल थे आनंद बख्शी के। सुनने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी साथियों ने, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा, औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश, इनकी चिट्ठी आई है। और अगला ख़त लिख भेजा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, अस्मा, सालिया, शोएब, पोतरा, मुस्तफ़ा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई, साथ में हैं गांधी बाग आकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इन सभी दोस्तों की फरमाइश हमने पूरी की और अब हम पूरी करने जा रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता और कीसु तासु भगत, डोंगरगांव ज़िला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी, अनिष्का और तन्मय गजभिये ने कार्यक्रम के अगले गीत को सुनना चाहा है।

0: hablar del Key Feelings.
1: ऐ दिल है मुश्किल, इस फिल्म का गीत आपने सुना। धुन बनाई थी प्रीतम ने, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, आवाज़ें थी अरिजीत सिंह, बादशाह जोनिता गांधी और नक्श अजीज की। और अब हम पूरी करने जा रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, सरोजनी और कुंती साहू। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर ऋषिका और रॉबिन राणा। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता जी का गाया हुआ ये गीत।

इस गीत को रचा है गुलजार ने, संगीत तैयार किया है विशाल ने, फिल्म का नाम सत्या।

और अब हम आपको सुनवा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का वो नगमा जिसे गाया है भूपेंद्र सिंह ने, खयाम के संगीत निर्देशन में बोल हैं निदा फाजली के, और सुनने के लिए चिट्ठी लिख भेजी है हमारे इन सभी श्रोताओं ने देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, प्रभाकर जोंघले और आरती जोंघले ने इस गीत को सुनना चाहा है गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से। श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित आर्य ने ये चिट्ठी लिख भेजी है गोल

0: वक्त के। और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 पर भी आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से दोपहर के 12:25 होने जा रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। बारह बजकर 30 मिनट हुए हैं, ये समय है संग्रहालय से का। इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं पंडित विष्णु शर्मा की मूल अमर कृति पंचतंत्र पर आधारित कहानियाँ। आज इसकी तीसरी कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है, आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार श्रोतागण, आशा है आप सब सकुशल हैं एवं पंचतंत्र की महान कथाओं को सुनने के लिए व्यग्र होंगे, तो हम भी प्रस्तुत हैं। पिछली कथा में आपने सुना कि किस प्रकार अपने ही पैरों पर दमनक ने कुल्हाड़ी मारी। संजीवक और पिंगलक की मित्रता से सभी पशुगण दुखी थे। अब दमनक ने योजना बनाई कि किस तरह दोनों को अलग करें। करकट के संदेह करने पर दमनक ने कहा कि अगर योजना सुनियोजित हो तो वो अवश्य सफल होता है, जैसे कौलिक की कथा।
1: किसी नगर में कौलिक तथा रत्कार नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे, एक ही गांव में रहते थे। एक बार समीप के नगर में बड़ा सा मेला लगा, वो दोनों भी मेला घूमने गए। विभिन्न नटी नर्तक एवं चारणों से पूरा मेला सुशोभित था। अनेक देशों से आए दर्शनार्थी भी थे। तभी कौलिक ने सामने से एक विशाल हाथी पर चढ़कर एक अद्भुत सर्वलक्षण संपन्न सुंदरी राजकन्या को आते देखा। उसे देख उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया, होश खोकर धरती पर गिर पड़ा।
2: मित्र कौलिक उठो, क्या हो गया है तुम्हें? ये दशा कैसे हो गई तुम्हारी? तुम्हारे माथे पर भी पसीना आ गया है। उठो मित्र, उठो।
3: पानी,
2: हाँ, पानी। ये लो पानी, लो लो। हाँ, आराम से बैठो। कुछ स्वस्थ महसूस कर रहे हो?
3: हाँ मित्र, स्वस्थ तो हूँ, पर चैन नहीं है।
2: तुम इस तरह अकस्मात बेहोश कैसे हो गए?
3: मित्र, यदि तुम जानना ही चाहते हो तो मेरे दुख को सुनो। अगर तुम मुझे अपना मित्र समझते हो तो मेरी चिता सजाने का प्रबंध कर दो मित्र।
2: ये क्या कह रहे हो मित्र? अपने दुख का कारण मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने का उपाय अवश्य करूंगा।
3: नहीं मित्र, नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे दुख का कोई उपाय हो सकेगा। बस अब तुम विलंब न करके मेरे क्रियाकर्म की तैयारी करो।
2: मित्र कौलिक, चलो क्षण भर के लिए मैं मान भी लेता हूं कि तुम्हारा कष्ट असाध्य है, फिर भी एक बार तो मुझे बताओ, जिससे अपने को अक्षम मानकर मैं तुम्हारे साथ अग्नि में प्रवेश हो सकूं, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी सकूंगा।
3: सुनो मित्र, हाथी पर बैठकर जो कन्या मेले में दिखाई पड़ी थी, उसे देखने के बाद से ही कामदेव ने मेरी ये दशा कर दी थी।
2: ओ,
3: मैं उस राज कन्या के वियोग कष्ट को सहने में असमर्थ हूँ। मैं उसे अपनी बाहों में भींचना चाहता हूँ और जानता हूँ यह असंभव है, अनुचित है, परंतु क्या करूँ? कामाग्नि से जल रहा हूँ, क्या करूँ मित्र, क्या करूँ?
2: मित्र, यदि इतनी सी बात है तो समझो भाग्य से हमारा कार्य बन गया। आज ही उसी राजकन्या से तुम्हारा मिलन हो सकता है।
3: क्या क्या कह रहे हो रत्कार? जिस अंतापुर में वायु को छोड़कर किसी का जाना संभव नहीं, वहां राजकन्या से हमारा मिलन कैसे संभव? कहीं तुम मेरा परिहास तो नहीं कर रहे हो मित्र?
2: नहीं नहीं मित्र, अब तुम देखो मेरी बुद्धि का चमत्कार।
0: और फिर कौलिक को सांत्वना देकर रथकार ने उसी क्षण वरुण वृक्ष की लकड़ी से दो भुजाओं, शंख,

0: वक्र, गदा, पद्म, किरीट तथा कौस्तुभ से युक्त एक यंत्र संचालित गरुड़ का निर्माण किया। फिर उस गरुड़ पर विष्णु के रूप में कौलिक को बैठाकर उसे यंत्र संचालित करने की विधि को दिखाते हुए कहा,
1: इस यंत्र द्वारा रात्रि के समय तुम अंतःपुर में प्रवेश करके अपने वाक चातुर्य से अपने को नारायण के रूप में प्रस्तुत करो।
0: रथकार की बात को सुनकर कौलिक विष्णु रूप में राजकन्या के महल में जा पहुंचा।
2: कौन कौन है वहां झरोखे पर?
3: मैं विष्णु हूँ। राजपुत्री, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं क्षीर सागर में लक्ष्मी को छोड़कर चला आया हूँ।

0: कौन कौन है वहां झरोके पर?
1: मैं विष्णु हूं। राजपुत्री, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं क्षीर सागर में लक्ष्मी को छोड़कर चला आया हूं। मेरे साथ परमानंद का अनुभव करो सुंदरी।
0: भगवान भगवान, मैं क्या इतनी भाग्यवान हूं? मुझे आपके दर्शन हुए, परंतु मैं मनुष्य योनि की हूँ, आप पवित्र हूँ, और आप तीनों लोकों में सबसे पवित्र हैं, वंदनीय हैं, अतः आपसे मेरा मिलन कैसे हो सकता है प्रभु, कैसे?
1: सुंदरी, तुम ठीक कहती हो, किंतु तुम मेरी गोप कुल से उत्पन्न राधा हो, मेरी प्रथम स्त्री हो। अब तुमने यहाँ पृथ्वी पर जन्म लिया है, इसलिए तो मैं भी यहाँ चला आया।
0: यदि यही बात है तो भगवान, चलिए हम पिता महाराज के पास चलते हैं, वे सारी बातें जानकर प्रसन्नता से मुझे आपके हाथों में सौंप देंगे।
1: प्रियसी, तुम्हारा कथन उचित है, परंतु अगर तुम्हें मुझ पर संदेह है तो चलो प्रिय, हम गंधर्व विवाह कर लेते हैं, और यदि फिर भी तुम प्रस्तुत नहीं हुई तो मैं तुम्हारे पिता का सपरिवार सर्वनाश कर दूंगा।
0: प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, आप क्रोधित ना हो प्रभु, आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूंगी।
2: राजकन्या ने कौलिक से गंधर्व विवाह कर लिया, और उस दुष्ट कौलिक ने उसका कामदेव के शास्त्र के अनुसार उपभोग किया। प्रातः काल होने पर दूसरों की दृष्टि पड़ने से पहले ही अपने घर को लौट गया। अगले दिन पुनः राजमहल गया। इस प्रकार उस राजकन्या के साथ रहते हुए कौलिक का समय आनंद से बीतने लगा। शुरू शुरू में तो राजमहल में किसी को उसके आवागमन की भनक भी नहीं लगी, परंतु धीरे धीरे दास दासियों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। कंचुकियों ने भी राजकन्या के खंडित अधर को देखकर आपस में खुसुर-पुसुर करना प्रारंभ कर दिया।
3: अरे शैला, क्या मैं जो देख रही हूँ तुमने भी वो देखा?
4: अरे अरे, तनिक धीरे बोलो, कहीं ये बात महारानी के कानों में चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। वैसे मैंने तो ये पहले ही भांप लिया था, अब तो राजकन्या के अंगों में पुरुष साहचर्योत्तर लक्षण है।
3: परंतु मुझे ये समझ नहीं आता, चारों ओर से सुरक्षित इस अंतापुर में ऐसी घटना कैसे संभव है?
4: देखो कंचुकी, मुझे लगता है कि हमें महारानी को इस घटना से अवगत कराना चाहिए, वो हम पर कितना विश्वास करती हैं, हमें उन्हें अंधकार में नहीं रखना चाहिए।
3: मुझे तुम्हारी बातें ठीक लगती हैं, चलो अब विलंब करना व्यर्थ है।
4: महारानी की जय हो।
5: शैला, कहो क्या संदेश लाई हो?
4: क्षमा चाहती हूँ महारानी, समझ में नहीं आता कि कैसे कहूँ, परंतु आपको सूचित करना भी आवश्यक है।
5: ऐसी क्या बात है, जो भी कहना है निर्भय होकर कहो, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है।
3: बात ये है कि हमने अपनी आँखों से तो कुछ नहीं देखा, परंतु कुछ संदेह है कि अंतापुर में राजकन्या के पास कोई पुरुष प्रवेश करता है, आपकी आज्ञा क्या है?
5: ये क्या कह रही हो, ऐसे लग रहा है मेरे कानों में किसी ने गर्म सीसा उंडेल दिया हो।
4: महारानी, हो सकता है कि ये सब सत्य न हो।
5: मेरे पैरों के नीचे से धरती फिसल रही है।
3: महारानी,
5: मगर ये बात सत्य है तो अनर्थ हो जाएगा, मुझे महाराज को सूचना देनी होगी।
4: महारानी,
6: असंभव, ये कैसे हो सकता है रानी, हमारी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती। ओह,

0: अब क्या होगा? किस दुष्ट ने ऐसा कर्म किया? क्या उसे अपने प्राणों का तनिक भी भय नहीं? ओह, कन्या का पिता होना सचमुच दुखदाई है। चलिए महारानी, हम अभी राजकन्या से यथार्थ की जानकारी लेते हैं।
1: प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री।
2: पापिन, कुल कलंकनी, इस प्रकार तूने अपने शील का खंडन क्यों किया?
0: कौन है वो जो अपने प्राणों के मोह को छोड़कर इस दुर्ग समान अंतपुर में आने का दुस्साहस करता है?
2: बोल, सत्य बोल।
1: आप क्रोधित ना हो, अपनी पुत्री पर विश्वास रखें। आपके दिए संस्कार मैं भूली नहीं हूँ। माँ, यहाँ आने वाला पुरुष कोई साधारण मानव नहीं है, साक्षात विष्णु है। वही प्रतिदिन रात्रि के समय गरुड़ पर चढ़कर यहाँ आया करते हैं।
0: क्या कह रही हो पुत्री, ये कैसे संभव है? स्वयं नारायण यहाँ आते हैं? आपने हमें इस बात की जानकारी पहले क्यों नहीं दी? हम भी प्रभु के दर्शन कर लेते।
1: नहीं पिता महाराज, उन्होंने हमें निषेध किया था। मेरे अलावा वो किसी को दर्शन नहीं दे सकते, ना ही बात कर सकते हैं। मैं उनसे गंधर्व विवाह कर चुकी हूँ। पिताश्री, यदि आपको मेरी बातें असत्य लगती हैं, तो आज ही रात्रि में छिपकर आप स्वयं अपने नेत्रों से नारायण के दर्शन कर सकते हैं।
2: महाराज, हम धन्य हो गए। आपकी भाग्य वृद्धि हो, साक्षात नारायण से हमारी कन्या ने गंधर्व विवाह किया है। ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है।
0: आप सत्य कहती हैं महारानी। आज हम दोनों भगवान नारायण को रात्रि में छिपकर खिड़की से देखेंगे।

0: महारानी, रात का पहला पहर तो बीतने को आया और अभी तक कोई नहीं आया है।
1: धैर्य रखे महाराज। वो देखिए महाराज, गरुड़ पर साक्षात विष्णु आकाश मार्ग से आ रहे हैं। वाह, अद्भुत।
0: हाँ महारानी, हम और हमारा कुल धन हो गए। इस ब्रह्मांड में मुझसे बढ़कर धनी और भाग्यवान कोई नहीं है। हमारी संतति का उपभोग स्वयं नारायण कर रहे हैं। हमारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होगा। अब मैं सारे संसार का स्वामित्व लूंगा और सभी मेरे दास होंगे। मेरा जमाता स्वयं विष्णु भगवान है। सारे सीमावर्ती राजागण मेरे अधीनस्थ होंगे।
2: राजा तो उन्मादित हो गए, सभी राज्यों पर चढ़ाई करने लगे, सभी के साथ युद्ध छेड़ दिया और वीर राजाओं के हाथों परास्त होने लगे।

0: पुत्री, तुम्हारे जैसी कन्या और विष्णु जैसे जामाता के रहते हैं, क्या यह संभव है कि राजागण मुझसे युद्ध करें और मुझे किले में बंदी बनाने का दुस्साहस करें? तुम जामाता से कहो कि मेरे शत्रुओं का विनाश कर दे, नहीं तो कल सूर्य उदय तक वो हमारे दुर्ग को नष्ट कर देंगे।
1: जी पिताश्री।

सुंदरी, रात्रि के इस मधुर बेला में तुम्हारा साथ कितना आनंददायक है। परंतु तुम शांत क्यों हो? कोई चिंता?

0: भगवान, भगवान आपके रहते मेरे पिता शत्रुओं से घिरे हुए हैं, ये कैसे संभव है? आप कृपया उनके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश कर दीजिए प्रभु।
1: सुभगे, तुम्हारे पिता के शत्रुओं की संख्या ही कितनी है, तुम निश्चिंत रहो, मैं क्षण मात्र में अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनको तृण की तरह छिन्न भिन्न कर डालूंगा।
0: हाँ भगवान, हाँ, आप नहीं करेंगे तो उनकी सहायता और कौन करेगा? कल प्रातःकाल दुर्ग में विनाश हो जाएगा प्रभु। दुर्ग के अंदर ईंधन रसद समाप्त हो चुके हैं। मेरी अवस्था देखिए, मेरी अवस्था को देखते हुए आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें।
1: सोचता हूँ, दुर्ग के टूट जाने पर तो राजकन्या भी छूट जाएगी, ये तो और भी उत्तम होगा। मैं आयुध गरुड़ पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से प्रकट हो जाऊंगा। संभव है कि मुझे वासुदेव समझकर शत्रुपक्ष भयभीत हो जाए और राजा की सेना उसे परास्त कर दे, और अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो क्या? प्रिय, मेरे रहते तुम्हारी आंखों में आंसू, ये मेरे लिए असहनीय है। अब मैं तभी तुम्हारा दर्शन करूंगा जब संपूर्णतः शत्रुओं का विनाश हो जाए। तुम अपने पिता महाराज से कहो कि प्रातःकाल वो सेना के साथ निकलकर शत्रु पक्ष से युद्ध करें, मैं आकाश से उनके शत्रुओं को निस्तेज कर दूंगा, वे आसानी से परास्त हो जाएंगे।
0: प्रभु, प्रभु,
2: कौलिक के वचन को सुनकर राजपुत्री ने अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत सुना दिया। पुत्री की बात को सुनकर राजा बड़े प्रभावित हुए। उधर कौलिक भी शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को लेकर गरुड़ पर चढ़कर आकाश मार्ग से युद्ध करने के लिए चल दिया। उधर एक मजेदार घटना घटी। त्रिकालदर्शी ने ध्यान लगाकर सारी घटना जान ली। उन्होंने गरुड़ से कहा,
3: हे गरुड़, क्या तुम्हें विदित है कि कौलिक काट के गरुड़ पर चढ़कर मेरा रूप धारण करके राजकन्या के पास जाया करता है?
4: हाँ देव, मैं उसके प्रत्येक कृत्य को जानता हूं, उसका साहस अद्भुत है, परंतु अब क्या किया जाए?
3: मरने का निश्चय करके प्रतिज्ञाबद्ध होकर वह कौलिक आज युद्ध क्षेत्र में गया है, और यह निश्चित है वह आज वीर क्षत्रियों के हाथ से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त होगा।
4: किंतु भगवान, उसके मरने के बाद सभी लोग ये कहने लगेंगे कि क्षत्रियों ने मिलकर वासुदेव और गरुड़ दोनों को पराजित कर दिया। इस अपवाद के फैलते ही लोग हमारी अर्चना बंद कर देंगे। कोई उपाय कीजिए ना प्रभु।
3: आप सत्य कहते हैं गरुड़देव, आप तत्काल जाकर उस काष्ठमय गरुड़ के शरीर में प्रवेश करें।
4: जी,
3: सभी शस्त्रों को सजग करके मैं भी कौलिक के शरीर में प्रवेश करता हूं, जिससे वो शत्रुओं का विनाश कर सके।
2: और फिर स्वयं नारायण एवं गरुड़ ने सारे शत्रुओं को क्षण भर में परास्त कर दिया। राजा और प्रजा दोनों धन्य धन्य होने लगे।

0: वाह, आनंद ही आनंद है। के तो मेरे पूर्व जन्मों का फल ही है कि तीनों लोकों के स्वामी आज मेरे जमाता है। उनके कारण ही मैं सीमावर्ती राजाओं को परास्त कर सका। प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न है।
1: पिताश्री प्रणाम। आज

0: वो शुभ घड़ी आ गई है जब आपके जामाता आपसे मिलना चाह रहे हैं।
1: क्या? अहो भाग्य, अहो भाग्य, आज मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। प्रभु आइए, प्रभु पधारिए।
2: मुझे लज्जित न करें, मैं आपसे कुछ कहने आया हूं।
3: और फिर कौलिक ने महाराज को शुरू से अंत तक सारी घटना सुना दी। कौलिक के सत्य कथन को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने सोचा, ये शत्रुओं का विनाश करने वाला वीर, इससे सुयोग्य दामाद हमें कोई नहीं मिलेगा। उसने राजकन्या से कौलिक का विवाह करवा दिया। दमनक ने ये कथा सुनाकर कहा कि षड्यंत्र सुनियोजित ढंग से किया जाए तो ब्रह्मा को भी ज्ञात नहीं होता।

आगे करकट और दमनक क्या करेंगे ये आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंचतंत्र की तीसरी कड़ी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। भारत और यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच अबू धाबी में हुए। धार की भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में रखी माँ बागदेवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। CBSE ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए दो चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे और हर चरण में सिर्फ एक आवेदन मान्य होगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। और IPL में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में KKR और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

हिंदी मातृभाषा नहीं अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मिटने वालों की भक्ति है। मैं पुनः दोहराती हूँ कि हिंदी मातृभाषा नहीं अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मिटने वालों की भक्ति है। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ आपकी बहन स्मृति और मैं लेकर आई हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा, जिसमें होंगी ढेरों बातें और संगीत। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कार्यक्रम महिला सभा। श्रोताओं, किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम मात्र से नहीं होती है, उसकी पहचान उसके कर्मों से, उसके स्वभाव से, उसके पहनावे से और उसकी भाषा से होती है। जब हम कभी बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ टूरिज्म को देखते हैं, तो उनके बिना बताए ही उनके पहनावे से और उनकी भाषा शैली से उनके निवास स्थान का अंदाजा लगा लेते हैं। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम है, जिसका जन्म सदियों पूर्व हुआ है। हाँ, मौखिक भाषा तक पहुँचने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी रही है। हमारी हिंदी भाषा भारत की राजभाषा, सांस्कृतिक धरोहर की संवाहक है, एकता का सूत्र है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक दर्जे पर आई और ये दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई। यह भारतीय संस्कृत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाती है और देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ती है। श्रोताओं, भारत की भाषाई विविधता हमारे देश सबसे बड़ी धरोहरों में से एक है। हमारी भारतीय भाषाओं का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका इतिहास अत्यंत समृद्ध भी है। आइए अपनी भाषा के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। पहला, संवैधानिक स्थिति। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया। इनमें

0: मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत एवं अन्य भाषाएं शामिल हैं। भाषाई परिवार। भारत की भाषा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जैसे गद्य भाषा एवं पद्य भाषा। हमारी भाषा पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखित हैं। ये पुस्तकें NCERT, ICSE या राज्य बोर्ड के तहत तैयार की जाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम बनाना है और साथ ही व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलने लिखने की कला सिखाती है। अब आइए बात कर लेते हैं भारतीय भाषा की पुस्तक योजना के बारे में। तो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री और पुस्तकों को बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं इसके उद्देश्य। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ बनाना है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि छात्रों को उनकी अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त हो सके, जिससे विषय की समझ बेहतर हो। अनुवाद और मूल लेखन इसके तहत अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। साथ ही क्षेत्रीय लेखकों को मूल सामग्री लिखने को प्रेरित किया जाता है। उच्च शिक्षा पर ध्यान। यह योजना विशेष रूप से इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और विज्ञान जैसे तकनीकों पाठ्यक्रमों की पुस्तकों को स्थानीय भाषाओं पर उपलब्ध कराने पर जोर देती है। डिजिटल उपलब्धता। पुस्तकों को न केवल प्रिंट रूप में बल्कि ईबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि दूर दराज के छात्र भी इसका लाभ उठा सके और अपनी भाषा का भी महत्व समझे। अपनी भाषा अपनी पहचान, यही है भारत की शान। श्रोताओं, हमारी बातें अभी और होंगी, उसके पहले सुनते हैं यह गीत जिसे आवाज दी है सुनिधि चौहान और करीना कपूर ने।
1: A daughter is a daughter.

0: तो इस गीत के बाद मैं स्मृति पुनः प्रस्तुत हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा में। श्रोताओं, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जब हमारे पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तब से आज तक आकाशवाणी जन जन तक देश विदेश की खबरों, संगीत, आवश्यक जानकारी व मनोरंजन करती आई है। आज भी बहुत से लोग हैं जो रेडियो को बड़ी ही उत्सुकता के साथ सुनते हैं। तो एक ऐसी ही श्रोता हमारे बीच हैं, पुष्पा सिंह जी, जो रीवा जिले के माँ गायत्री शक्तिपीठ की ट्रस्टी हैं, जिन्हें सुनते हैं एक भेंट वार्ता के माध्यम से। तो आइए सुने यह भेंट वार्ता। श्रोताओं, आज हमारे बीच मौजूद हैं पुष्पा सिंह जी, जो कि रेडियो की बहुत अच्छी श्रोता हैं और आज भी रेडियो से इनका बहुत ही गहरा लगाव है। पुष्पा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते बहन स्मृति जी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रेडियो के लिए मुझसे कुछ जानना चाह रहे हैं और मुझे बहुत ही खुशी है। और रेडियो रेडियो का तो कोई बराबरी नहीं कर सकता, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन रेडियो की बात ही अलग थी। हम तो बचपन से रेडियो के इतने शौकीन थे कि कोई भी काम करते थे तो रेडियो ही चला के काम करते थे और आपका पता ही नहीं चलता था कि क्या हमारा काम पूरा हो गया। और हम बड़े प्रेम से सारे काम हमारे होते थे और खासकर महिलाओं के कार्यक्रम, महिलाओं के लिए जो आते थे। और मैं गीतों की बहुत शौकीन थी, चाहे वो फिल्मी हो चाहे भजन हो, उनको मैं बहुत अच्छे से सुनती थी और मैं बहुत शौक थी। हालांकि मुझे विविध भारती के तो सारे ही प्रोग्राम बहुत पसंद थे, चाहे बिना का गीतमाला हो, चाहे हवा महल हो, हवा महल की कहानियाँ आज भी हम सुनते हैं, कभी भी मन हो जाता है। मैं टीवी के बजाय रेडियो को देख सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे हमारे काम भी होते। टीवी तो हमको देखना पड़ता बैठ के, लेकिन रेडियो में हम काम भी करते रहते हैं और हम सब सुनते भी रहते हैं।
0: तो यानी कि इसमें कोई समय की बर्बादी नहीं होती है।
1: समय की हमारी बर्बादी नहीं होती है बहन, और जो है हमारे काम भी अच्छे से होते रहते हैं। और कई बार हवा महल का जो प्रोग्राम आता है, पुरानी जो छोटी छोटी सी कहानी, अपने पति पत्नी की आपसी वार्तालाप, इतना मेरे को पसंद आता है और हम लोग उसके लिए बड़े बेकरार रहते थे। और बिना का गीतमाला, कौन सा गाना टॉप पे आएगा, ये कौन सा गाना, ये बड़ी उत्सुकता हमारे मन में रहती थी। और फौजियों के लिए कार्यक्रम में वो भी बहुत पसंद था। मैं रेडियो की इतनी बड़ी प्रशंसक हूँ कि मैं क्या बताऊँ, कितनी तारीफ करूँ। हर प्रोग्राम ही उसके सब बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे समाचार हो, चाहे बिना का गीतमाला हो, और चाहे हवा महल हो, या छोटी छोटी कहानियाँ हो, या महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम होता है उसमें तरह तरह के व्यंजन बनाना भी बताते हैं, तो बहुत पसंद आता है।

0: बार हम लोग बहुत ट्राई करते थे कि आज ये आया है बना के देखते हैं, क्योंकि पहले जमाने में ये तो होता नहीं, गूगल तो होता नहीं था, गूगल तो होता नहीं था, तो हम रेडियो पर जो आती थी व्यंजन विधि उसको सुनते थे और फिर बनाने का प्रयास करते थे।
1: जी जी,
0: तो बहुत अच्छा लगता था हमें, बहुत ही मतलब कहाँ तक मैं उसकी तारीफ करूँ। आज भी हम उसी तरह से रेडियो के प्रशंसक हैं, चाहे कितना ही भी आ गया है, जब यहाँ बहुत सारी चीजें आ गई है,
1: आधुनिकीकरण आया है
0: लेकिन उसका मुकाबला आज भी नहीं है। आपसी बहनों की जो चर्चा होती है, जब दो बहनें आपस में बात करती हैं तो लगता है कितनी अपनत्व है कितना। और फरमाइशी प्रोग्राम में गांव-गांव से टीवी में कहाँ आता है, गांव से आज भी हम जब सुनते हैं ना फरमाइशी प्रोग्राम, तो जो बताते हैं ना, हम तो किसानी का काम करते हैं, हम तो सिलाई का काम करते हैं, हम तो खेत में बैठ कर रेडियो सुन रहे हैं, तो इतना अपनत्व तो लगता है कि हम पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। फरमाइशी प्रोग्राम जो है उसमें जो आता है, इतना अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा लगता है कोई ये सब अपने जुड़े हुए हैं, सब हमारे ही हैं, कहाँ कहाँ से कितना जाते हैं, अपने अपने पत्र भेजते हैं, कितनी खुशी होती है जब उनके पत्र मतलब पढ़ते हैं,
1: पढ़े जाते हैं हमारे नाम पढ़े जाते हैं, तब
0: बहुत खुशी होती है। मैं भी पहले बहुत पत्र लिखती थी, एक आध बार मेरा भी नंबर आया है, और मैं भी पहले रेडियो में प्रोग्राम देती थी, तो गीत में भी मैंने प्रोग्राम दिया है अपना, और चर्चा में वैदिक संस्कृति के ऊपर भी मेरा एक प्रोग्राम हुआ था कि भारतीय नारी जब और अब, इसमें हमारा प्रोग्राम हुआ था। तो रेडियो का तो कोई नहीं है,
1: बिल्कुल
0: तोड़ नहीं है, चाहे कितना भी आधुनिकता आ जाए और कितना ही हो जाए, लेकिन रेडियो हमारे लिए आज भी उतना ही आवश्यक है और बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात है कि हमारे किसी काम पर उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है,
1: बिल्कुल
0: नहीं पड़ता है, चाहे हमारे काम भी चलते रहते हैं और हम सुनते भी रहते हैं।
1: बिल्कुल पुष्पा जी, आपने अच्छे से जानकारी दी, आप वाकई में रेडियो की एक अच्छी श्रोता हैं, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की खुशी में आज आपसे हमारी बात हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दी, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी।
0: मेरी तरफ से भी बहन स्मृति बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके उत्सुकता को व्यक्त कर सकूं और आपके लिए कुछ थोड़ा सा अपना समय दे सकूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: तो बहनों, अभी हमने सुनी है भेंटवार्ता जिसमें बात कर रही थी पुष्पा सिंह जी। श्रोताओं, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है भारतीय भाषा के बारे में, तो हमारी भाषा का कोई तोड़ तो नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी हर प्रांत की, हर क्षेत्र की भाषा की अपनी अलग पहचान होती है, एक रस होता है, और साथ ही भाषाओं में और अधिक रस कब पड़ता है, जब कोई लेखक या शायर अपने शब्दों में या भाषा को मिश्रित करता है, तो लोग मंत्रमुग्ध होकर भाषा का आनंद लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही शायरा सकीला बानो भोपाली के बारे में, जो शायरा होने के साथ साथ कवियत्री और मंच संचालिका भी थी। उनका जन्म 1940 में भोपाल में हुआ था। वो खास तौर पर उर्दू शायरी और मुशायरों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुत के लिए जानी जाती थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे उस दौर की पहली मशहूर महिला शायरों में से एक थी, जिन्होंने बड़े बड़े मुशायरों में मंच संभाला और अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज, अंदाज और हास्य से भरी शायरी लोगों को बहुत पसंद आती थी। सकीला बानो भोपाली ने देश विदेश के कई मुशायरों में भाग लिया और उर्दू साहित्य को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें मुशायरों की मलिका भी कहा जाता है। उनकी शायरी में प्यार, समाज, महिलाओं की भावनाएं, जिंदगी के अनुभव झलकते थे। वे कई फिल्मों एवं रेडियो कार्यक्रमों से भी जुड़ी रही। आइए सकीला बानो के बारे में कुछ और सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। सकीला बानो को कम उम्र में ही संगीत और शायरी में रुचि थी, इसलिए उन्होंने बचपन से ही शायरी लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी कव्वाली को केवल धार्मिक मंचों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मनोरंजन और सामाजिक संदेश का माध्यम भी बनाया। उनकी गायकी में उर्दू शायरी, सूफी अंदाज और हल्का भी शामिल होता था। वो अपनी तेज आवाज, आत्मविश्वास और मंच संचालन के लिए मशहूर थी। चूंकि उस दौर में महिला का मंच तक पहुँच पाना एवरेस्ट चोटी तक पहुंचने से कम नहीं था, इसलिए उनके रास्ते में भी बहुत सारी रुकावटें आईं। लेकिन सकीला बानो हार न मानी, उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से

लोगों का मन जीता और महिला कलाकारों के लिए नई राह बनाई और इस तरह लोगों के मन में अपनी छाप छोड़ने के बाद सन 2002 में सकीला बानो की मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी लोग सकीला बानो को बड़े सम्मान से याद करते हैं। तो आइए हम भी उनके सम्मान में सुनते हैं ये कव्वाली।

बहनों, गर्मी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। तेज धूप और चुभती गर्मी ने इंसान का हाल बेहाल किया है। घर से बाहर निकलना दुर्लभ होता जा रहा है। ऐसे में हमें खुद की सुरक्षा का ध्यान बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि घर से बाहर निकलते वक्त चेहरे को सफेद कपड़े से ढक कर रखें और पानी की बोतल साथ रखें। और हाँ, धूप से लौटने पर एक सांस में ज्यादा पानी ना पिए, थोड़ा थोड़ा करके पिए। साथ ही मसालेदार खाने से थोड़ा परहेज करें और ठंडक वाले भोजन को अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे दही, छाछ, खीरा, ककड़ी, नींबू, पुदीना, खिचड़ी या मूंग दाल, बेल का शरबत आदि। इसी कड़ी में हम आज जानेंगे मुनगे की कढ़ी बनाने की विधि। तो सबसे पहले जान लेते हैं कढ़ी को बनाने की सामग्री। सामग्री है 1 कप खट्टा दही, 2-3 चम्मच बेसन, 2 साबुत लाल मिर्च, राई छोटा चम्मच, मुनगा 8-10, हल्दी, सरसों का तेल, मेथी, करी पत्ता, लहसुन व नमक। अब आइए जानते हैं इसे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले मुनगे को छीलकर छोटे छोटे लगभग 2-2 इंच के टुकड़े कर लें और तेल में फ्राई कर लें। अब एक बर्तन में दही, बेसन व पानी का मिश्रण तैयार करें। इसके बाद कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गर्म करें और राई, मेथी दाना, साबुत लाल मिर्च, लहसुन तथा हल्दी का तड़का लगाएं। तड़का ठीक से सुनहरा हो जाने पर दही

बेसन के मिश्रण को भी कढ़ाई में डालें और अंदाजें कि मिश्रण न ज्यादा गाढ़ा हो और न ज्यादा पतला, और बड़े चम्मच से धीरे धीरे चलाते रहें। कढ़ी में उबाल आने पर मुनगे के टुकड़े को डाल दें, साथ ही स्वाद अनुसार नमक भी डालें और ठीक से पकाएं। अब इसे चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, यह दोनों में ही लाजवाब लगती है और सेहत से भरपूर होती है। खासकर की गर्म के मौसम में मुनगे की कढ़ी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो बहनों, अंत में सुने एक और गीत जिसे आवाज दी है शंकर महादेवन ने।

बहनों, अभी हमने सुना ये गीत जिसे आवाज दी थी शंकर महादेवन ने, और इसी गीत के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक दीजिए अपनी बहन स्मृति को इजाजत। नमस्कार।

श्रोता बहनें अभी सुन रही थी कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
3: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है लोक संगीत, कलाकार हैं मणिमाला सिंह और साथी।

0: मणिमाला सिंह और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है सुगम संगीत। कलाकार हैं मुकुल सोनी।

मुकुल सोनी के गाए इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है फिल्म संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत से सजा गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। गीत संगीत एक बार फिर हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन का। फिल्म है आरज़ू।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म आरजू के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत भी करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करनी होंगी।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। प्रदेश के कटनी जिला चिकित्सालय सहित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मरीजों के निशुल्क डेंगू और मलेरिया की जांच की जा रही है। जबलपुर में आज न्यायपालिका से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीश शामिल हो रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजनरी एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन विषय पर आधारित इस सेमिनार में न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंटीग्रेशन को लेकर चर्चा की जा रही है। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसले में भोजशाला को राजा भोज के समय का वाग्देवी का मंदिर माना और हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है, जहां शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौके पर शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटों पर तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आगरमालवा जिले में शनि जयंती पर शनि मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। सतना जिले के चित्रकूट में श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं।

0: प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के 37 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, उज्जैन और मंडला में रात में भी तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, धार और देवास सहित कई जिलों में तेज लू चलने की संभावना जताई गई है। विश्व कप T20 से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने शनिवार सुबह उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर सहित अन्य खिलाड़ियों ने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी सर्किल जेल के मुलाकाती क्षेत्र में लीगल एंड हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसमें बंदियों और परिजनों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी गंभीर अनुवांशिक रक्त विकारों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आज रायसेन में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। CBSE ने कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2,00,000 से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की

0: भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
4: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का

0: आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री K.पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।

0: सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश का पहला गीत आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह की आवाज में। हसन कमाल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है बप्पी लहरी ने। फिल्म है एतबार।

एतबार फिल्म का गीत अभी आपने सुना और इसकी फरमाइश हमें सीतामणि बिहार से भेजी थी अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, रुबीना, आरिज, अरहान, हमज़ा और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा की

यही पसंद थी। इसी गीत को सुनना चाहा था बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। इंदिवर की रचना है, राजेश रोशन का संगीत और फिल्म है आखिर क्यों। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने। भागचंद साहू, अजय साहू, राज साहू, करिश्मा, प्रेमबाई और साहू परिवार के सभी सदस्यों ने राजेंद्र नगर गंज बासौदा विदिशा से ये पत्र भेजा है। खुरई तेगड्डा ग्राम कल्याणपुर वीर से फरमाइश भेजने वाले श्रोता

प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने भागचंद साहू, अजय साहू, राज साहू, करिश्मा, प्रेमबाई और साहू परिवार के सभी सदस्यों ने राजेंद्र नगर गंज बासौदा विदिशा से ये पत्र भेजा है। खुरई तिगड्डा ग्राम कल्याणपुर वीर से फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं मनीष कुमार पाराशर, परी, आकांक्षा, राधिका, नीना, खुशी, प्रेम नारायण, हीराबाई, हेमंत, अभिषेक, मोहित, मयंक, अनीता, सविता, पूनम, रविशंकर, निरंजन, राकेश, मुकेश, तरुण, प्रवेश, नमन, पवित्र दुबे और उनके सभी साथी।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला गीत जगजीत सिंह की आवाज में। फिल्म राही के लिए इस गीत को लिखा है नक्श लायलपुरी ने। संगीत जगजीत सिंह का है और फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला खां, नसीम बेगम, आयशा खां, हादिया, अस्मा, सालेहा, शोएब और उनके परिवार के सभी सदस्य। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेगी से भागवत वर्मा। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से एमएम राजावत, मधु, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और राजावत परिवार के सभी सदस्य। तो पेश है आप सबकी पसंद का ये गीत

और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत भूपेंद्र सिंह की आवाज में। फिल्म है एक नया रिश्ता। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। फरमाइशी पत्र प्रमिलागंज आलौट जिला रतलाम से आया है। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश की फरमाइश है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और हार्दिक और वंश बत्ता ने इस गीत को सुनना चाहा है। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली की भी यही पसंद है।

एक नया रिश्ता। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में। इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के हैग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। गृहमंत्री अमित शाह आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान श्री शाह विभिन्न समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का

आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। CBSE ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए 2 चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 37 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास के लिए तेज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। IPL में आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में KKR और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जो आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। शाम 6 का समय रहेगा आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का तीसरा भाग। इस विशेष भेंटवार्ता में आप सुनेंगे यादें, अनुभव और बदलता प्रसारण परिदृश्य विषय पर आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री अनिल श्रीवास्तव से ली गई भेंटवार्ता।

7:21 का समय रहेगा ग्राम सभा कार्यक्रम का। 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 से चित्रपट संगीत का आनंद आप ले सकेंगे। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:01 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। अब मीडियम वेव पर यह प्रसारण यहीं विराम पाता है। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है लोक संगीत।

संगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार है मुकुल सोनी।

मुकुल सोनी की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से। पेश है चित्रपट संगीत।

चिन्मय श्रीप्रदा और अरिजीत सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत। संगीत शंकर एहसान लॉय का था और फिल्म थी टू स्टेट्स। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म है दावते इश्क, आवाज़ सुनिधि चौहान और जावेद अली की है, संगीत साजिद वाजिद का।

अंकित तिवारी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे एक विलन फिल्म से लिया गया ये गीत। इस गीत को लिखा था मनोज मुंतशिर ने और संगीत अंकित तिवारी का था। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। फिल्म है हम्टी शर्मा की दुल्हनिया।

मोहिन साबरी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे शाहीन इकबाल का लिखा गीत। संगीत संजीव श्रीवास्तव का था और फिल्म थी रिवॉल्वर रानी। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी भोपाल है। सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के हैग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। गृहमंत्री अमित शाह आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान श्री शाह विभिन्न समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। CBSE ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए दो चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास के लिए तेज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में KKR और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: नमस्कार साथियों, अनमोल धरा के इस नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज नागर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ पर्यावरण से जुड़ा है बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सीधे तौर पर प्रभावित करता है। हमारा आज का विषय है पिघलते ग्लेशियर, खतरे में दुनिया। इस विषय पर गहराई से बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी इपको भोपाल के मुख्य वैज्ञानिक श्री लोकेन ठक्कर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: सर। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर ये हिमनद या ग्लेशियर क्या होते हैं?
1: देखिए, जैसे सतपुड़ा के पहाड़ हैं, विंध्याचल है, ये पहाड़ पत्थर के हैं। लगभग ऐसे ही बड़े बड़े पहाड़ बर्फ के हैं और ये वहाँ बनते हैं जहाँ पर तापमान बहुत कम रहता है और बर्फ गिरती है। हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल से बर्फ गिर रही है और बर्फ़ पिछले साल की बर्फ़ पिघल नहीं पाती और फिर नई बर्फ़ आ जाती है। इस तरह से एक किस्म का पहाड़ बनता जाता है और ये पहाड़ ग्लेशियर्स कहलाते हैं। हमारे यहाँ हिमालय में हैं, यूरोप में हैं, देश के दुनिया के कई जगह पर ग्लेशियर्स हैं और ये ग्लेशियर्स हमारे पूरे जलवायु को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसी भूमिका आप समझिए कि तटीय क्षेत्रों की है, जैसी भूमिका मरुस्थल की है, वैसी भूमिका इन ग्लेशियर्स की है, जिसको हम हिंदी में हिमनद भी कहते हैं। हिम मतलब बर्फ, बर्फ की नदियां हैं, ये जमी हुई नदियां, ऐसी समझ लीजिए आपकी जमा हुआ बर्फ़, हज़ारों करोड़ों साल का जमा हुआ बर्फ़ है और ये हमारे पूरे क्षेत्र को के तापमान को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है।
0: सर, पर्यावरण संतुलन में इनकी क्या भूमिका है?
1: देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जहाँ तक जैसा मैंने कहा कि जलवायु को नियंत्रित करते हैं। हमारी बहुत सारी जो मानसून की जब हवाएं चलती हैं तो ये हिमालय से टकरा करके बारिश ठंडी होती है और फिर बारिश होती है। तो आप समझिए कि अगर हमारे पर्यावरण का नियंत्रण करना है, अगर हमारे जलवायु को नियंत्रित करने का, इन सब में जो हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है।
0: तो नदियों के अस्तित्व के लिए ये कितने ज़रूरी हैं?
1: देखिए, भारत में जो नदियां हैं वो एक तो ऐसी हैं जो कि ग्लेशियर से पिघलने से आती हैं
0: जी।
1: जैसे हमारी सबसे देश की सबसे पूज्यनीय, सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा
0: जी।
1: ये ग्लेशियर फैड रिवर है। ग्लेशियर्स के, क्योंकि बर्फ है तो पिघलती तो है
0: जी।
1: जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि ग्लेशियर्स ऐसे बनते हैं कि साल भर में जब भी बर्फ गिरी तो वो जमती जाती है।
0: हाँ।
1: और कुछ समय से होता है जब बर्फ़ नहीं गिर रही है
0: जी।
1: लेकिन फिर से बर्फ़ गिरना शुरू होती है तो पिघलती कम है, जमती ज़्यादा है। जब ऐसी स्थिति होती है तो ये ग्लेशियर्स बनते जाते हैं, लेकिन पिघलते हैं ग्लेशियर्स, क्योंकि जब कभी थोड़ी सी गर्मी होती है, थोड़ा तापमान बढ़ेगा तो ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं और इन ग्लेशियर्स के पिघलने से ही कई नदियों का जन्म होता है। कई नदियों में जो अविरलता है, उनमें जो प्रवाह है, वो ग्लेशियर से के पिघलने से आता है। तो ये बहुत सी नदियाँ ऐसी हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे बताया गंगा नदी, उसके दूसरी जो ऐसे हमारे प्रदेश की जो जीवन रेखा है नर्मदा नदी, वो ग्लेशियर फैड रिवर।

0: नहीं है,
1: जी
0: क्योंकि वो तो निकलती है हमारे कंटेक्ट से,
1: जी
0: वहाँ कोई ऐसी बर्फ़ नहीं जमती है। तो नदियाँ ग्लेशियर फैट भी हैं, और बगैर ग्लेशियर के भी पहाड़ों से, सतपुड़ा की विंध्याचल से कई नदियाँ हमारे प्रदेश में जो हैं, बेतवा है तो क्षिप्रा है तो चंबल है, महानदी है, सोन है, नर्मदा है, ये सारी नदियाँ ग्लेशियर फैट नहीं हैं। लेकिन बहुत सारी नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र है जो
1: जी,
0: हमारी पहाड़ों से निकलने वाली,
1: यमुना नदी है
0: यमुना तो गंगा की सहायक नदी
1: जी,
0: है, यमुनोत्री भी, लेकिन फिर भी
1: हाँ
0: इसके अलावा आप देखें तो जो पंजाब में प्रांत से
1: हाँ
0: ऊपर नदियाँ हैं, चाहे वो
1: रीवा,
0: रेवा
1: सतलुज,
0: हो, सतलज
1: ब्यास
0: हो, ब्यास हो, सिंधु हो, ये सारी नदियाँ ग्लेशियर फैट रिवर्स हैं।
1: जी, इनमें साल भर पानी रहता है
0: इनमें
1: सर।
0: साल भर पानी
1: हाँ
0: रहता है, अविरलता रहती है, क्योंकि बर्फ़ पिघलती रहती है, इसमें प्रवाह
1: हाँ
0: बना रहता है।
1: जी
0: इसलिए जीवन नदियों के जीवन, देखिए नदियों की जो दो महत्वपूर्ण नदियों के गुण हैं, एक है अविरलता, दूसरी उसकी निर्मलता,
1: जी
0: मतलब पानी स्वच्छ हो, निर्मल हो, और पानी इतना हो कि उसमें बहाव हो, उसमें अविरल रहा है,
1: जी
0: धार टूटे ना।
1: जी
0: तो अगर ये दो चीज़ें, तो नदी ज़िंदा है, वरना फिर नदी में
1: हाँ
0: प्राण की कमी, कहीं उसमें जीवन की कमी हो
1: हाँ
0: जाती है।
1: सर, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं?
0: देखिए ग्लेशियर्स दो प्रकार के होते हैं, जिनको एक हम कहते हैं वैली ग्लेशियर्स और दूसरा कहलाते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। जो वैली ग्लेशियर्स होते हैं वो पहाड़ों में की घाटियों में बहते हैं, और जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हैं वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका में है या ग्रीनलैंड में है। अब आपने कहा कि कौन से कारण हैं जिनसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो आप समझिए बर्फ़ पिघलने का कारण क्या होता है। सिंपल है कि बर्फ़ के तापमान से ज़्यादा तापमान कहीं होगा तो बर्फ़ पिघलेगी। फ्रिज में तो बर्फ़ नहीं पिघलती, लेकिन बर्फ़ को हम जैसे ही फ्रिज से बाहर निकालते हैं वो पिघलना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि तापमान में कहीं ना कहीं अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे। और तापमान में, जो पृथ्वी के तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है, उसका मूल कारण है जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि तपती वसुंधरा, तो ये वसुंधरा क्यों तप रही है, ये कैसे तप रही है, इसका मूल कारण है कि जितने हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है,
1: जी
0: ये या बहुत सारी जो फ्लोरो क्लोरो फ्लोरोकार्बन से, जिनको हम सुपर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ये
1: जी
0: सारी ग्रीन हाउस गैसेस वातावरण में जा कर के पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं,
1: जी
0: और पृथ्वी के सतही तापमान में जब वृद्धि होगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे और बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। इसके साथ क्या हो रहा है कि समुद्र का जो पानी है उसका भी तापमान बढ़ रहा है। तो
1: जी
0: क्या होता है कि जैसे मैंने कहा, जो अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स हैं ये समुद्र में हैं, तो क्या होगा कि जब समुद्र का पानी बढ़ेगा तो ये ग्लेशियर्स के बड़े बड़े पहाड़, अगर आप टेलीविजन पर या कहीं वीडियो में देखें तो आपको दिखाई देंगे कि आपको बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो टूट टूट करके समुद्र में आ रहे हैं, और समुद्र का तापमान बढ़ गया है।
1: जी
0: तो उससे क्या हो रहा है, दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो समुद्र के तापमान के बढ़ जाने से ये बर्फ़ जल्दी से पिघल रही है, मतलब अगर बर्फ़ को हम गर्म पानी में डालेंगे तो जल्दी से पिघलेगा। तो समुद्र का तापमान बढ़ गया, उसमें ग्लेशियर्स गए तो बहुत जल्दी पिघलने लगे, उससे क्या हो गया कि और ग्लेशियर्स टूटने लगे, और समुद्र का एक्सपेंशन, जिसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, समुद्र भी पानी जब गर्म करते हैं, आप अपने घर में पानी गर्म करेंगे तो एक बर्तन में पानी गर्म करने से वो फैल जाता है, उसमें एक्सपेंशन होता है, तो समुद्र एक्सपैंड हो रहे हैं और समुद्र अपनी सीमा लांघ करके आसपास के इलाकों में घुस रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप, जिसको हम आइलैंड्स कहते हैं, जो समुद्री आइलैंड्स हैं, वो
1: जी
0: डूब गए हैं, या उनके उनके ज़मीन में समुद्र बहुत तेज़ी से इंग्रेस कर रहा है, घुस रहा है, उससे उनके जीवन को, उनके अस्तित्व को संकट खड़ा हो गया है।
1: जैसे सर आपने बताया, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और जो तटीय इलाके हैं वो डूब रहे हैं,
0: जी
1: इसके अलावा पर्यावरण और हमारे जीवन पर सर इसका क्या प्रभाव है?
0: देखिए, हम यहाँ मध्य प्रदेश में तो ग्लेशियर्स के पिघलने से बहुत सीधे रूप से प्रभावित नहीं है, लेकिन जो लोग, जैसे मैंने कहा, समुद्र के पास में रहते हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो लोग ग्लेशियर फेड रिवर्स पर, जिनका जीवन, जिनकी आजीविका निर्भर है, उन लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और अगर समुद्र से ग्लेशियर्स, पहाड़ों से ग्लेशियर्स अगर पिघलने लगे, तो नदियों में जल की मात्रा, उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो उसको वह पानी को वहन करने की जो क्षमता है उनकी, उस क्षमता से अगर ज़्यादा पानी आएगा

0: तो बाढ़ आएगी और बहुत सारे लोग उसमें परेशान होंगे, एक आपदा आएगी। और
1: जी
0: कहने को तो लगेगा कि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो ये मानव निर्मित
1: निर्मित
0: आपदा
1: लगता
0: है।
1: है जी। सर अंत में यह जानना चाहेंगे कि हम इस संकट से कैसे निपट सकते हैं।
0: ग्लेशियर्स को बचाना हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने कहा कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसके लिए हमको जलवायु परिवर्तन और अपनी पृथ्वी के तापमान को, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना होगा। और उसका एकमात्र वही कारण है कि हम अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाएं, हम ऐसे काम करें जिससे कि हमारा पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़े। आप जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान अभी करीब 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि पिछले जब से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है तब से लगभग 1.5 डिग्री बढ़ चुका है। सारी दुनिया ने पेरिस समझौते के समय एक संकल्प लिया था कि हम अपनी पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री से ज़्यादा अब नहीं बढ़ने देंगे और कोशिश करेंगे कि ये तापमान 1.5 डिग्री से ज़्यादा न बढ़े, मतलब 14 से 15.5 या अधिकतम 16 डिग्री हो। लेकिन जिस तरह का उत्सर्जन, मुझे कहने में ये संकोच भी है और दुख भी है कि जिस तरह का ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सारी दुनिया में हो रहा है, उससे लगता नहीं है कि हमने संकल्प जो लिया था पेरिस समझौते में हम उसको पूरा कर पाएंगे। आज ऑलरेडी दुनिया जो है 2 डिग्री से अधिक तापमान की दिशा में अग्रसर हो चुकी है। हमको तत्काल कुछ ऐसे, सारी दुनिया को तत्काल ऐसे प्रयास करने होंगे कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसको हम रोकें। और वो जब रुकेगा तभी ग्लेशियर्स के पिघलने की जो चुनौती है, जो समस्या है, जो एक बड़ी विशाल हमारे सामने प्रश्न चिन्ह लगा है, वो रुक पाएगा, तभी हम अपने अस्तित्व को, अपनी पृथ्वी को बचा पाएंगे।
1: सर सरकार तो इस दिशा में कार्य कर ही रही है, आमजन क्या करे कि वो भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।
0: देखिए, हर बूंद बूंद से खड़ा पड़ता है, तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि पर्यावरण पर उसका होने वाला प्रभाव कम से कम हो, जिसको हम फुटप्रिंट कहते हैं कि मेरा अपना फुटप्रिंट कितना है, क्या मैं जितना मेरी आवश्यकता है क्या मैं उससे अधिक चीज़ों का उपभोग कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी, चाहे वो बिजली का उपयोग हो, पानी का उपयोग हो, ऊर्जा के साधनों का उपयोग हो, कोई भी चीज़ है, आवश्यकता से अधिक अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा के उसका दुष्प्रभाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को अपने जीवन शैली में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, तभी हम इस पूरी चुनौती में अपना सार्थक योगदान दे सकेंगे।
1: सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसी के साथ हमारा यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: अनमोल धरा। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे हेमंत कुमार के गाए कुछ गीत।
1: जरा नजरों से कह दो जी।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपने हेमंत कुमार के गाए कुछ गीत सुने। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा है।

ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे धारावाहिक पंचतंत्र की तीसरी कड़ी।

0: नमस्कार श्रोतागण, आशा है आप सब सकुशल हैं एवं पंचतंत्र की महान कथाओं को सुनने के लिए व्यग्र होंगे, तो हम भी प्रस्तुत हैं। पिछली कथा में आपने सुना कि किस प्रकार अपने ही पैरों पर दमनक ने कुल्हाड़ी मारी। संजीवक और पिंगलक की मित्रता से सभी पशुगण दुखी थे। अब दमनक ने योजना बनाई कि किस तरह दोनों को अलग करें। करकट के संदेह करने पर दमनक ने कहा कि अगर योजना सुनियोजित हो तो वो अवश्य सफल होता है, जैसे कौलिक की कथा।
1: किसी नगर में कौलिक तथा रत्कार नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे, एक ही गांव में रहते थे। एक बार समीप के नगर में बड़ा सा मेला लगा, वो दोनों भी मेला घूमने गए। विभिन्न नटी नर्तक एवं चारणों से पूरा मेला सुशोभित था। अनेक देशों से आए दर्शनार्थी भी थे। तभी कौलिक ने सामने से एक विशाल हाथी पर चढ़कर एक अद्भुत सर्वलक्षण संपन्न सुंदरी राजकन्या को आते देखा। उसे देख उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया, होश खोकर धरती पर गिर पड़ा।
2: मित्र कौलिक उठो, क्या हो गया है तुम्हें? ये दशा कैसे हो गई तुम्हारी? तुम्हारे माथे पर भी पसीना आ गया है। उठो मित्र, उठो।
3: पानी, पानी, पानी।
2: ये लो पानी, लो लो। आराम से बैठो। कुछ स्वस्थ महसूस कर रहे हो?
3: हाँ मित्र, स्वस्थ तो हूँ, पर चैन नहीं है।
2: तुम इस तरह अकस्मात बेहोश कैसे हो गए?
3: मित्र, यदि तुम जानना ही चाहते हो तो मेरे दुख को सुनो। अगर तुम मुझे अपना मित्र समझते हो तो मेरी चिता सजाने का प्रबंध कर दो मित्र।
2: ये क्या कह रहे हो मित्र? अपने दुख का कारण मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने का उपाय

0: अवश्य करूंगा।
1: नहीं मित्र नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे दुख का कोई उपाय हो सकेगा। बस अब तुम विलंब न करके मेरे क्रियाकर्म की तैयारी करो।
0: मित्र कौलिक, चलो क्षण भर के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि तुम्हारा कष्ट असाध्य है, फिर भी एक बार तो मुझे बताओ, जिससे अपने को अक्षम मानकर मैं तुम्हारे साथ अग्नि में प्रवेश हो सकूं, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी सकूंगा।
1: सुनो मित्र, हाथी पर बैठकर जो कन्या मेले में दिखाई पड़ी थी, उसे देखने के बाद से ही कामदेव ने मेरी ये दशा कर दी थी।
0: ओ,
1: मैं उस राज कन्या के वियोग कष्ट को सहने में असमर्थ हूँ। मैं उसे अपनी बाहों में भींचना चाहता हूँ और जानता हूँ यह असंभव है, अनुचित है, परंतु क्या करूँ? कामाग्नि से जल रहा हूँ, क्या करूँ मित्र, क्या करूँ?
0: मित्र, यदि इतनी सी बात है तो समझो भाग्य से हमारा कार्य बन गया। आज ही उसी राजकन्या से तुम्हारा मिलन हो सकता है।
1: क्या क्या कह रहे हो रथकार? जिस अंतापुर में वायु को छोड़कर किसी का जाना संभव नहीं, वहां राजकन्या से हमारा मिलन कैसे संभव? कहीं कहीं तुम मेरा परिहास तो नहीं कर रहे हो मित्र?
0: नहीं नहीं मित्र, अब तुम देखो मेरी बुद्धि का चमत्कार।
2: और फिर कौलिक को सांत्वना देकर रथकार ने उसी क्षण वरुण वृक्ष की लकड़ी से दो भुजाओं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, किरीट तथा कौस्तुभ से युक्त एक यंत्र संचालित गरुड़ का निर्माण किया। फिर उस गरुड़ पर विष्णु के रूप में कौलिक को बैठाकर उसे यंत्र संचालित करने की विधि को दिखाते हुए कहा,
0: इस यंत्र द्वारा रात्रि के समय तुम अंतःपुर में प्रवेश करके अपने वाक चातुर्य से अपने को नारायण के रूप में प्रस्तुत करो।
2: रथकार की बात को सुनकर कौलिक विष्णु रूप में राजकन्या के महल में जा पहुंचा।
3: कौन कौन है वहां झरोखे पर?
1: मैं विष्णु हूँ। राजपुत्री, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं क्षीर सागर में लक्ष्मी को छोड़कर चला आया हूँ। मेरे साथ परमानंद का अनुभव करो सुंदरी।
3: भगवान भगवान, मैं क्या इतनी भाग्यवान हूँ? मुझे आपके दर्शन हुए, परंतु मैं मनुष्य योनि की हूँ, आप पवित्र हूँ, और आप तीनों लोकों में सबसे पवित्र हैं, वंदनीय हैं, अतः आपसे मेरा मिलन कैसे हो सकता है प्रभु, कैसे?
1: सुंदरी, तुम ठीक कहती हो, किंतु तुम मेरी गोप कुल से उत्पन्न राधा हो, मेरी प्रथम स्त्री हो। अब तुमने यहाँ पृथ्वी पर जन्म लिया है, इसलिए तो मैं भी यहाँ चला आया।
3: यदि यही बात है तो भगवान चलिए, हम पिता महाराज के पास चलते हैं, वे सारी बातें जानकर प्रसन्नता से मुझे आपके हाथों में सौंप देंगे।
1: प्रियसी, तुम्हारा कथन उचित है, परंतु अगर तुम्हें मुझ पर संदेह है तो चलो प्रिय, हम गंधर्व विवाह कर लेते हैं, और यदि फिर भी तुम प्रस्तुत नहीं हुई तो मैं तुम्हारे पिता का सपरिवार सर्वनाश कर दूंगा।
3: प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, आप क्रोधित ना हो प्रभु, आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूंगी।
2: राजकन्या ने कौलिक से गंधर्व विवाह कर लिया और उस दुष्ट कौलिक ने उसका कामदेव के शास्त्र के अनुसार उपभोग

0: किया। प्रातःकाल होने पर दूसरों की दृष्टि पड़ने से पहले ही अपने घर को लौट गया। अगले दिन पुनः राजमहल गया। इस प्रकार उस राजकन्या के साथ रहते हुए कौलिक का समय आनंद से बीतने लगा। शुरू शुरू में तो राजमहल में किसी को उसके आवागमन की भनक भी नहीं लगी, परंतु धीरे धीरे दास दासियों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। कंचुकियों ने भी राजकन्या के खंडित अधर को देखकर आपस में खुसुर-पुसुर करना प्रारंभ कर दिया।
1: अरे शला,

0: दास दासियों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। कंचुकियों ने भी राजकन्या के खंडित अधर को देखकर आपस में खुसुर-पुसुर करना प्रारंभ कर दिया।
1: अलीशला, क्या मैं जो देख रही हूँ तुमने भी वो देखा?
2: अरे अरे तनिक धीरे बोलो, कहीं ये बात महारानी के कानों में चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। वैसे मैंने तो ये पहले ही भांप लिया था। अब तो राजकन्या के अंगों में पुरुष साहचर्योत्तर लक्षण है।
1: परंतु मुझे ये समझ नहीं आता, चारों ओर से सुरक्षित इस अंतापुर में ऐसी घटना कैसे संभव है?
2: देखो कंचुकी, मुझे लगता है कि हमें महारानी को इस घटना से अवगत कराना चाहिए। वो हम पर कितना विश्वास करती हैं, हमें उन्हें अंधकार में नहीं रखना चाहिए।
1: मुझे तुम्हारी बातें ठीक लगती हैं। चलो, अब विलंब करना व्यर्थ है।
2: महारानी की जय हो।
3: शैला, कहो क्या संदेश लाई हो?
2: क्षमा चाहती हूँ महारानी, समझ में नहीं आता कि कैसे कहूँ, परंतु आपको सूचित करना भी आवश्यक है।
3: ऐसी क्या बात है, जो भी कहना है निर्भय होकर कहो, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है।
1: बात ये है कि हमने अपनी आँखों से तो कुछ नहीं देखा, परंतु कुछ संदेह है कि अंतापुर में राजकन्या के पास कोई पुरुष प्रवेश करता है। आपकी आज्ञा क्या है?
3: ये क्या कह रही हो, ऐसे लग रहा है मेरे कानों में किसी ने गर्म सीसा उंडेल दिया हो।
2: महारानी, हो सकता है कि ये सब सत्य न हो।
3: मेरे पैरों के नीचे से धरती फिसल रही है।
1: महारानी,
3: मगर ये बात सत्य है तो अनर्थ हो जाएगा, मुझे महाराज को सूचना देनी होगी।
2: महारानी,
4: असंभव, ये कैसे हो सकता है रानी, हमारी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती। ओह, अब क्या होगा, किस दुष्ट ने ऐसा कर्म किया, क्या उसे अपने प्राणों का तनिक भी भय नहीं? ओह, कन्या का पिता होना सचमुच दुखदाई है। चलिए महारानी, हम अभी राजकन्या से यथार्थ की जानकारी लेते हैं।
5: प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री।
3: पापिन, कुल कलंकनी, इस प्रकार तूने अपने शील का खंडन क्यों किया?
4: कौन है वो जो अपने प्राणों के मोह को छोड़कर इस दुर्ग समान अंतपुर में आने का दुस्साहस करता है?
3: बोल, सत्य बोल।
5: आप क्रोधित ना हो, अपनी पुत्री पर विश्वास रखें। आपके दिए संस्कार मैं भूली नहीं हूँ। माँ, यहाँ आने वाला पुरुष कोई साधारण मानव नहीं है, साक्षात विष्णु है। वही प्रतिदिन रात्रि के समय गरुड़ पर चढ़कर यहाँ आया करते हैं।
4: क्या कह रही हो पुत्री, ये कैसे संभव है, स्वयं नारायण यहाँ आते हैं? आपने हमें इस बात की जानकारी पहले क्यों नहीं दी, हम भी प्रभु के दर्शन कर लेते।
5: नहीं पिता महाराज, उन्होंने हमें निषेध किया था, मेरे अलावा वो किसी को दर्शन नहीं दे सकते, ना ही बात कर सकते हैं। मैं उनसे गंधर्व विवाह कर चुकी हूँ। पिताश्री, यदि आपको मेरी बातें असत्य लगती हैं तो आज ही रात्रि में छिपकर आप स्वयं अपने नेत्रों से नारायण के दर्शन कर सकते हैं।
3: महाराज, हम धन्य हो गए, आपकी भाग्य वृद्धि हो, साक्षात नारायण से हमारी कन्या ने गंधर्व विवाह किया है, ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है।
4: आप सत्य कहती हैं महारानी, आज हम दोनों भगवान नारायण को रात्रि में छिपकर खिड़की से देखेंगे।

0: वो देखिए महाराज, गरुड़ पर साक्षात विष्णु आकाश मार्ग से आ रहे हैं। वाह, अद्भुत।
1: हाँ महारानी, हम और हमारा कुल धन हो गए। इस ब्रह्मांड में मुझसे बढ़कर धनी और भाग्यवान कोई नहीं है। हमारी संतति का उपभोग स्वयं नारायण कर रहे हैं। हमारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होगा। अब मैं सारे संसार का स्वामित्व लूंगा और सभी मेरे दास होंगे। मेरा जमाता स्वयं विष्णु भगवान है। सारे सीमावर्ती राजागण मेरे अधीनस्थ होंगे।
2: राजा तो उन्मादित हो गए, सभी राज्यों पर चढ़ाई करने लगे, सभी के साथ युद्ध छेड़ दिया और वीर राजाओं के हाथों परास्त होने लगे।

0: पुत्री, तुम्हारे जैसी कन्या और विष्णु जैसे जामाता के रहते हैं, क्या यह संभव है कि राजागण मुझसे युद्ध करें और मुझे किले में बंदी बनाने का दुस्साहस करें? तुम जामाता से कहो कि मेरे शत्रुओं का विनाश कर दे, नहीं तो कल सूर्य उदय तक वो हमारे दुर्ग को नष्ट कर देंगे।
1: जी पिताश्री।

0: सुंदरी, रात्रि के इस मधुर बेला में तुम्हारा साथ कितना आनंददायक है। परंतु तुम शांत क्यों हो? कोई चिंता?
1: भगवान, भगवान आपके रहते मेरे पिता शत्रुओं से घिरे हुए हैं। ये कैसे संभव है? आप कृपया उनके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश कर दीजिए प्रभु।
0: सुभगे, तुम्हारे पिता के शत्रुओं की संख्या ही कितनी है? तुम निश्चिंत रहो, मैं क्षण मात्र में अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनको तृण की तरह छिन्न भिन्न कर डालूंगा।
1: हाँ भगवान, हाँ, आप नहीं करेंगे तो उनकी सहायता और कौन करेगा? कल प्रातःकाल दुर्ग में विनाश हो जाएगा प्रभु। दुर्ग के अंदर ईंधन रसद समाप्त हो चुके हैं। मेरी अवस्था देखिए, मेरी अवस्था को देखते हुए आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें।
0: सोचता हूँ, दुर्ग के टूट जाने पर तो राजकन्या भी छूट जाएगी, ये तो और भी उत्तम होगा। मैं आयुध करुण पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से प्रकट हो जाऊंगा। संभव है कि मुझे वासुदेव समझकर शत्रुपक्ष भयभीत हो जाए और राजा की सेना उसे परास्त कर दे। और अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो क्या? प्रिय, मेरे रहते तुम्हारी आंखों में आंसू, ये मेरे लिए असहनीय है। अब मैं तभी तुम्हारा दर्शन करूंगा जब संपूर्णतः शत्रुओं का विनाश हो जाए। तुम अपने पिता महाराज से कहो कि प्रातःकाल वो सेना के साथ निकलकर शत्रु पक्ष से युद्ध करें। मैं आकाश से उनके शत्रुओं को निस्तेज कर दूंगा, वे आसानी से परास्त हो जाएंगे।
1: प्रभु, प्रभु,
2: कौलिक के वचन को सुनकर राजपुत्री ने अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत सुना दिया। पुत्री की बात को सुनकर राजा बड़े प्रभावित हुए। उधर कौलिक भी शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को लेकर गरुड़ पर चढ़कर आकाश मार्ग से युद्ध करने के लिए चल दिया।

0: उधर एक मजेदार घटना घटी। त्रिकालदर्शी ने ध्यान लगाकर सारी घटना जान ली। उन्होंने गरुड़ से कहा,
1: हे गरुड़, क्या तुम्हें विदित है कि कौलिक काट के गरुड़ पर चढ़कर मेरा रूप धारण करके राजकन्या के पास जाया करता है?
2: हाँ देव, मैं उसके प्रत्येक कृत्य को जानता हूँ। उसका साहस अद्भुत है, परंतु अब क्या किया जाए?
1: मरने का निश्चय करके प्रतिज्ञाबद्ध होकर वह कौलिक आज युद्ध क्षेत्र में गया है, और यह निश्चित है वह आज वीर क्षत्रियों के हाथ से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त होगा।
2: किंतु भगवान, उसके मरने के बाद सभी लोग ये कहने लगेंगे कि क्षत्रियों ने मिलकर वासुदेव और गरुड़ दोनों को पराजित कर दिया। इस अपवाद के फैलते ही लोग हमारी अर्चना बंद कर देंगे। कोई उपाय कीजिए ना प्रभु।
1: आप सत्य कहते हैं गरुड़देव। आप तत्काल जाकर उस काष्ठमय गरुड़ के शरीर में प्रवेश करें।
2: जी।
1: सभी शस्त्रों को सजग करके मैं भी कौलिक के शरीर में प्रवेश करता हूं, जिससे वो शत्रुओं का विनाश कर सके।
0: और फिर स्वयं नारायण एवं गरुड़ ने सारे शत्रुओं को क्षण भर में परास्त कर दिया। राजा और प्रजा दोनों धन्य धन्य होने लगे।

0: वाह, आनंद ही आनंद है। ये तो मेरे पूर्व जन्मों का फल ही है कि तीनों लोकों के स्वामी आज मेरे जमाता है। उनके कारण ही मैं सीमावर्ती राजाओं को परास्त कर सका हूं। प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न है।
1: पिताश्री प्रणाम। आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब आपके जमाता आपसे मिलना चाह रहे हैं।
0: क्या? अहो भाग्य, अहो भाग्य, आज मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। प्रभु आइए, प्रभु पधारिए।
2: मुझे लज्जित न करें, मैं आपसे कुछ कहने आया हूं।
3: और फिर कौलिक ने महाराज को शुरू से अंत तक सारी घटना सुना दी। कौलिक के सत्य कथन को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने सोचा, ये शत्रुओं का विनाश करने वाला वीर, इससे सुयोग्य दामाद हमें कोई नहीं मिलेगा। उसने राजकन्या से कौलिक का विवाह करवा दिया। दमनक ने ये कथा सुनाकर कहा कि षड्यंत्र सुनियोजित ढंग से किया जाए तो ब्रह्मा को भी ज्ञात नहीं होता।

आगे करकट और दमनक क्या करेंगे ये आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र की तीसरी कड़ी। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया गया।

0: हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञान और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। और IPL में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में KKR और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। शाम के 5 बजने को है। मीडियम वेव पर

दोस्तों, आजकल ड्रोन सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत जरूरी हो गए हैं। ड्रोन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और इसमें युवाओं के लिए ढेर सारे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम निवेश में अच्छी कमाई और तेज तरक्की संभव है। कैसे, जानते हैं हमारी आज की युवाणी में। दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, ड्रोन का इस्तेमाल अब कई क्षेत्रों में हो रहा है। कृषि में किसान ड्रोन से दवा का छिड़काव करते हैं जिससे समय और पैसे दोनों बचते हैं। डिलीवरी कंपनियां भविष्य में ड्रोन से सामान पहुंचाने की योजना बना रही हैं। आपदा प्रबंधन में बाढ़ या भूकंप के समय ड्रोन से बचाव कार्य किया जाता है। इसके अलावा फिल्म निर्माण, रक्षा, निगरानी, मैपिंग और सोलर प्लांट जांच जैसे कामों में ड्रोन का बड़ा रोल है। तो इसमें क्या क्या जॉब्स मौजूद हैं, ये जानते हैं। दोस्तों, इसमें है ड्रोन पायलट, ड्रोन ट्रेनर, ड्रोन टेक्नीशियन और रिपेयरिंग, डेटा एनालिस्ट जो कि ड्रोन से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण करते हैं, ड्रोन सॉफ्टवेयर डेवलपर, ड्रोन सर्विस कंपनी शुरू करने वाले उद्यमी। दोस्तों, भारत सरकार ने ड्रोन नियम 2021 बनाकर इस क्षेत्र को आसान बना दिया है। अब 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति DGCA से लाइसेंस लेकर ड्रोन उड़ा सकता है। कई ITI, पॉलिटेक्निक और प्राइवेट संस्थान सस्ते कोर्स चला रहे हैं। इसमें 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप जॉब या अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कमाई की बात करें तो शुरुआत में 20,000 से 40,000 रुपए महीना आसानी से मिल सकता है। अनुभव के साथ 1,00,000 रुपए तक सैलरी या प्रति प्रोजेक्ट अच्छी कमाई संभव है। गांव कस्बों में भी कृषि ड्रोन सर्विस देकर आप अच्छा व्यवसाय चला सकते हैं। तो इसमें तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दोस्तों, 2025 से 2030 के बीच ड्रोन इंडस्ट्री भारत में हजारों करोड़ का

कारोबार करने वाली है। इसलिए अगर आपको टेक्नोलॉजी, उड़ान और नई चीजें सीखना पसंद है तो ड्रोन क्षेत्र आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। तो दोस्तों, आज पढ़ाई के साथ साथ ड्रोन कोर्स करके आप खुद को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। मेहनत और सही ट्रेनिंग के साथ ये क्षेत्र न सिर्फ रोजगार देगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा भी बनाएगा। तो अब आप भी अपने ख्वाबों की उड़ान भरिए एलिसा मेंडोसा और मोहित चौहान के गाए हुए इस खूबसूरत गीत के साथ।

दोस्तों, आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में संतुलित जीवन शैली मतलब बैलेंस्ड लाइफस्टाइल या हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी हो गई है। संतुलित जीवन का मतलब है काम, आराम, स्वास्थ्य, परिवार और खुशी के बीच सही तालमेल बैठाना। जब हम इन सब को संतुलित मतलब बैलेंस्ड रखते हैं, तब हम स्वस्थ, खुश और सफल रहते हैं। तो अगर आप भी हेल्दी, हैप्पी और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इनमें सबसे पहले है आपकी फिजिकल हेल्थ मतलब शारीरिक स्वास्थ्य। तो रोज कम से कम 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करें, चाहे वॉकिंग हो,

योगा हो या फिर जिम। साथ में अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं। ज्यादा जंक फूड से बचें। रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। आपने सुना होगा, तन चंगा तो मन चंगा। इसके बाद आती है आपकी मेंटल हेल्थ, मतलब मानसिक स्वास्थ्य। अब क्योंकि तनाव आजकल बहुत आम है, तो रोज 10 से 15 मिनट ध्यान मतलब मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। बुक्स पढ़ें, म्यूजिक सुनें या अपना कोई शौक पूरा करें। और हाँ, निगेटिविटी से दूर रहें और छोटी छोटी खुशियों को इम्पोर्टेंस दें। अब है आपके काम और आराम के बीच का संतुलन, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, काम तो जरूरी है, लेकिन काम के अलावा परिवार के साथ समय बिताएं, दोस्तों से मिलें और छुट्टियां मनाएं। ऑफिस के बाद फोन बंद करके परिवार के साथ डिनर करें। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है, वरना बर्नआउट हो जाता है। आपके रिश्ते और सामाजिक जीवन, मतलब रिलेशनशिप्स एंड सोशल लाइफ का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अच्छे रिश्ते हमारी जिंदगी को मजबूत बनाते हैं। माता पिता, लाइफ पार्टनर और बच्चों के साथ समय बिताएं और जरूरतमंदों की मदद करें, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। और ये सब होगा समय प्रबंधन, मतलब टाइम मैनेजमेंट से। आप हर दिन का प्लान बनाएं, जरूरी काम पहले करें और नहीं बोलना सीखें। दोस्तों, हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जीने वाले लोग ज्यादा एनर्जेटिक और क्रिएटिव होते हैं और बीमारियों से दूर भी रहते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वो अपनी लाइफ को मजे से जीते हैं। तो जब वो अपनी लाइफ को इतने अच्छे से जीते हैं, खुश रहते हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करें। रोज एक नई अच्छी आदत डालें। सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश ना करें। बस कोशिश करें कि जीवन के हर पहलू को थोड़ा थोड़ा समय मिले, क्योंकि हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। जब हम बॉडी, माइंड, वर्क एंड रिलेशनशिप्स को बैलेंस रखते हैं, तब लाइफ मीनिंगफुल और जॉयफुल बन जाती है। तो आइए आज से ही हम सब मिलकर संतुलित जीवन, मतलब हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाएं। और अब आपको सुनवाते हैं हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की खूबसूरत आवाज में ये मशहूर गीत।

0: और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं शिवांजलि तिवारी से आकाशवाणी के 90 साल होने पर हुई हमारी बातचीत के कुछ अंश।
1: मैं तो बचपन से ही इसके साथ बड़ी हूँ। पुराने जमाने में टीवी मोबाइल कुछ नहीं था, तब गांव कस्बे में आकाशवाणी ही सबसे बड़ा साथी था। मेरे दादाजी कहते थे, बेटा आकाशवाणी झूठ नहीं बोलता। आज के फेक न्यूज वाले समय में तो एक कितनी बड़ी बात है। 1947 की आजादी, 1962 का चीन युद्ध, 1971 की जंग, सब कुछ आकाशवाणी ने ही बताया। अब तो स्मार्टफोन आ गए, रील्स ने सब बदल दिया, लेकिन फिर भी आकाशवाणी का अपना स्वाद है। लोकल भाषाओं में कार्यक्रम, क्षेत्रीय गाने, संस्कृति बातें, ये सब मोबाइल वाले एप्स में कहाँ मिलेगा। मेरी माँ अभी भी दोपहर को महाभारत या पुरानी कहानियाँ सुनती है, शाम को युवावाणी, महिला सभा, चौपाल, गृहलक्ष्मी, यह सभी कार्यक्रम हमारा पूरा परिवार सुनता है। 90 साल में आकाशवाणी ने बहुत कुछ देखा है, ट्रांजिस्टर से लेकर अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तक। लेकिन जो चीज नहीं बदली है वो है विश्वसनीयता और भारतीयपन। आज भी दूर दराज के गांवों में जहां इंटरनेट नहीं पहुंचा, वहां रेडियो आज भी राज करता है। 90 साल मुबारक हो आकाशवाणी। उम्मीद है अगले 90 साल भी आप हमारा ऐसे ही साथ देते रहेंगे। आज इस तरह से आपसे बातें करके आपका हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।
0: दोस्तों, अभी आप शिवांजलि तिवारी को सुन पा रहे थे, जिन्होंने आकाशवाणी को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की खूबसूरत आवाज में ये मशहूर गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ समय हो चला है हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मोरते चित्रकला के बारे में। दोस्तों, मोरते चित्रकला एक ऐसी कला है जिसमें कलाकार बिना जीवित चीजों के चित्र बनाता है। इसमें फूल, फल, किताबें, बर्तन, बोतल, खिलौने या घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को सजाकर उनका चित्र बनाया जाता है। इसे इंग्लिश में स्टिल लाइफ पेंटिंग कहा जाता है। ये चित्रकला मुख्य उद्देश्य वस्तुओं के आकार, रंग, प्रकाश और उनके छाया को सुंदर तरीके से दिखाना होता है। मोरते चित्रकला सीखने से बच्चों और कलाकारों की देखने और समझने की क्षमता बढ़ती है। जब कोई कलाकार किसी वस्तु को ध्यान से देखता है, तब उसे उसकी बनावट, रंग और आकार का सही ज्ञान हो पाता है। यही कारण है कि ये चित्रकला कला सीखने की शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस कला में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है संतुलन और सजावट। कलाकार पहले वस्तुओं को अच्छे से सजाता है, फिर पेंसिल से हल्की रूपरेखा बनाता है, उसके बाद रंगों का उपयोग करके चित्र को आकर्षक बनाया जाता है। प्रकाश और छाया का सही उपयोग चित्र को जीवंत बना देता है। दोस्तों, मोरते चित्रकला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये धैर्य और एकाग्रता भी सिखाती है। इस कला को बनाने में समय और ध्यान दोनों की जरूरत होती है, इसलिए मन को शांत करने में भी ये मदद करती है। आज के समय में स्कूलों, आर्ट कॉम्पिटिशन और प्रदर्शनियों में मोरते चित्रकला का विशेष महत्व है। कई कलाकार इस कला के माध्यम से अपनी कल्पना और रचनात्मकता को लोगों तक पहुंचाते हैं। कहा जा सकता है कि मोरते चित्रकला एक सरल, सुंदर और उपयोगी कला है। ये हमें साधारण वस्तुओं में भी सुंदरता देखने की प्रेरणा देती है और हमारी कला प्रतिभा को निखारती है। ये कोई आज की नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी। आज की युवाणी आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: कवि श्री राग तेलंग।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्व होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी पहचान आपके विचार, अब हर घर तक पहुंचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:33 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आदमी सड़क का फिल्म का गीत। आवाज मोहम्मद रफी के है, वर्मा मलिक ने इस गाने को लिखा है और संगीत दिया है रवि ने।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म दूसरा आदमी से, आवाज़ें लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की हैं। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में कहा कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है जहाँ शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और चट और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू का प्रभाव रहा। और आईपीएल में आज शाम 7:30 ईडन गार्डन्स के केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति, विशेष भेंट वार्ता, यादें, अनुभव और बदलता प्रसारण परिदृश्य। इस विषय पर आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक श्री अनिल श्रीवास्तव से अमिता त्रिवेदी की बातचीत।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष और उसका स्वर्णिम सफर, ये हम सब के लिए एक बहुत गौरव का विषय है और जो इसके साक्षी बन रहे हैं, साक्षी रहे हैं, उनके लिए कुछ अतिरिक्त खुशी का विषय हो जाता है। और उस अतिरिक्त खुशी में भी थोड़ी

0: इसी खुशी और ऐड कर रहे हैं कि आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं अनिल श्रीवास्तव जी। आप यूं तो रिटायर्ड एडीपी रहे हैं, लेकिन इनका अनुभव आकाशवाणी के साथ लगभग 5 दशकों का है। और जब भी अनिल श्रीवास्तव जी को याद किया जाता है तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एक बेहतरीन कमेंटेटर के रूप में सबसे पहली छवि बनती है। आप कवि हृदय भी रखते हैं और बढ़िया कविताएं करते हैं और कला के कई रंगों से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी कि आपने मुझे आमंत्रित किया।
0: और आपका आना मुझे भी व्यक्तिगत रूप से उन पुराने दिनों की तरफ ले जा रहा है जहाँ से हम लोगों ने अपने नौकरी की शुरुआत की। और बहुत कुछ देख के, बहुत कुछ आपसे जानकर चीज़ों को आगे बढ़ाया है। लेकिन हम उससे भी पहले समय की बात करना चाहेंगे कि रेडियो के साथ आपका जो साथ था और जो 5 दशक का एक लंबा समय है, इसकी शुरुआत क्या किसी खास घटना या किसी खास शौक से जुड़कर हुई या ये एक सहज प्रक्रिया थी?
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल मेरी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया, क्योंकि जब मैं छोटा था, छोटा मतलब बहुत बच्चा नहीं था, करीब 14-15 साल का था, तो मुझे रेडियो सुन के ऐसा लगता था जैसे कि मतलब मैं सामने से किसी को सुन रहा हूँ और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर बाद में जब ट्रांजिस्टर आ गया तो मेरे पिताजी ने एक ट्रांजिस्टर खरीद के मुझे दिया और उस ट्रांजिस्टर को मैं रजाई के अंदर रख कर रात में सुना करता था। जब BSc पास किया, मैंने ग्रेजुएट हो गया जी, तो मैं ऐसे ही मार्केट में अपने एक फ्रेंड की दुकान में बैठा था, तो वहाँ एक अनाउंसमेंट आ रहा था रेडियो पर कि कैजुअल न्यूज़ रीडर, कैजुअल कॉम्पियर युवाणी के लिए चुने जा रहे हैं जी। तो मैंने एक कॉपी का पेज फाड़ के, तो उस पेज पर मैंने एक छोटा सा आवेदन लिख के स्टेशन डायरेक्टर को यहाँ पर भेज दिया।
0: अच्छा।
1: और मैं भूल भी गया, मुझे अचानक कॉल आया कि आप वॉइस टेस्ट के लिए आइए, और मुझे खुशी है कि मेरा वॉइस टेस्ट और रिटर्न एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया। पहले तो मैं कैजुअल कॉम्पियर बना युवाणी का, कैजुअल अनाउंसर भी रहा कुछ दिन, फिर कैजुअल न्यूज़ रीडर था। और उस समय शुरुआत हुई थी MSc की, MVM कॉलेज भोपाल में मैं पढ़ता था, तो मैं BHEL से साइकिल पर आया करता था MVM, और यहाँ पर न्यूज़ जो है वो 2 बार प्रसारित होती थी, सुबह और शाम को, जैसे आज भी होती है। तो मैं दोनों बुलेटिन के लिए आता था और साइकिल से सुबह सुबह यहाँ पर, फिर कॉलेज जाता था, फिर कॉलेज से यहाँ आता था, फिर यहाँ से घर जाया करता था। तो वो एक जो अपने आप में एक चाहत थी ना, अपने आप में एक इच्छा थी, वो पूरी हो रही थी। इसलिए ना कहीं थकान होती थी, ना कहीं कुछ। आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि जो पहला कैजुअल कॉम्पियर में मुझे 10 रुपये रोज मिलते थे, 14 दिन की बुकिंग एक साथ होती थी। अच्छा, तो वो 140 रुपये जो है ना 1972 में मेरे लिए बहुत बड़ी अमानत थी। ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत अमीर हो गया। अपने स्टूडेंट कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, मैं रोज उनको कुछ खिलाता पिलाता रहता था, तो बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे पास अपने पैसे हैं। और धीरे धीरे वो करके जब मैं न्यूज रीडर बना तब 22 रुपये रोज था
0: जी।
1: तो ये समय जो है मैंने देखा और इसी से मेरी शुरुआत हुई।
0: यहाँ पे 2 प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं। एक तो मैं ये जानना चाहूँगी कि चूंकि आप भोपाल में ही रहे, यहीं से पढ़ाई की आपने
1: जी,
0: तो भोपाल और आकाशवाणी का सफर लगभग लगभग साथ चला है
1: जी,
0: तो किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं?
1: देखिए अमिता जी, मैं आपको बताऊं कि मैं जुड़ा रेडियो से वो भोपाल से, और जो मैंने अवकाश प्राप्त किया वो भी भोपाल से
0: जी।
1: तो भोपाल का अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी जिंदगी में रहा है। लेकिन इस बीच मैं पूरे भारत के 10 केंद्रों पर ट्रांसफर हुआ
0: जी।
1: 10 केंद्रों में शिमला भी था, जलगांव भी था, गोवा भी था, जबलपुर भी था, अंबिकापुर भी था। इस तरह से हर क्षेत्र के कई अच्छे अच्छे रेडियो स्टेशन, टूरिस्ट स्पॉट्स वाले स्टेशन वहाँ पे मैंने सर्व किया
0: जी।
1: और मुझे बड़ी खुशी है कि हर जगह अलग अलग जगह होने की वजह से अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, तो उससे मैं जुड़ता गया, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमेशा होता है। और वही कारण है कि आज भी घूमने की इच्छा मुझे हमेशा रहती है कि भारत के हर क्षेत्र को मैं घूमूं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो समुद्र हो, जो भी क्षेत्र हो। तो आज भी वो भगवान की दया से वो बरकरार है और मैं लगातार घूमने में विश्वास करता हूँ।
0: वैसे भी शायद ऐसा कहा जाता है, कहीं मैंने पढ़ा था कि आप एक किताब के 20-22-50 पेज पढ़िए और 1 किलोमीटर

0: की यात्रा कर लीजिए, आपका अनुभव लगभग बराबर का
1: होगा। बिल्कुल सही आपने कहा है कि ये ऐसा ही है, और ख़ास तौर से जो गोवा का अनुभव था मेरा और जहाँ मैं सबसे लंबे समय तक रहा, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं 10 साल गोवा में रहा।
0: अच्छा।
1: 10 साल गोवा में रहने की वजह से कोंकणी, मराठी और अंग्रेजी का जो वहाँ पे वर्चस्व है उससे मैं जुड़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई यहाँ की संस्कृति पूरे भारत से अलग है, लेकिन फिर भी सब में एकता का भाव जो है वही है। और जो चीज़ आज हम हर राज्य में करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम UCC के नाम से जानते हैं,
0: जी
1: गोवा ऐसा प्रदेश है जहाँ की शुरू से UCC लागू है
0: जी।
1: तो ये एक ऐसा है कि जिसको कि देख के आप कह सकते हैं कि वहाँ की जो परंपराएं हैं उनको भी पूरे देश में लागू करने से काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा लगता है।
0: ये फ़ायदा तो बहुत बार समय के साथ ज़्यादा मुखरित हो पाता है
1: जी।
0: लेकिन आपसे ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे, या यूं कहिए कि ये फ़ायदा लेना चाहेंगे कि 72 से लेके 2026 तक का जो वक्त है
1: जी,
0: इसमें आपने 10 रेडियो स्टेशंस का अनुभव भी पाया है और अलग अलग पदों पर कार्य किया है, तो यदि हम क्रमिक बदलाव की बात करते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें थीं जो समय के साथ बदलती गईं और उसमें हमारे लिए क्या कुछ और बेहतर हुआ, हमारे लिए यानी रेडियो के प्रसारण की दृष्टि से।
1: देखिए, रेडियो के प्रसारण की दृष्टि से यदि कहा जाए तो जिस समय मैं आया उस समय केवल पत्रों पर आधारित ही जो प्रतिक्रियाएं थीं वो हम लोग प्राप्त करते थे
0: जी।
1: और उस समय भी हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि पूरे पूरे कमरे के जो रैक्स होते थे वो पूरे पूरे पोस्ट कार्ड से भरे रहते थे
0: जी।
1: तो हमें ये छाटना मुश्किल होता था कि ये कौन से पत्र हम शामिल करें कौन से नहीं शामिल करें, लेकिन ये क्रम जो है काफ़ी सालों तक चला
0: जी।
1: और हर क्षेत्र में, चाहे वो जिस केंद्र में भी मैं रहा, ये करीब करीब 80s-90s तक ये क्रम चलता रहा।
0: हालांकि अभी भी है
1: लेकिन
0: एक धार के रूप में।
1: जी हाँ, अब सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि लोग ये सोचते हैं कि पत्र लिखने से अच्छा है कि हम अपनी बात तुरंत पहुंचा दें, तो इस कारण से ये एक बदलाव देखा। दूसरा, आज हम लोग ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं
0: जी।
1: पहले हम लोग जिसको आउटसाइड ब्रॉडकास्ट कहते थे, ओबी रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग बड़ी बड़ी मशीनें लेके जाया करते थे, जो आज आप सोच भी नहीं सकते हैं उतनी बड़ी बड़ी मशीनें जो है ले जाना पड़ता था रिकॉर्डिंग करने के लिए। किसी भी व्यक्ति की यदि बाहर रिकॉर्डिंग करनी है वो आने में सक्षम नहीं है स्टूडियो, तो हमें वो मशीनें लेके जाना पड़ता था और उनकी रिकॉर्डिंग करते थे और फिर प्रसारित करते थे
0: जी।
1: मैं आपको ये बताऊं कि 72 से 76 तक तो मैं कैजुअल रहा, लेकिन 76 से मैं नियमित आकाशवाणी का एम्प्लॉई हो गया था और मेरी पहली पोस्टिंग अंबिकापुर में हुई थी, जो बिल्कुल ट्राइबल जगह थी और उस समय तो बिल्कुल ही ट्राइबल थी। मैं बल्कि मजाक में कहा करता था ये 2.5 सड़क का शहर है क्योंकि वहाँ 2 सड़क मेन थी और एक छोटी सी सड़क थी जिससे आकाशवाणी का रास्ता था, तो ये 2.5 सड़क का शहर जो है जहाँ मैं आया हूँ, और भोपाल से ही गया था, तो शुरू में तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ के लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी, क्योंकि वहाँ लोग सोच नहीं सकते थे कि आकाशवाणी भी यहाँ आ सकता है। हम लोग जब सड़क पे आकाशवाणी के कुछ लोग जाया करते थे तो लोग दरवाजा खोल खोल के देखा करते थे, वो देखो आकाशवाणी के लोग जा रहे हैं, और जिस दुकान में भी घुसते थे उस दुकान में इतनी खातिर होती थी कि यदि हमें कोई चीज़ पसंद नहीं भी है तो भी खरीदनी पड़ती थी।
0: अच्छा,
1: तो ये जो है एक हम लोग को बड़ा अच्छा अनुभव वहाँ पे मिला। और वहाँ जब 77 में मैं अंबिकापुर में था तो पहली प्रधानमंत्री की यात्रा वहाँ मोरारजी देसाई जी की थी।
0: अच्छा।
1: जशपुर एक जगह है अंबिकापुर के पास, तो जशपुर में वो आ रहे थे तो वहाँ मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। मैं 1 साल पुराना था तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन एक पैक्स इंचार्ज भी साथ में थे और 3 दिन पहले जशपुर की यात्रा शुरू कर दी थी हम
0: अच्छा।
1: लोगों ने वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है, जंगलों से होके जाना पड़ता था, तो वहाँ जब पहुँचे हैं फिर रिकॉर्डिंग हुई है वहाँ पर उनकी, तो वो मेरी पहली एक VIP रिकॉर्डिंग थी जो मुझे हमेशा याद रहती। उसके बाद तो मैंने लाल किला और राजपथ से जब कमेंट्री की तो सारे ही प्रधानमंत्रियों को देखा सामने से, लेकिन वो जो पहली हमने जो कवरेज किया था वो एक अपने आप में एक अलग अनुभव था।
0: अनुभवों की इस यात्रा में ऐसी ही कोई और घटना या कोई एक ऐसा संस्मरण जो आपकी कार्य प्रणाली को नई दिशा देता हो या एक नए मोड़ से गुजरा हो, कुछ ऐसी याद है? और
1: देखिए, याद

0: यादें बहुत हैं
1: जी।
0: लेकिन जब अंबिकापुर से मैं जबलपुर आया तो जबलपुर उस समय बहुत बड़ा शहर लगता था।
1: अच्छा।
0: और वहाँ की चकाचौंध जब मैं अंबिकापुर जाया करता था तो स्टेशन से देखा करता था ट्रेन से कि कितना बड़ा शहर है। और जब वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई अंबिकापुर के बाद में तब वहाँ का एक अनुभव अलग था। वहाँ पे लोग स्टूडियो में आराम से आया करते थे और बड़े बड़े हरिशंकर परसाई जैसे हास्य लेखक उनकी रिकॉर्डिंग करने का मौका मिलता था और भवानी प्रसाद जी का रिकॉर्डिंग करने का मौका मिलता था। इस तरह जो भी लोग आते थे जबलपुर वहाँ पे मेरे साथ में मेरे साथी लक्ष्मेंद्र चोपड़ा भी उस समय मेरे ही साथ थे तो हम दोनों मिल के जो हैं वो बहुत प्रोग्राम बनाया करते थे। और बदलाव की दृष्टि से कहूँ तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था बोलता खत।
1: अच्छा।
0: बोलता खत में ये था कि हम रोज किसी भी एक रिश्ते के खत लेते थे, जैसे माँ बेटे को लिख रही है या बेटा पिता को लिख रहा है या बहन को भाई लिख रहा है या जीजा साली को लिख रहा है या पत्नी पति को लिख रही है। तो वो बोलता खत में पत्र जो है वो 2 मिनट का पत्र होता था।
1: अच्छा।
0: और बिल्कुल जैसे कोई उस समय चिट्ठी आया करती थी, जिस तरह आप धीरे धीरे चिट्ठी पढ़ते हैं ना, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, इस तरह से जो पढ़ते हैं ना, उसी स्टाइल में वो प्रोग्राम मैं पेश करता था।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद उससे संबंधित एक गाना, तो वो प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हुआ उस समय। तो मैं बता रहा हूँ कि क्या महत्व था पत्रों का उस समय, कि उससे संबंधित हमें एक कार्यक्रम भी रखना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था लोगों के दिल में भी और लोग उससे जुड़े बहुत ज्यादा।
1: जी, श्रोताओं को प्रसारण से जोड़ना, श्रोताओं को आकाशवाणी से जोड़ना और जुड़े रखना। जुड़ते तो श्रोता बहुत तेजी से हैं, क्योंकि निश्चित रूप से जो चीज लगातार आपके घर तक पहुंच रही है उसने अपनी पैठ बना ली है, वो जुड़ाव तो रहता है। लेकिन ये जुड़ाव बरकरार रहे, उन्हें नया कुछ मिलता रहे, उन्हें उनके आसपास का मिलता रहे और वो बदलाव के साथ भी चीज़ों को महसूस करते रहें, इस सारी प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए किस तरह की कार्य प्रणाली हो और किस तरह की एक सोच होनी चाहिए आज भी?
0: देखिए, उस समय जो एक नई प्रणाली शुरू की गई थी, 2-वे ट्रांसमिशन, आज हम फोन इन प्रोग्राम बोलते हैं जैसे, या हम दूसरी तरह से लोगों से बात कर सकें, तो उस समय ये प्रोग्राम जब शुरू किया गया तो लोगों को बहुत पसंद आया
1: जी।
0: कि केवल ये नहीं है कि रेडियो अपनी बात कह रहा है, और किसी ने कहा भी है कि कम्युनिकेशन वो नहीं होता जो हम बोलते हैं, कम्युनिकेशन वो होता है जो हम श्रोता को समझा पाते हैं या श्रोता समझ पाता है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जब ये 2-वे ट्रांसमिशन का प्रचलन शुरू हुआ तब ये बहुत पसंद किया जाने लगा रेडियो में। लोग इंतजार करते थे कि हम अपनी बात जो है कैसे कहें, किसी एक विषय को भी कभी कभी रख देते थे, कभी कोई मनोरंजन की बात को विषय रख देते थे, कभी किसी की कोई भी समस्या हो उसकी बात हम करते थे और फिर उसका हम सेग्रीगेशन करते थे और बताते थे इस तरह की समस्या का समाधान आपको इस दिन हम बताएंगे, इस तरह की समस्या का समाधान हम आपको इस दिन बताएंगे, ताकि लोग हर दिन जुड़े रहें रेडियो से। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। आज हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम था उस समय के हिसाब से, लेकिन उस समय चूंकि वही साधन थे, जैसे आज हम मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, उस समय हम पत्रों के बगैर नहीं रह सकते थे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चेंज था जो आज भी कई जगह चल रहा है, बल्कि विविध भारतीयों में फोन इन प्रोग्राम आज भी चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहे हैं, सब जगह चल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम था।
1: प्रोग्रामर की दृष्टि से वो क्या चीज आप महसूस करते हैं जो आज के समय में होनी चाहिए और जो हमारे इस गौरवशाली इतिहास को और ऊंचाइयां दे सकती है?
0: देखिए, डेविड विलियम एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, सोशल साइंटिस्ट
1: जी।
0: उन्होंने कहा था, यदि आप लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं, यदि आप अपने मन को हल्का रखना चाहते हैं, यदि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो रेडियो सुने।
1: अच्छा।
0: तो ये एक बात जो है वो 100 साल पहले कही गई है, मतलब रेडियो के आविष्कार के जस्ट बाद में तब उन्होंने कहा था, क्योंकि आपको पता है कि मार्कोनी ने 1901 में रेडियो का आविष्कार किया। शुरुआत रेडियो तरंगों की तो 1887 से हो गई थी,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वो केवल समुद्र में संदेश पहुंचाने के लिए होता था।
1: जब
0: रेडियो का आविष्कार हुआ तब अमेरिका और फ्रांस ने इसका प्रसारण शुरू किया, खासतौर से सबसे पहले एफिल टावर से म्यूजिक प्रसारित किया गया था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रेडियो से जुड़ाव की इम्पोर्टेंस जो है वो कब समझी गई थी, और आज हम यदि उसी रेडियो को उसी तरह बनाए रखना चाहते हैं। तो आज तो हमारा मोटो भी यही है कि मनोरंजन भी होना चाहिए, सूचना भी होनी चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए।

0: चाहिए, तो
1: जी
0: ये चीज़ें जो हैं उसको ही एक तरह से आगे बढ़ा रही हैं।
1: शिक्षा और सूचना की बात यदि हम करते हैं और मनोरंजन की भी कहिए, तो मनोरंजन थोड़ा सा व्यक्तिगत होता जा रहा है क्योंकि स्मार्टफोन सबके हाथ में है और
0: जी
1: साधन बहुत सारे हैं,
0: जी
1: और सोशल मीडिया के कारण सूचनाओं का भी एक विस्फोट है।
0: जी
1: तो इस दौर में वो क्या चीज़ हो सकती है जो प्रभावी मनोरंजन या स्वस्थ मनोरंजन दे और सटीक सूचनाएं समय तक पहुंचा सके?
0: देखिए, सबसे पहले हमें अपना विश्वास श्रोताओं के मस्तिष्क में बनाए रखना होगा या बनाना होगा, अगर कहीं लगता है कि कम हो रहा है। यदि वो विश्वास बना रहेगा तो वो जो हम सूचना प्रदान कर रहे हैं उसी पर विश्वास करेंगे। आज इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। आज देख रहे हैं कि यदि लोगों के घुटने में दर्द हो रहा है तो आप खोलेंगे तो आपको घुटनों के दर्द की ही सारी दवाएं मिल जाएंगी। अब वो कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं किसी को नहीं मालूम, लेकिन यदि आकाशवाणी से कोई चीज़ प्रसारित होगी और उसमें जो चीज़ बताई जाएगी उस पर जो विश्वास लोग करेंगे, तो ये विश्वास बनाए रखने का जो काम है ये हमें अपना बनाए रखना चाहिए। और हमें किसी से एक होड़ लगा के कंपटीशन या प्रतियोगिता में नहीं शामिल होना है। लोग हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जो हैं वो अपनी तरह से प्रसारण करें, उसी से हमारी पहचान बनेगी और वही पहचान हमें आगे ले जा सकती है।
1: आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपका कमेंट्रेटर वाला एक पक्ष था, उस पक्ष की तरफ जुड़ने की कोई खास वजह रही या ये आपके शौक का ही विस्तार था और उस प्रक्रिया में आप शामिल
0: नहीं,
1: हुए?
0: ये एक नकल, एक्चुअली मैं शुरू से नकल
1: जी
0: करने की सोचता था। जब वो कोई बोलता था रेडियो पे, खास तौर से उस समय जसदेव सिंह वगैरह की आवाज़ सुनते थे,
1: जी
0: तो वो ऐसा लगता था कि मैं क्या बोल सकता हूँ, तो अकेले में बहुत बोलता था। लेकिन जब मैं शिमला में 1988 में गया, शिमला मेरी पोस्टिंग हुई जलगांव से, तो वहाँ एक स्टेशन डायरेक्टर थे प्रेम प्रकाश सेतिया,
1: जी
0: आज नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमसे जब बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम बोल सकते हो। तो वहाँ का स्टेटहुड डे था
1: अच्छा
0: हिमाचल प्रदेश का,
1: जी जी
0: कांगड़ा में, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ वहाँ बोलो और मैं देखता हूँ जो होगा मैं निपटूंगा। उन्होंने जो विश्वास दिलाया उससे मेरे मन में और विश्वास आया
1: जी
0: और मैंने वो कमेंट्री की और बहुत अच्छी रही। और वो जब कमेंट्री रिकॉर्ड होके, उन्होंने कहा मैं इसको दिल्ली भेज रहा हूँ, दिल्ली भेजा तो मैं नेशनल कमेंटेटर के
1: कमेंट्री,
0: रूप में ही पहली बार में ही अप्रूव हो गया।
1: अच्छा
0: तो उसके बाद तो फिर मौक़ों की कमी नहीं थी, लेकिन
1: जी
0: मेरा ये था कि मैं केवल नॉन स्पोर्ट्स कमेंट्री करता था और उसमें कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण आयोजन नहीं है भारत का जिसकी की कमेंट्री मैंने ना की हो,
1: जी
0: चाहे वो रथ यात्रा हो, फिल्म फेस्टिवल हो, टोटल सोलर एक्लिप्स हो, या मथुरा की जन्माष्टमी हो, आपने राम जन्म भूमि से कमेंट्री हो राम जन्म की, राजपथ से
1: जी
0: रिपब्लिक डे की कमेंट्री, रेड फोर्ट से स्वतंत्रता दिवस की कमेंट्री, तो हर तरह की कमेंट्री मैंने की। और प्लस कुंभ मेला जितने भी आयोजित हुए हैं,
1: जी
0: चाहे वो उज्जैन में हुए हों इस पीरियड में, चाहे इलाहाबाद में, तो वो मैंने सबकी कमेंट्री लाइव की है। तो उससे एक बड़ा विश्वास रहा।
1: जी वास्तव में लाइव कमेंट्री का रोमांच आज भी अलग तरह का
0: जी
1: होता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और जितना लाइवली या जितना सजीव वर्णन अपन कर पाते हैं और लोगों तक उसका असर पड़ता है या वो प्रभावित होते हैं, वो वास्तव में एक बहुत बड़ी कला होती है। तो इतनी सारी लाइव प्रसारण के बीच में क्या कोई घटना या कोई ऐसी बात है जिसे आप सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहेंगे?
0: देखिए, सबसे ज़्यादा कमेंट्री मैंने रथ यात्रा की है,
1: जी
0: और रथ यात्रा आपको पता है कि 1.5 किलोमीटर की एक सड़क है
1: जी
0: जिसको
1: जी
0: कि बड़ी सड़क बोलते हैं, ग्रैंड रोड बोलते हैं, और वहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोग उस 1.5 किलोमीटर की सड़क पे समा जाते हैं। अब आप टीवी में जब कमेंट्री कर रहे हैं तो वहाँ आप बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत लोग हैं, तो फ्रेम में जितने लोग दिखते हैं उतने ही लोग कल्पना नहीं कर पाते, उतनी
1: जी
0: जितना दिखता है उनको उतने
1: बस
0: ही देख पाते हैं।
1: जी
0: लेकिन जब हम रेडियो में बोलते हैं ना कि मैं देख रहा हूँ कि 1.5 किलोमीटर की इस सड़क पर 10 लाख दर्शनार्थी श्रद्धालु कतारबद्ध होकर यहाँ पर खड़े हुए हैं कि कब रथ बाहर आए, कब भगवान जगन्नाथ उनको दर्शन देने के लिए स्वयं बाहर आए। तो ये जब चीजें हम बोलते हैं ना तो लोगों की कल्पना अथाह कल्पना हो जाती है
1: जी।
0: लोग समुद्र जैसी कल्पना करने लगते हैं कि क्या ह्यूमन सी बन गया है क्या वहां पर। हर तरह से जो कल्पना का एक विषय है वो जो

0: वीडियो देता है ना, वो कोई और माध्यम दे ही नहीं सकता।
1: आपके एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय कह लीजिए या एस्पेक्ट की बात हो सकती है, वो ये है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन वाला कार्य भी बहुत लंबे समय तक संभाला है।
0: जी,
1: तो एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोग्रामर के लिए कितना आसान या मुश्किल हो सकता है, या क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो प्रोग्रामर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है?
0: देखिए, ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेटर कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता।
1: जी,
0: आप अगर हैं एडमिनिस्ट्रेटर, तो जब तक आपके सबॉर्डिनेट्स या आपके साथी या आपके जो हायर बॉसेस आपका साथ नहीं देंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कोई अच्छा कहला रहा है एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो लकी इसलिए है कि उस समय उसके साथ अच्छे लोग भी थे, और वो अच्छे लोगों के कारण वो नाम उसका हो रहा है। लेकिन रियली क्रेडिट जो है उनको जाता है जो उनके साथ काम कर रहे थे या जो उनको ऊपर से सपोर्ट कर रहे थे। तो इसलिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ मैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अच्छी टीम के साथ मैंने काम किया है, ये मेरी किस्मत अच्छी थी। और इस वजह से लोग अगर किसी चीज़ के लिए याद करते हैं, ख़ास तौर से मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो RTI में था।
1: जी जी,
0: जो RTI में मैं पूरे मध्य प्रदेश में, बल्कि दिल्ली तक में लोग मुझसे राय मांगा करते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम अगर अपील में गए हों तो हम जीते ना हों, मतलब एक भी केस ऐसा नहीं है मेरे कार्यकाल में कि हम लोग ना जीते हों। मतलब मैं समझता हूँ वो थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। कहते ना, अगर आपको समय के साथ चलना है तो आपको अपडेट होते रहना पड़ता है। उस समय मेरी उम्र 60 हो चुकी थी करीब करीब, लेकिन अपडेट होने के लिए भी कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो चलता रहता है क्रम, और वही कारण है कि जो आज आप कह रही हैं उसका क्रेडिट सबको है।
1: तो ये माना जा सकता है, या यूं कहिए कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी एक टीम वर्क है।
0: जी बिल्कुल,
1: और हमारी अच्छी टीम ही अच्छे प्रशासन की नींव रख सकती है या प्रशासन दे सकती है,
0: बिल्कुल
1: मान सकते हैं। इस समय मतलब वर्ष 2026 में जो रेडियो का एक 90 वर्षीय उत्सव मन रहा है, इसको लेके क्या विचार या क्या भावना आपके मन में आती है?
0: बहुत अच्छी बातें दिमाग में आती हैं, क्योंकि 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो बना, प्रसारण तो उससे पहले शुरू हो गया था 23 जुलाई 1927 में बॉम्बे में, जो IBC कंपनी थी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एक, उसने शुरू किया था। लेकिन 1935 में BBC से एक व्यक्ति यहाँ भेजे गए थे जिनका नाम लॉयनल फील्डन था। लॉयनल फील्डन ने यहाँ पे जो पहले यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष थे, CEO जिसे कह सकते हैं आज की उसमें, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो बनाने में उनका
1: योगदान
0: श्रेय है। और 1936 में 8 जून को भारतीय रेडियो यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के नाम से प्रसारण शुरू हुआ, और उस समय केवल 9 रेडियो स्टेशन थे पूरे भारत में। आज़ादी के समय 3 चले गए पाकिस्तान में, 6 भारत में रह गए, और आज के लोकल रेडियो स्टेशन मिला के 500 से ऊपर रेडियो स्टेशन है, 23 भाषाएं, 146 बोलियां इनमें प्रसारण करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब क्रेडिट वाली बात है कि इतने पीरियड में इतना बढ़ जाना। आज हमें लगता है 90 वर्ष बहुत लंबे हैं, लेकिन जो हमारे अचीवमेंट्स आप देखेंगे वो उससे बहुत बड़े हैं। तो 90 वर्ष में आसान नहीं है इतना कुछ फैलाना जो हमने करके दिखाया है, और इसी कारण आज हम श्रोताओं के मन में रच बस गए हैं,
1: उनके घर का, उनके परिवार का एक हिस्सा सा बन गए हैं।
0: जी, क्योंकि रेडियो जो है वो ऐसा है कि यदि कोई भी समस्या आती है, कोई भी मुसीबत का समय आता है, चाहे वो भूकंप हो, तूफान हो, सुनामी हो, कुछ हो, उस समय कोई माध्यम काम नहीं आते हैं, लेकिन रेडियो अपना प्रसारण जारी रखता है, बल्कि रात दिन जारी रखता है, ताकि लोगों को अपडेटेड सूचना मिल सके। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, और इसके कारण रेडियो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता।
1: भोपाल के परिदृश्य में यदि बात करते हैं तो कई सारी प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जैसे गैस ट्रेजेडी वाला समय गुजरा है, या प्रधानमंत्री की मृत्यु के समय का दौर रहा है। तो इस समय में क्या आपका कार्यकाल आकाशवाणी भोपाल में रहा है?
0: नहीं, इत्तेफाक से मैं उस समय यहाँ नहीं था, मैं जलगांव में था, लेकिन मेरा मन जो है वो भोपाल में ही था उस समय भी, क्योंकि मेरा पूरा परिवार भोपाल में था।
1: अच्छा।
0: मैं अकेला जलगांव में था उस समय।
1: जी।
0: लेकिन उस समय भी रेडियो ने, जो आकाशवाणी भोपाल ने कार्य किया, रात दिन यहाँ से प्रसारण हुए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।

0: वैसी मुसीबत तो भगवान ना करे कभी और आए, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत थी जिसमें कि कितने लोग ने अपने प्राण दिए, तो ये एक बहुत बड़ा कार्य था जो आकाशवाणी ने करके दिखाया था।
1: एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो को आपदा नियंत्रण के लिए भी बहुत बेहतर उपयोग में लाया जाता है, या यूं कहिए कि वो एक उसका स्तंभ बन गया है, जिस तरह वो अच्छी खबरें सही खबरें लोगों को पहुंचा रहा है, ठीक उसी तरह आपदा प्रबंधन भी रेडियो का एक बहुत बड़ा आस्पेक्ट है। तो उससे जुड़ी हुई कोई घटना आपके जहन में है क्या?
0: वही तो मैंने कहा ना कि आपदा के समय जो है वो रेडियो बहुत बड़ा, जैसे कि गुजरात में जब भूकंप आया था उस समय भी रेडियो ही केवल चल रहा था, और रेडियो ने ही लोगों को सारी सूचनाएं दी। और सुनामी जब आया था दक्षिण में तो उस समय भी यही हाल था, मतलब रेडियो ही सुन रहे थे लोग, कि उसी पर विश्वास था लोगों को। तब सोशल मीडिया नहीं था इतना, ना इतने प्राइवेट चैनल थे
1: जी,
0: तो ऑल इंडिया रेडियो का जो उस समय योगदान था वो कभी भी कोई नहीं भूल सकता। तो ऐसा विशेषकर मेरे साथ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी समस्या मूलक जगह पर मैं रहा हूँ और उस समय कुछ ऐसी घटना हुई हो, लेकिन हमेशा रेडियो से जुड़े रहने के कारण जहाँ भी कोई समस्या आई है तो रेडियो के बारे में सब कुछ जानना जो है, उत्सुकता जो है वो हमेशा रही, इसलिए जानकारी हमेशा रही।
1: निश्चित रूप से चलते चलते हम ये ज़रूर आपसे जानना या लेना चाहेंगे कि वो क्या शुभकामनाएं आप हमें आकाशवाणी को और सुनने वालों को देना चाहेंगे जो इस उत्सव की बेला में महत्वपूर्ण हो जाती है।
0: देखिए सबसे बड़ी बात वही है जो मैंने पहले कही कि हमें एक दूसरे से जुड़े रहना है, और उस जुड़े रहने के बीच में हम जो भी नया से नया होगा वो हम श्रोताओं के बीच लाएंगे। एक चीज़ और है, अभी एक नई टेक्नोलॉजी है DRM टेक्नोलॉजी। DRM टेक्नोलॉजी के सेट्स भी आने लगे हैं और उससे भी आज डिजिटल प्रसारण हो रहे हैं। DRM का मतलब है डिजिटल रेडियो मुंडियाल। DRM जो टेक्नोलॉजी है ये एक आकाशवाणी ने अपनाई है। तो इस तरह की जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं इनको अपनाते रहेंगे हम, लोगों से जुड़े रहेंगे, लोगों से जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे श्रोता हमारे साथ बंधे रहेंगे, और ऐसा मैं सोचता हूँ। और मेरी शुभकामनाएं भी सभी श्रोताओं के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं जो आकाशवाणी में इस समय कार्य कर रहे हैं, कि वो अपने आप को श्रोताओं से जोड़े रखें।
1: श्रोताओं का जुड़ाव, श्रोताओं का विश्वास और श्रोताओं से संबंधों का ही आधार रेडियो है। लेकिन यहाँ पर न चाहते हुए भी एक प्रश्न और पैदा हो रहा है कि जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्या उसमें प्रोग्राम या कार्यक्रमों की संवेदनाएं और जगह कम होती जा रही है, या उन्हें किसी नए रूप में, नए डिजाइन में सामने आना
0: चाहिए? देखिए हमेशा नए डिजाइन में आपको आना ही पड़ेगा। जब तक आप पुराने उसमें रहेंगे तब तक आप नहीं जुड़ पाएंगे। देखिए समय आगे बढ़ता जाता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता
1: जी।
0: यदि आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा, और इस चीज़ को हमें हमेशा समझना है, और शायद हम अभी तक समझे भी हैं इसको, तो इसीलिए हम साथ रहे हैं
1: जी।
0: और ऐसा ही हमें अपना संबंध बनाए रखना होगा, अपनी टेक्नोलॉजी को हमेशा परिमार्जित करते रहना पड़ेगा।
1: ये टेक्नोलॉजी चाहे तकनीकी हो या कार्यक्रमों के प्रसारण की हो।
0: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: समय सीमित है और समय ही बार बार ये इशारा कर रहा है कि इस बातचीत को विराम दिया जाए, अन्यथा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपकी उपस्थिति में जहन में आ रही हैं कि जिन्हें जाना और पूछा जाना चाहिए। लेकिन आपके इस कीमती वक्त का हम आपको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बीच बीच में यूं ही मार्गदर्शन और आपकी शुभकामनाएं हमें मिलती रहेंगी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी, और हमें आपने श्रोताओं से एक बार फिर जुड़ने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति, और इसमें आपने सुना यादें, अनुभव और बदलता प्रसारण परिदृश्य। इस विषय पर आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक अनिल श्रीवास्तव जी से अमिता त्रिवेदी की बातचीत आप सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हुए हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में हम आपको सबसे पहले आप सुनवा रहे हैं गंगा की सौगंध फिल्म का एक गीत। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और साथियों की हैं। अनजान ने इस गाने को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म मेरे सनम से। आवाज़ें हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। मजूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, ओपी नय्यर का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म गरम मसाला से। आवाज़ एक बार फिर आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की है। मजरूर सुल्तानपुरी का लिखा गाना है। आर डी बर्मन का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेराग का एक गाना। आवाज़ें आयशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

पसीना बड़ी खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: जान है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।
2: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत

0: टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुँच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास गणना प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने का विकल्प भी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले, विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की भी समीक्षा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार संचालित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान विकास, नवाचार, RDI निधि योजना के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत चित्र भारती। ये कार्यक्रम होगा 9:30 पर। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। साथ ही आप सुनेंगे 10 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित केवल्य कुमार गौरव का गाया ख्याल गायन। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। और 7:21 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगा। और 7:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगा। ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रम। और अब हम नजर डालते हैं कल यानी रविवार को प्रसारित होने वाले आकाशवाणी मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यक्रमों पर। 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12 बजे का समय है आपकी फरमाइश का और 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंचतंत्र की चौथी कड़ी। 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं दोपहर 2 बजे, 2:50 पर, शाम 5:33 पर, 6 बजे और रात 8:30 पर। 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगी। 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर आप सुनेंगे डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। इसमें आप सुनेंगे पीएम श्री योजना, इस विषय पर जानकारी। वाचक हैं अमिता त्रिवेदी और प्रस्तुतकर्ता मनीष गजभिये। रात 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। और रात 10 बजे आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरी सभा। कलाकार होंगे विवेक सोनकर, इनका आप सुन सकते हैं बांसुरी वादन। ये कार्यक्रम भी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। और कल सुबह प्रसारित होने वाले आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रम इस तरह हैं। सुबह 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होता है सुरमई सवेरा। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 9:15 पर, इसमें कलाकार हैं रहीमुद्दीन, इनसे आप सुनेंगे भोजपुरी गीत। और 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण। 10 बजे आप सुन सकते हैं जिले की चिट्ठी और 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे सामुदायिक गान शिक्षण पाठ, इसमें आप सुनेंगे असमिया गीत, रचना सतीश दास की है।

10:30 पर फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं और कल शाम 7:21 पर हम आपको सुनवाएंगे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा और 7:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले आज और कल के मुख्य कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

0: भारत की न्यायपालिका को 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाना होगा, कहा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड के हैग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा UPI ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा सिर्फ भारत में हो रहे हैं।
1: आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा UPI ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा केवल भारत में हो रहे हैं। और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है।
0: उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। डिजिटल बदलावों के इस दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। आज जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कहा कि तकनीकी प्लेटफॉर्म ऐसे हों जिन्हें ग्रामीण और तकनीक से कम परिचित लोग भी आसानी से समझ सकें। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री बेघवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की यह पहल साधारण नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले डिजिटल पुलिस नेटवर्क के उदाहरण के रूप में चंडीगढ़ का नाम लिया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश मिसाल बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विज्ञान और तकनीकी ने मानव जीवन को सरल बनाया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: खास करके आज के समय में जब FIR से लेकर के बीच की बहुत सारी कड़ी होती है, फॉरेंसिक लैब से लेकर के कई सारे प्रकार के तंत्र रहते हैं, उन सब के आधार पर हम त्वरित गति से जो जिसकी आवश्यकता उसको लाभ मिले उस तक मदद पहुंचाए। क्योंकि न्याय का मतलब ही है विलंब से छुट्टी, न्याय का मतलब ही है अन्याय से मुक्ति।
0: शिक्षा मंत्रालय ने देश में स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्नपत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब समाचारों, वक्त एक छोटे से विराम का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं

0: और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि डेंगू बीमारी से बचाव के लिए स्वच्छता, जागरूकता और सतर्कता बहुत जरूरी है। स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। प्रदेश के कटनी जिला चिकित्सालय सहित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविरों का आयोजन कर मरीजों की निःशुल्क डेंगू और मलेरिया की जाँच की गई। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के अधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसले में भोजशाला को राजा भोज के समय का वागदेवी का मंदिर माना और हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है। धार जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने कहा कि शहर में शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं।
1: शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, आम जनता अपना रूटीन वर्क, रेगुलर जो रूटीन वर्क कार्य करे वो कर सके, इस प्रकार का कोई भय ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार शहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लगभग 1000 का फोर्स हमें उपलब्ध कराया है, जिसको विभिन्न फिक्स पैकेट और सेंसिटिव एरियाज में लगाया गया है।
2: सीसीटीवी कैमरे
1: या देखिए, जैसे कि सीसीटीवी सर्वेलेंस के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, सोशल मीडिया पर लगातार पुलिस की नज़र बनी हुई है। किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि या कोई भी इस पर पोस्ट करता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
0: राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है जहां शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौके पर शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटों पर तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आगरमालवा जिले में शनि जयंती पर शनि मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू का प्रभाव रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। वहीं डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुर्णा जिलों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के मुख्य अभियंता शैलेंद्र शुक्ला द्वारा सागर जिले के खुरई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया। बच्चों में मानसिक क्षमता, स्मरण शक्ति और ब्रेन एक्सेस कौशल हेतु आगरमालवा में 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन हो गया। खंडवा में डोडवाली अमावस्या आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सीहोर के बुधनी सिविल अस्पताल में पोषण टोकरी वितरण कार्यक्रम किया और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। शिवपुरी कलेक्टर ने आज बिछोर में सनघाटा सिंचाई परियोजना अंतर्गत सनघाटा डैम का निरीक्षण किया। नीमच जिले में आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर जमुनिया कला के औषधालय परिसर में योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुना जिले में किसानों को कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से जिले के विकास खंडों में कृषि रथ के माध्यम से जागरूकता अभियान का शुभारंभ आज किया गया। मंडला में आयोजित आदि उत्सव के दूसरे दिन रामनगर में जनजातीय संस्कृति, इतिहास और गौरवशाली विरासत की छटा देखने को मिली। संपर्क अभियान 2026 के अंतर्गत अशोकनगर जिले में 11 स्थानों पर विद्युत समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। मीडियावेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:21 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा सुनवे वाले हमें सभी भैयन खो सभी बहनन खो आपकी अपनी पूनम बहन की प्रेम भरी नेह भरी राम राम। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जने खूब ही नौने हुओ और देखो कहा है कि बहुत ही जोर की गर्मी पड़ रही है। सो ऐसे गर्मी के मौसम में अपनों और अपने घर बारन को सोई बहुत ध्यान रख रहे हुओ। कैसे कि गर्मी को असर बढ़ते ही जा रहा है और तब तापमान है कि नीचे तो आबे को नाम ही नहीं ले रहा है, ऊपर ही ऊपर चढ़त जा रहा है। सो ई किला ने मौसम विभाग ने बचाव की एडवाइजरी भी जारी करी है। लोगन से कही है कि वे दिन भर पर्याप्त पानी पीवें, शरीर को ठंडो रखें, दोपहर के समय लंबे समय तक धूप में ना जावें, हल्के वजन के रंग के सूती कपड़ा पहनें और बच्चन को और बुजुर्गन को खास तौर पे ध्यान देवें। सो चलो सबसे पहले आप और उनको सुनवाते हैं जो देवी भजन अरविंद सोनी को गाओ भाव।

0: ग्राम सभा में अब बेरा हो चली है बुंदेली समाचारन की।
1: बुंदेली समाचार
0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। सबसे पहले बात करत हैं प्रधानमंत्री के नीदरलैंड दौरा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटन से निपटवे के लाने भरोसेमंद पारदर्शी और भविष्य के लाने तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाबे पे मिलके काम कर रहे हैं। अपने 5 देशन के दौरा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करत भय प्रधानमंत्री ने कही है कि दुनिया इस समय संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों को सामना कर रही है। उन्हें कही है कि यदि इन चुनौतियों को जल्दी समाधान नहीं करोगे तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकत है। अब बात करत है राष्ट्रीय सेमिनार की। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कही है कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालन की तरह 24 घंटा काम करवे वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने पड़े। डिजिटल बदलावन के ई दौर में आम

नागरिकन को भरोसा बनाए रखने के लाने भी उतना ही जरूरी है। आज जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कही है कि तकनीकी प्लेटफॉर्म ऐसे हों जिनमें ग्रामीण और तकनीक से कम परिचित लोगों को भी आसानी से समझाओ जा सके। उतना ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को सरल बनाओ है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके पहला नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में आयोजित सेमिनार में देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने फ्रेगमेंटेशन ऑफ फ्यूजन एम्पावरिंग जस्टिस बाय यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन को शुभारंभ करो। ई मौका पे एनुअल रिपोर्ट 2025 को भी विमोचन करोगो। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय डेंगू दिवस की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ावे और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लाने एकजुट होवे को आह्वान करो है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौका पर सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कही है कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार और सुविधाओं के संगे व्यापक जागरूकता अभियान के माध्यम से डेंगू के नियंत्रण के प्रयासन को मजबूत करवो जारी रखे भय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि डेंगू बीमारी से बचाव के लाने स्वच्छता, जागरूकता और सतर्कता भी जरूरी है। स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ जीवन को आधार हो सकत है। और अब बात कर लेते हैं धार की भोजशाला की। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसला के बाद आज भुनसारे श्रद्धालुओं ने अलग अलग समितियों के संगे पदाधिकारियों के संगे शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना करी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसला देते भय भोजशाला को राजा भोज को भोज के समय को वाघ देवी को मंदिर मानो हतो। हिंदू पक्ष को इतने पूजा करवे को अधिकार भी दे दो गो है। धार जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने कही है कि शहर में शांति बनाए रखबो और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करवे के लाने लगातार फ्लैग मार्च करे जा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं शिक्षा मंत्रालय की बैठक की। शिक्षा मंत्रालय ने देश में स्कूल छोड़वे बारे विशेष रूप से 14 से लेकर 18 साल के आयु वर्ग के बच्चन की बढ़त हुई संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त करी है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में भई एक उच्च स्तरीय बैठक में ई मुद्दा पर चर्चा भई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा सुई करी गई। और अब बात करते हैं वन स्टॉप सेंटर की। न्यायिक मजिस्ट्रेट बिंदु पटेल एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अतुल सेन द्वारा पन्ना शहर में स्थित वन स्टॉप सेंटर को निरीक्षण करोगे। ई मौका पे विधिक साक्षरता शिविर भी लगाओगे। उपस्थित कार्यकर्ताओं समेत महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न विधिक अधिकार और प्रावधान सोई बताए गए। प्रशासक कविता पांडे ने सेंटर द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी दी। इसके दौरान वन स्टॉप सेंटर स्टाफ भी उपस्थित रहो। और अब बात शनि जयंती की। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के संगे मनाई जा रही है। 13 साल के बाद एक विशेष संयोग बनो है जिते शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और बट सावित्री व्रत एक ही दिना मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौका पे शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटन पे तड़के से ही लाखन श्रद्धालुओं को सैलाब उमड़ पड़ो। आगर मालवा जिला में शनि जयंती के मौका पे मंदिरन में भीड़ देखी जा रही है। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर और सागर संभागन के जिलन में कितों कितों बसकारों दर्ज करोगो। खंडवा, रतलाम समेत कई जिलन में लू को प्रकोप सोई देखो जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान खंडवा, रतलाम समेत कई जिलन में लू चलवे की संभावना जताई है। उतर डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुर्ना जिलन में आंधी के संगे संगे बसकारों भी हो सकत है। और इके संगे बुंदेली समाचार समाप्त भाई।

0: बुंदेली समाचार।
1: भैया बहना हरों, भारत में हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, जिसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित करो जाते हैं। इको उद्देश्य है डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ावे और रोकथाम के उपाय सुझावो। जो दिना मानसून के पहले मक्षरन के प्रजनन को रोक के लाने और सफाई के महत्व पे जोर देते हैं। जा दिन को मनाया जावे को एक और उद्देश्य है डेंगू बुखार से बचाव के लाने लक्षण की पहचान समय पर इलाज के लाने लोगन को जानकारी दी जा सके। संगे संगे आपको बता दें कि डेंगू एडीज मच्छरन के काटवे से होवे वायरल संक्रमण है, जो रुके भय पानी में पनपत है। सरकार द्वारा 2010 से

प्रतिवर्ष मनाओ जात है। डेंगू से बचाव के उपायन में जल भराव रोक व कूलर टायर गमला या छत पे पानी जमा ना होने देवे। मच्छरन से सुरक्षा के लाने मच्छरदानी को प्रयोग करवें और शरीर को ढकवे वाले कपड़ा पहनवें और अपने आसपास के वातावरण को साफ सुई रखें। डेंगू के लक्षणन में हम आपको बता दें कि तेज बुखार होते हैं, सिर दर्द होते हैं और आंखन के पीछे भी दर्द होने लगत है, जोड़ दुखन लगत है, मांसपेशियन में दर्द होते हैं, त्वचा पर रैशेस आ जाते हैं और JEE के प्रमुख लक्षण होते हैं। सो जो है तो नुकसानदायक, लेकिन अगर समय पर जाँच कर ली जाए, समय पर लक्षण को पतो लगा लो जाए, सो ये बीमारी को दूर भी करो जा सकते हैं। सो चलो बातचीत तो अपन और भी करें, लेकिन पहले अपन सुन लेते हैं जो भजन अनरत लाल बैरसिया को गाओ भाव।

भैया बैनरों हमारी सरकार की कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो किसान भैया बहनों के फायदा के लाने चलाई जा रही हैं। क्लीन प्लांट प्रोग्राम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। जीखो, अगस्त 2024 में बागवानी फसलन के लाने वायरस मुक्त, रोग मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री सुनिश्चित करवे के लाने मंजूरी दी गई हती। ई के लाने 1765 करोड़ रुपया के बजट वाली योजना की मंजूरी दी गई। एशिया विकास बैंक के सहयोग से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जो लागू करी जा रही है, इको उद्देश्य किसानन की आय बढ़ावो और फसलन के और फलन के उत्पादन को बेहतर बनावो है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम को प्रमुख उद्देश्य है वायरस बीमारियों से मुक्त उपज देवे वाले पौधन को उपलब्ध करावो। इको लक्ष्य फसलों जैसे कि बादाम, सेब, अंगूर, आम, अनार, खट्टे फल, अमरूद, लीची, अखरोट ई तरह के फलन को उत्पादन बढ़ावो है। इको क्रियान्वयन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा करो जात है और इकेला ने भारत भर में 9 विश्व स्तरीय स्वच्छ संयंत्र केंद्र स्थापित करे गए हैं जो निदान उपचार मात्र पौधन के विकास के कार्य करत हैं। नर्सरियन को रोग मुक्त पौधा तैयार करवे के लाने प्रमाणित करो जावो भी इके अंतर्गत आत है। विदेशी किस्मों के लाने 2 साल के क्वारंटाइन समय को कम करके 6 महीना करवे को लक्ष्य भी ई के अंतर्गत रखो गए है। ई को अपनावे से किसानन के लाने बेहतर पैदावार होते हैं और उच्च आय के संगे संगे बेहतर गुणवत्ता मने फल को स्वाद, रंग रूप और पोषण को भी बढ़ावा सोई मिलत है। सो जो तो हती जानकारी और चलो अब आपको सुनवात है जो गारी बुंदेल सूट संग बुंदेल।

भैया बहना हरों, अब आपको हम कल के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। कल सवेरे 6:45 पे कृषि चर्चा में आप और सुन सकत हो खरीफ फसलों की बुआई हो तो उन्नत कृषि यंत्र ये विषय पर जानकारी डॉक्टर CR मेहता से। कल शाम के 7:21 पे ग्राम सभा कार्यक्रम में शाम के 7:30 से लेकर 8 तक हेलो ग्राम सभा को प्रसारण करो जय है। ई कार्यक्रम में कल को विषय है ग्रीष्मकालीन जायद फसलों में समसामयिक कार्य। ई कार्यक्रम में विशेषज्ञ हुए डॉक्टर अशोक वर्मा। सो आप और भी शाम के 7:30 से लेकर 8 के बीच फ़ोन कर सकत हो और विशेषज्ञ से अपने जिज्ञासाओं के समाधान पा सकत हो। और अब आँखों का जो सलाह दे देते हैं, हल्की सिंचाई करके मिट्टी में नमी बनाए रखें, गर्मी एवं नमी की कमी से बचाव करवें, खेत को खरपतवार मुक्त बनावें तथा कीटों जैसे कि मक्खी माहू फली छेदक की नियमित निगरानी सोई करवें, पीले चिपचिपे ट्रैप लगावें, प्रकोप होवे पे नीम के तेल की या इमाडाइक्लोप्रोडिक को छिड़काव करवें, पीच शिरा मोजेक से संक्रमित पौधन को तुरंत निकाल के नष्ट कर देवें, अनुशंसित उर्वरक को प्रयोग करवें, आम में पुष्पन अवस्था में नियमित सिंचाई करवें और मल्चिंग अपनाएं ताकि नमी की कमी ना हो पावे। सो ई के संगे आज को ग्राम सभा कार्यक्रम हम इतना ही समाप्त करते हैं। स्वीकार करो पूनम बैन की राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं एनकर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ श्रोताओं, आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें। हमारा नंबर है
2: 8860088827। जी हाँ 8860088827।
3: श्रोताओ, हमारे भारत को युवा देश माना जाता है। हमें युवाओं को नशे से बचाकर युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में प्रयोग करना है। आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 10 करोड़ लोग नशे की गिरफ्त में हैं, जिनमें अधिकतर युवा हैं। श्रोताओ, नशा एक अभिशाप है। यह एक ऐसी बुराई है जिसमें इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिए समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तंबाकू आदि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन जहरीले और नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचने के साथ ही इससे सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है। साथ ही स्वयं और परिवार की सामाजिक स्थिति को भी भारी नुकसान पहुँचता है। जो कोई भी नशे के चंगुल में फंस गया वह स्वयं को बर्बाद होता ही है, इसके साथ ही उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। नशा करने वाले व्यक्ति का सबसे बुरा प्रभाव

0: निपटनी और बच्चों पर पड़ता है। भारत के कई इलाकों में नशा करके औरतों के साथ बदतमीजी से बोलना, उनके साथ मारपीट करना जैसे आम सी बात है। नशा करने के बाद व्यक्ति को उनके व्यवहार का भी कोई होश नहीं रहता और नशा करने वाला व्यक्ति नशे का इतना आदी हो जाता है कि नशे का सेवन ही उसके लिए और उसके परिवार से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को सही समय पर रोकना, नशे की लत से बाहर लाने के लिए मदद करना अत्यंत आवश्यक है। अगर सही व्यक्तियों, परिवार, दोस्तों का सहयोग मिले तो नशे की लत से छूटा जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर और देखते हैं नशे का क्या प्रभाव है और नशा हमें किस हद तक बर्बादी तक पहुंचा सकता है। तो आज के हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है मेरी लत। रमेश एक दिन अपने काम से घर लौट रहा था, तभी उसे उसका पुराना जिगरी मित्र दिनेश एक दारू के ठेके के पास दिखता है।
1: अरे दिनेश, तू यहाँ? अरे कैसा है तू?
2: अरे रमेश, तू इतने समय बाद? मैं अच्छा हूँ, तू बता, तू कैसा है?
1: अरे यार, मैं भी अच्छा हूँ, पर तू यहाँ शराब की दुकान के बाहर क्या कर रहा है?
2: कुछ नहीं, यह सब छोड़, चल तू मेरे घर चल, बैठकर बात करेंगे।
1: अरे नहीं नहीं यार, इस समय तेरे घर मेरे घर से निकलवाएगा क्या?
2: मतलब?
1: अरे तेरी भाभी मुझे घर से निकाली देगी।
2: तेरी शादी कब हुई?
1: बस यार अभी 2 साल पहले।
2: सही है, बताया भी नहीं।
1: अरे यार माफ करना, कोशिश तो की थी पर तेरा नंबर या कुछ पता नहीं मिला।
2: चल कोई बात नहीं, अभी तू घर चल, आज लेट घर चले जाना।
1: चलो ठीक है।
2: अरे दिया, दरवाजा खोलो।
3: हाँ अभी आई।
2: ये देखो मेरे साथ कौन आया है, पहचाना तुमने?
3: रमेश भैया है ना।
2: अरे वाह, तुम कैसे पहचानी?
3: एक तो आपकी खुशी से, दूसरा पहले के कुछ फोटो देखे हैं तो बस अंदाजा लगा लिया। अब अंदर भी आ जाओ।
2: दिया जरा चाय नाश्ता बना दो।
3: हाँ अभी लाती हूँ।
2: और बता भाई कैसा है तू, और क्या कर रहा है आजकल, और पत्नी बच्चे कैसे हैं?
1: बस यार सब बढ़िया है, अभी कुछ 7-8 महीने पहले ही यहाँ के किसी पास के अस्पताल में नौकरी लगी, तब से बस यही कर रहा हूँ। हमेशा दूसरे रास्ते से घर जाता हूँ, लेकिन आज जब पहली बार यहाँ से निकला तो तुझे देखा और तू मिल गया।
2: हाँ यार सच में मैं तुझे बहुत याद करता हूँ।
3: ये लीजिए चाय नाश्ता तैयार है।
2: चाय पी ले, दिया चाय बहुत अच्छी बनाती है।
1: यार खुशबू तो अच्छी आ रही है। वाह वाकई में बहुत अच्छी चाय बनाई है भाभी। पर भाई अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे।
2: अरे इतनी जल्दी जा रहा है, खाना भी तो खाकर जाता।
1: नहीं नहीं भाई, खाने के लिए फिर कभी आऊंगा, बस अभी चलता हूँ।
2: ठीक है भाई।
1: अच्छा वैसे एक बात बता, तू जहाँ हम मिले थे वहाँ क्या कर रहा था?
2: अरे अरे कुछ नहीं यार, इन बातों को छोड़ तू।
1: सच बता दिनेश मुझे, डॉक्टर हूँ, पीने वाले को पहचान ही लेता हूँ।
2: ठीक है कल मिल सकता है वहीं पर?
1: हाँ ठीक है कल मिलते हैं।
2: दिया लाइट बंद कर दो, मैं सोने जा रहा हूँ।
3: अरे आपने खाना तो खाया ही नहीं।
2: मन नहीं है, तुम खा लो।
3: क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या, मुझे बताइए।
2: ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, जितना बोला उतना करो, समझी?
3: जी।
1: हाँ रमेश अब बता क्या हुआ।
2: क्या बताऊं यार, नौकरी सही नहीं चल रही है, एक नया बॉस आया है, हमेशा कुछ ना कुछ करके सबको नौकरी से निकाल रहा है, मुझे भी वार्निंग दी है, तो बस अपना गम दूर करने के लिए यहाँ आ जाता हूँ।
1: चाहे तू कुछ भी क्यों ना कर, पर यार शराब पीना किसी बात का समाधान नहीं है, और तू ऐसा कैसे कर सकता है यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
2: तो क्या करूँ यार?
1: अरे बस कर यार, उठ, और कितना पिएगा, अभी घर जा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ।
2: दिया, ओ दिया दरवाजा खोलो।
3: आज आप फिर से पीकर आए हो?
2: फिर से चपड़ चपड़ करने लगी तू?
3: मैंने क्या किया, मैं सही तो बोल रही हूँ, शराब पीना सेहत के लिए बहुत बुरा होता है।
2: चुप हो जा, ज्यादा मत बोल तू,

0: दिनेश, ओ दिनेश, अरे दरवाजा खोलो भाभी।
1: अरे रमेश भैया, आप आइए आइए।
0: नमस्ते भाभी, ये मेरी पत्नी है रिया।
2: नमस्ते भाभी।
1: नमस्ते।
2: अरे भाभी, ये आपके चेहरे पर क्या हो रहा है?
1: अरे अरे कुछ नहीं, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ।
0: भाभी, दिनेश कहाँ है?
1: वो तो अभी सो रहे हैं।
0: भाभी आप यहाँ बैठिए, ये दिनेश आजकल जो भी कर रहा है आप मुझे बताइए।
1: पता नहीं भैया, इनको क्या हो गया है आजकल। पहले तो ये बहुत सही थे, पर आजकल रोज रात को लेट आते हैं, रोज शराब पी कर आते हैं। मैं कुछ समझाती हूँ तो मुझे मारते हैं, पर अब घर में भी किसी चीज का उनको कोई होश नहीं रहता है। वैसे ही तनख्वाह बहुत कम है और अब तो जितनी आती है वो सब शराब में खत्म हो जाती है।
2: अरे अरे भाभी, आप रोइए मत, शांत हो जाइए।
0: अरे अरे भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ दिनेश से, मैं समझाता हूँ उसे। दिनेश उठ, उठ, तुझसे बात करनी है।
3: अरे भाई, तू सुबह सुबह यहाँ?
0: हाँ, इधर आ बैठ। ये सब क्या चल रहा है यार, ये तू क्या कर रहा है? शराब पीकर अपना सब कुछ खराब करना चाहता है। तुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है फिर भी तू उसकी परवाह नहीं करता। देख भाभी को, और तूने उन पर हाथ भी उठाया।
3: तो क्या करूं, घर आते ही शुरू हो जाती है, कुछ समझती नहीं है ये।
0: दिनेश, शराब न पीने की ही तो बात कहती है, और कुछ तो नहीं कहा ना, तो मैं भी तुझसे वही कहता हूँ, तो तू मुझे भी मारेगा?
3: भाई अभी मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, मुझे अच्छा लगता है शराब पीकर, मैं अपना गम भूल जाता हूँ। क्या गलत करता हूँ पीकर आता हूँ, आकर सो जाता हूँ चुपचाप।
0: यही तो गलत है यार, जो भी बात है बता, मिलकर कुछ समाधान निकालेंगे। पर ये इस तरह से शराब पीना कोई समाधान नहीं है किसी चीज का।
3: भाई प्लीज, अभी मैं कुछ समझने की कंडीशन में नहीं हूँ, बस अभी मुझे अकेला छोड़ दो।
0: ठीक है यार, फिर हम चलते हैं।
1: अरे आप लोग चाय नाश्ता तो करके जाइए।
0: नहीं भाभी, फिर कभी, अपना और दिनेश का ध्यान रखिए, और कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिए।
2: दिनेश भैया, शराब की वजह से आपने, आपकी पत्नी, आपका घर परिवार सब मुश्किल में है, सबसे ज्यादा तो आप खुद। आप समय लीजिए और सोचिए, और जल्दी से सही होकर हमें बुलाइए खाने पर।
3: जी भाभी जरूर।
0: ठीक है दिनेश, चलते हैं।
3: मेरी बेइज्जती करके खुशी मिल गई होगी तुमको, अब बस कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दो।
4: दिनेश परेशानियों व दफ्तर के खराब माहौल की वजह से पीना शुरू कर देता है और शराब पीने का आदि हो जाता है। दिनेश को उसके दोस्त, उसकी पत्नी सब समझाने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं समझता। शराब का सेवन और बढ़ता जा रहा है, उसका व्यवहार दिन ब दिन बदतर होने लगता है। अब आगे।
3: दिया, ओ दिया,
1: बस भी कीजिए आप, और कितनी शराब पियेंगे, आपकी हालत खराब होती जा रही है।
2: हेलो भाभी।
1: हेलो
2: भाभी, आप रो रही हैं? सब ठीक तो है ना?
1: रिया, इन्होंने बहुत ज्यादा पीना शुरू कर दिया है, कुछ खाते पीते भी नहीं है सही से। अब तो इनको उल्टियाँ होने लगी हैं और ये बस दिन भर शराब पीते रहते हैं।
2: ओहो भाभी, मैं रमेश को कहती हूँ, वो जरूर कुछ करेंगे।
1: प्लीज रिया, एक बार जरूर बोलिए रमेश भैया को।
2: हाँ हाँ भाभी, आप परेशान मत हो, मैं अभी उनसे बात करती हूँ, रुकिए।
1: थैंक यू रिया।
3: दिया, ओ दिया,
1: अरे ये क्या हो गया, खून, अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, रमेश भैया को कॉल करती हूँ, वो डॉक्टर है, वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। हेलो रमेश भैया।
0: हेलो। हाँ भाभी, भाभी क्या हुआ, आप इतनी घबराई क्यों है, सब ठीक तो है ना?
1: नहीं भैया, दिनेश लगातार शराब पी रहे थे कुछ दिन से और उन्हें उल्टियाँ हो रही थी, आज तो उनको खून की उल्टी हो गई है और वो बेहोश हो गए हैं।
0: अरे भाभी आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूँ।
1: भैया दिनेश ठीक तो है ना?
0: हाँ भाभी, अभी तो वो ठीक हो गया है, ज्यादा शराब पीने की वजह से बस लीवर में थोड़ी सूजन हो गई थी, पर उसे दवाइयाँ और ड्रिप चढ़ा दी है, थोड़ी देर में उसे अब होश भी आ जाएगा।
1: थैंक यू सो मच भैया।
0: नहीं नहीं भाभी, थैंक यू मत कहिए, इसकी जरूरत नहीं है।
3: दिया, ओ दिया।

0: ये मैं कहाँ हूँ?
1: अस्पताल में।
0: अरे रमेश तू?
1: हाँ मैं, देख दिनेश डॉक्टर हूँ मैं, इसीलिए मरीज का इलाज करना मेरा फर्ज है, इसके सिवा मैं तुझे नहीं जानता।
0: तू ऐसे क्यों बोल रहा है यार?
1: ऐसे नहीं तो कैसे बोलूँ, दोस्त तो है नहीं तू मेरा, अगर दोस्त होता तो एक दोस्त की बात मान लेता। कितना समझाया तुझे शराब मत पी, ये सिर्फ बर्बादी का रास्ता है, पर तुझे तो समझ ही नहीं आया।
2: और तू और शराब की लत में ऐसे फिर गए, अपने अपनी आप को भाभी का भी ध्यान नहीं रखा, क्या हालत हो गई देखो उनकी। और आपने उन पे हाथ भी उठाया? अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, उसके साथ मारपीट करना, ये तो सबसे ज्यादा बुरी बात है भैया।
0: दिया कहाँ है? दिया प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करूँगा।
1: नहीं दिनेश, हम सब तुझसे गुस्सा है।
2: हाँ और अब तो हम भाभी को भी लेकर जा रहे हैं, आप जितना मर्जी चाहे शराब पी लो।
1: हाँ यार, अब तो मैंने तेरे लिए 3-4 कार्टून और मंगवा लिए हैं।
0: अब से मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो दिया।
3: थैंक यू सो मच रमेश भैया और रिया भाभी, आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की, और दिनेश बहुत लकी है कि उनको आपके जैसे समझदार और अच्छे दोस्त मिले हैं।
1: अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, ये तो मेरा फर्ज था।
4: श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना आज की कहानी में, किस प्रकार तनाव में आकर दिनेश ने शराब पीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके वह शराब का आदी हो गया, और इसी लत की वजह से वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा।
5: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1।
6: हमारा फोन नंबर है
7: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
5: आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, भारत नीदरलैंड संबंधों में नया अध्याय पर चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। डॉक्टर अशोक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत धन्यवाद निखिल जी।
2: अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नीदरलैंड्स में हैं और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स में क्या कहा।
4: साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल AI समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी, और ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था। ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक भारत ने चलाया। जिस स्केल पर भारत डिजिटलाइजेशन कर रहा है वो अभूतपूर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत चला रहा है।

0: और हां, चांद पर भी भारत वहां पहुंचा जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया था।
1: ऐसे समय में जब तमाम हम चीजें देख रहे हैं, वर्ल्ड में कई सारी चीजें नजर आ रही हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है कितना महत्वपूर्ण और इसके मायने क्या हैं?
2: विश्व में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा जो ये वाला जो दशक है शायद ही आपदा का दशक माना जाएगा, डेकेड ऑफ क्राइसिस माना जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ पर आपदाएं आई हैं। एक तो पहले कोविड आया, उसके बाद युद्ध आया और अभी हम देख रहे हैं जो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्या पूरे विश्व में बहुत इसमें तंगी आ रही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की 5 देशों की यह यात्रा है, 15 मई से 20 मई तक ये हो रही है। कल प्रधानमंत्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में थे, अबू धाबी में थे, वहां पर उनके राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। केवल 2.5 घंटे का वहां पर उनका पड़ाव था, परंतु बहुत ही जिसे कहा जाए ठोस बात हुई और अपने संबंधों को बहुत तेजी से आगे लेकर जाया गया। और 4 देश जो है वो यूरोप के देश है, नेदरलैंड पहला पड़ाव है जहां पर कि वो आज है और कल यहां से स्वीडन में जाएंगे, फिर स्वीडन के बाद 2 दिन वहां पर रुककर गोटेनबर्ग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग को एड्रेस करेंगे और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन जो कि मोदरातना पार्टी से हैं उनके साथ उनकी बातचीत होगी। उसके बाद वो नॉर्वे जाएंगे ओस्लो में जहां पर कि उनकी बातचीत होगी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जॉन स्टोर के साथ और वहां पर भी जैसे नीदरलैंड्स में उनकी मुलाकात हुई है अभी वहां के राजा और रानी के साथ, वहां नॉर्वे में भी वहां भी उनके किंग और क्वीन के साथ उनकी मुलाकात होगी। वहां पर नॉर्डिक समिट भी वहां पर ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके बाद आखिरी पड़ाव होगा उनका इटली में 19 और 20 तारीख को। और सभी जगह जहां जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने द्विपक्षीय संबंधों को तो उसमें और ऊर्जा मिलेगी, परंतु मेरे विचार से एक संदेश पूरे विश्व को भी जाएगा जो भारत जो बदलता हुआ परिपेक्ष है उसमें बहुत ही एक्टिव है और अपने हितों को आगे ले जाने के लिए बहुत तेजी, बहुत ऊर्जा और बहुत सक्षमता से काम कर रहा है।
1: अशोक जी, आज प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। एक बड़ा स्टेटमेंट है उनका ये। आपको क्या लगता है कि कोविड महामारी और जो जारी संघर्ष है, ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियां हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है?
2: देखिए, बहुत ऐसे विषय हैं जिनमें कि हम नीदरलैंड के साथ अपने संबंधों को, सहयोग को बढ़ाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। जैसे हमारे सेक्रेटरी वेस्ट ने कल जब उन्होंने इसके ऊपर बातचीत की जो प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है उसको फोकस कहाँ पर रहेगा, तो उन्होंने कहा 3 T's पर रहेगा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट, क्योंकि हमारा टैलेंट वहां पर हर यूरोप के देश में जाता है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से जाते हुए कही, उन्होंने कहा ये जो सारा उनकी यात्रा हो रही है 4 देशों में, यूरोप के देशों में, वो इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो कि बिल्कुल ही एक ऐतिहासिक सहयोग जो अग्रीमेंट है वो इस साल के पहले 26 जनवरी को उसको पूरा किया गया। आपके सभी सुनने वालों को ये मालूम होगा बातचीत की शुरुआत, नेगोशिएशंस की शुरुआत 2007 में हुई थी, तो मतलब 19 साल के बाद इसको हम तोड़ तक पहुंचा पाए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व में जो बदलाव हो रहा है सबको चाहिए, और यही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा, जो हमको सप्लाई चेन्स ऐसी चाहिए जो कि रिलायबल हो, जो कि स्टेबल हो, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, और दोनों ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था $4 trillion से ऊपर है, यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को अगर देखा जाए तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था करीब $20 trillion के आसपास है, तीसरी सबसे विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जो इनका सहयोग होगा तो इन देशों के लिए बेहतर तो होगा परंतु पूरे विश्व में व्यापार को स्टेबिलाइज करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होगा।
1: अशोक जी, अभी आपने 3 T's का जिक्र किया और यूरोप की जब हम बात करते हैं तो लगातार बदलते हुए व्यापार नियम देखने को मिलते हैं, कार्बन टैक्स, सप्लाई चेन की बात होती है, जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी भी चर्चा में एक एजेंडा के केंद्र में रहती हैं। तो भारत और नीदरलैंड्स अपने साझेदारी को ऐसे में किन रणनीतिक स्तर तक ले जा सकते हैं?
2: इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, ये उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, परंतु हमको ये भी देखना है क्योंकि अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है तो हमारे अपने हित में है, और आपने देखा होगा जो चाहे वो SDG 2030 के हो या फिर हमने अपना जो एक कमिटमेंट दिया है कार्बन फ्री, कार्बन न्यूट्रल अपनी

0: इकोनॉमी को बनाएंगे बाय 2070। और हमने बहुत सारे ऐसे मापदंड किए हैं जो कैसे हम ग्रीन एनर्जी 2030 तक हम कैसे अपने 45% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को हम ग्रीन एनर्जी के द्वारा करेंगे। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी, आपको याद होगा 2015 में जब कॉप पेरिस में हुआ था, तो वो एक क्षेत्र है जिसमें हम आगे चल रहे हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र है, और जो इंडो पैसिफिक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक पोजीशन दिया है इंडो पैसिफिक के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं जो हमको फ्री, ओपन, स्टेबल, प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक की मांग है उनकी। नेदरलैंड्स तो अपनी गाइडलाइंस उन्होंने दी है, इंडिपेंडेंटली दी है 2020 में, और भारत का जो स्टांस है वो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, और इसीलिए उसमें हम उनके साथ सहयोग करते हैं। और टेक्नोलॉजी जहां बात है, स्टार्टअप्स की जहां बात है, भारत बहुत इसमें अग्रणी श्रेणी में आ गया है, बहुत तेजी से इसमें काम कर रहा है। और चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे वो यूपीआई हो, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जो करीब विश्व में जितना भी ये डीलिंग होती हो कैशलेस ट्रांजेक्शन की, तो उसमें विश्व में आधे से ज्यादा भारत में होती है हमारे यहाँ। तो हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और इन सब में जो यूरोपियन देश हैं, ये सब ही बहुत ही अग्रणी श्रेणी में हैं, और इनके साथ काम करके दोनों देशों के हितों को बहुत फायदा हो सकता।
1: अशोक जी, भारत और स्वीडन की अब हम बात करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगले अपने दौरे में स्वीडन पहुंचेंगे, तो वहां भी साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की बात जरूर होगी। तो इस यात्रा से क्या चीजें निकल करके आने वाली है, अगर मैं तकनीकी निवेश, रणनीतिक सहयोग और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों की बात करूं?
0: जहां तक टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन है, उसमें तो बिल्कुल सबसे आगे है, अग्रणी है। मैं रक्षा के क्षेत्र में भी वो बहुत आगे है, और अभी हमने ये 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के उसमें उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है साब, जो कि ग्रिपन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है, उनका यहाँ पर अभी पिछले साल इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में, जो कि हमारे रक्षा के संबंधों को बहुत आगे लेकर जाएगा। ग्रीन ट्रांजिशन में भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं स्वीडन के साथ, और इनको आगे और जोर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जब बातचीत होगी, जैसे मैंने कहा, गोटेनबर्ग में एक समिट को एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन, उसके साथ साथ यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन वो भी वहां पर होंगी, उनसे भी बातचीत होगी। तो जो हमारा इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, उसको भी आगे कैसे ले जाया जाए, इस क्षेत्र में कैसे आगे ले जाया जाए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। देखिए, ये वाले देश हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज, जिन्हें कहा जाता है, पांच देश हैं, आइसलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क है। इनके पास ये छोटे देश हो, इनकी छोटी जनसंख्या हो, छोटा इनका क्षेत्रफल हो, परंतु टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये बिल्कुल ही अग्रणी है। और स्वीडन तो और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो पहला इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था वो 2018 में स्वीडन ने ऑर्गेनाइज किया था, दूसरा वाला 2022 में डेनमार्क में हुआ था, और अभी जब नॉर्वे में फिर से तीसरा इंडिया ईयू नॉर्डिक समिट होगा, तो इसमें पांच देश के, जो पांच देश मैंने गिनाए हैं, उन सभी देशों के प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे, उनसे बातचीत होगी, और अपने संबंधों को इन सभी क्षेत्रों में आगे कैसे और ले जाया जाए और कैसे गहरा किया जाए, उसके ऊपर बातचीत होगी।
1: अशोक जी, बदलती हुई जो हमारी ब्लू इकोनॉमी, जिसमें तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल की बात हो, सस्टेनेबल फिशरीज की हम बात करते हैं, ऑफशोर विंड और ग्रीन शिपिंग, जो कि आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में नॉर्वे के साथ हमारी जो साझेदारी बढ़ रही है, उसको और प्रगाढ़ करने में प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, जहां तक आप नॉर्वे की बात करते हैं, और स्वीडन और फिनलैंड भी काफी हद तक उसी क्षेत्र में आते हैं, डेनमार्क भी उसी क्षेत्र में आता है, ये सब देश वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो चलते हैं। नॉर्वे में फॉसिल फ्यूल्स, गैस, ऑयल बहुत अधिक मात्रा में है, जो कि उनके नॉर्थ सी से, वहां से ऑफ सी जो उनके एक्सप्लोरेशन है, उससे लेकर उसका वो प्रयोग करते हैं। आपके सुनने वालों को ये मालूम होगा, जो जब रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूस से तेल लेना, गैस लेना बंद कर दिया था, तो तब नॉर्वे और डेनमार्क से बहुत मात्रा में यूरोप के देशों को यह सप्लाई स्ट्राइक हुआ था और नॉर्वे में 95% से ज्यादा जो वहां पर वाहन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मतलब वहां पर फॉसिल फ्यूल के से नहीं चलते हैं। और इसीलिए जब हम भी अपनी एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है।

0: ब्लू इकोनॉमी की आपने बात की है, और ब्लू इकोनॉमी में भी नॉर्वे बहुत ही अग्रणी है। फिशरीज में वो बहुत ही उसको माहिरता हासिल है। हमारे अपने क्षेत्र में तो हम जिसे कहा जाए पायरेसी है, मरीन डोमेन अवेयरनेस है, साउथ चाइना सी में है जिसमें हम क्वाड के माध्यम से हम सहयोग करते हैं और देशों के साथ, तो ये इन देशों के साथ भी उन्होंने कैसे इस दिशा में उन्होंने कैसे प्रगति की है उसको हम देख सकते हैं, उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे तो हमारे लिए वाटर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और वाटर के मामले में चाहे नीदरलैंड्स हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड, ये सभी देश, स्वीडन हो, इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रगति की है जिनके साथ हम बड़ा अच्छा अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं।
1: जी अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचेंगे और इटली के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको नई गति मिली है हाल के वर्षों में, तो ऐसे में शिप बिल्डिंग की बात हो, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में काम करने की बात हो, तो इटली के परिप्रेक्ष्य अगर मैं आपसे पूछूं तो इस दौरे का प्रधानमंत्री का क्या महत्व है?
0: जी, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम 2023 में, क्योंकि जॉर्जिया मलोनी वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं प्रधानमंत्री मोदी के, अगर देखा जाए 2023 से लेकर अभी तक 2026 तक 3 सालों में दोनों प्रधानमंत्री करीब 7 बारी एक दूसरे से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में 3 बारी वहां पर गए हैं, परंतु ये पहली बार उनका द्विपक्षीय वहां पर दौरा है, तो इसीलिए इसके ऊपर भारत और इटली के सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इटली सबसे एक बड़ी अर्थव्यवस्था है यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी इससे बड़े होंगे, परंतु इटली भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है, उससे हमारा सहयोग बड़ा अच्छा होता जा रहा है। अगर आप देखें यूरोपियन पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए 2024 में, तो वहां पर जर्मनी की पार्टीज हैं, फ्रांस की पार्टीज हैं, वो इतना अच्छा नहीं कर पाई, परंतु जॉर्जिया मेलोनी की जो पार्टी है उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, तो उनकी शक्ति जो है यूरोप में वो काफी बड़ी है, और भारत और इटली के बीच में चाहे वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात, तो उसमें भी प्रधानमंत्री मेलोनी बहुत ही एक्टिवली एंगेज्ड है, क्योंकि जो इटली के यहाँ पर मैरिटाइम एरियाज हैं, वेनिस है, जेनोवा है, फ्लोरेंस है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण इसमें काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री की यात्रा हमारे दोनों देशों के संबंधों को और यूरोप और भारत के संबंधों को आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगी।
1: अशोक जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद निखिल जी।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में एक गीत। इसमें बहुत सारी आवाजें हैं, इसमें आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गाना है, आर डी बर्मन का संगीत है, और ये फिल्म का नाम है कालिया। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने आशा भोसले, और दूसरी आवाज़ है इसमें आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफ़ी, नहीं शब्बीर कुमार की आवाज़ है। फिल्म का नाम है आग ही आग, फिल्म का नाम आग ही आग, और अनजान ने इस गाने को लिखा है। बप्पी लहरी का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नागिन से। आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें हैं। फरमा मलिक ने इस गाने को लिखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं नीरज का लिखा हुआ गाना, रोशन का संगीत, फिल्म का नाम नई उम्र की नई फसल, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

0: और अगला गाना लिया है हमने, एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसको आखिरी ख़त से हमने लिया है। गीत लिखा है कैफ़ी आज़मी ने, खय्याम ने इसको संगीत से सजाया है। आखिरी ख़त फिल्म का नाम है, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है।
1: और कुछ देर ठहर

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: भारत के संविधान की प्रस्तावना।
1: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत के संविधान की प्रस्तावना।

0: एक आवाज जिसने बदल दिया वक्त का सफर, एक सुर जिसने जोड़े हर दिल से रिश्ते, और अब पूरा कर चुका है अपना गौरवशाली 90 साल का सफर। हाँ श्रोताओं, यह है आपका अपना आकाशवाणी। 90 वर्षों से हर दिल की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं और ये समय होता है समाचार संध्या का, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। तो कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
3: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से

0: गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
0: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: And also infrastructure development that has happened.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्नपत्र

0: को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: and parts of the northeast. Thunderstorms with lightning and gusty winds are expected over several states, including Bihar, Odisha, Telangana, Maharashtra, Himachal Pradesh, and Uttarakhand during the next 2 to 3 days. The IMD has also predicted heat wave conditions in parts of Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, and Vidarbha tomorrow. Fishermen have been advised to avoid venturing into the South Bay of Bengal, Andaman Sea, and adjoining coastal areas due to squally winds till Monday. At the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, India's Sanjana has won 3 bronze medals. In the women's 77-kilogram category, Sanjana lifted 96 kilograms in the snatch, 124 kilograms in the clean and jerk, and a total of 220 kilograms to claim 3 bronze medals. In the Thailand Open Badminton, the Indian duo of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty entered the men's doubles final after defeating Malaysia's Goh Sei Fei and Noor Izzuddin in the semi-final in Bangkok today. The Indian pair won 19-21, 22-20, 21-16 in an 82-minute match to reach their first final of the season. In the final clash, the Indian duo will take on the Indonesian pair of Leo Roli Carnando and Daniel Martin. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders were 240 for 2 in 19.2 overs against Gujarat Titans at Eden Gardens when reports last came in. Earlier, Gujarat Titans won the toss and opted to field. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India and the Netherlands working together to build trusted future-ready supply chains calls India a land of opportunities in the 21st century. Tata Electronics and Dutch firm ASML sign agreement to boost semiconductor manufacturing in India. Delhi court sends prime suspect in NEAT paper leak case PV Kulkarni and co-accused Manisha Vaghmare to 10 days CBI custody. New Delhi rejects Indus Waters treaty award by the Court of Arbitration, calling it illegal. CBSE makes study of 3 languages compulsory for class 9th and 10th. And India's Sanjana wins 3 bronze medals in the women's 77-kilogram category at the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab. ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स भरोसेमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निज़ाम कायम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 21वीं सदी में भारत को मौकों की सरजमीन करार दिया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की कंपनी एएसएमएल ने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस के बड़े मुलजिम पीवी कुलकर्णी और साथी मुलजिम मनीषा वाघमारे को 10 दिन के लिए सीबीआई तहवील में भेज दिया है। भारत ने दरिया सिंध से मुतालिक काबी मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले को गैरकानूनी करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया है। सीबीएसई ने 9वीं और 10वीं क्लास के लिए 3 जबानों की पढ़ाई को लाजमी बना दिया है और गांधीनगर में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में खवातीन के 77 किलोग्राम जुमरे में भारत की संजना ने कांसे के 3 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स कई तरह के बुहरान और कुदरती आफात के तनाजुर में आलमी चैलेंजों से निमटने की खातिर एक भरोसेमंद शफाफ और मुस्तकबिल के लिए तैयार सप्लाई निज़ाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने 5 मुल्कों के अपने दौरे के तहत नीदरलैंड्स के शहर हेग में एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया मुख्तलिफ तरह के चैलेंजों का सामना करती रही है, जिसमें कोविड 19 आलमी वबा, मौजूदा महाजराई और तवानाई का बुहरान शामिल हैं।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर

0: पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि इन चैलेंजों से अगर तेजी के साथ ना निपटा गया तो आलमी सतह पर तरक्की के जो फायदे हासिल हुए हैं वो हाथ से निकल जाएंगे और आबादी का बड़ा हिस्सा गुर्बत में चला जाएगा। इक्तसादी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए आलमी कोशिशों को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स मजबूत सप्लाई निज़ाम कायम करने पर मुश्तरक तौर पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। जनाब मोदी ने भारत के बढ़ते हुए आलमी रोल पर भी जोर दिया और मुल्क को 21वीं सदी में मौकों की सरजमीन करार दिया जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी अकदार दोनों को अहम मकाम हासिल है।
0: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात की। जनाब मोदी नीदरलैंड्स के वजीर आजम रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान वसीतर ताल्लुकात उस्तवार होंगे। हाल ही में भारत और यूरोप के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता भी हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक और नीदरलैंड्स सेमीकंडक्टर साजो सामान तैयार करने वाली अहम कंपनी एएसएमएल ने भारत में चिप तैयार करने के सिलसिले में इश्तराक का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान इस मुआहदे का ऐलान किया गया। एएसएमएल लिथोग्राफी इक्विपमेंट के जुमरे में इजारादारी रखती है जो छोटे साइज के जदीद सेमीकंडक्टर की तैयारी में अहमियत का हामिल है। ये इश्तराक भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने की समत एक अहम कदम है जिसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी समेत अहम टेक्नोलॉजी शामिल हैं। एएसएमएल के सदर और सीईओ क्रिस्टोफे फोके ने कहा कि भारत के तेजी से वसत पा रहे सेमीकंडक्टर के शोबे से कई अहम मौके नुमाया हो रहे हैं और वो खित्ते में तवील मुद्दती शराकतदारी कायम करने के लिए पुरअज़्म हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने गुजरात के दौरे के दौरान जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने सीनियर अहदेदारान के साथ अहमदाबाद और गांधीनगर में कई मीटिंगें की और शहरी बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों और उनसे वाबस्ता कामकाज का जायजा लिया। जुनूब मगरबी जोन के दफ्तर में जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हल्के की जानिब से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों और पौधे लगाने के काम का जायजा लिया। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर की जदीदकारी और घाट लोदिया गोटा चांद लोदिया थलतीज समेत झीलों के इलाकों को एक दूसरे से मरबूत करने के सिलसिले में अहदेदारान के साथ तबादला ख्याल भी किया और इन कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। जनाब शाह ने गांधीनगर लोकसभा हल्के से नौ मुंतखबा 70 म्यूनिसिपल काउंसिलों से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र में आज पुलिस के सुपरिटेंडेंट एम नरेश ने कहा है कि ऑपरेशन अंतिम प्रहार के नाम से नक्सल मुखालिफ मुहिम के तहत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 दीगर के खुद सुपुर्दगी किए जाने के बाद गढ़चिरौली जिले से नक्सलियों का खात्मा हो गया है। मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब नरेश ने कहा कि गिरफ्तार किए गए नक्सलियों पर मजमुई तौर पर 64 लाख रुपए का इनाम था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने उनके पास से हथियारों समेत 65 लाख रुपए नकद भी जब्त किए। उन्होंने कहा कि डिविजनल कमेटियों के अरकान समेत 5 नक्सलियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की। उन पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। इस दौरान पुलिस सुपरिटेंडेंट ने वजाहत की कि हालांकि गढ़चिरौली से सरगर्म नक्सली खत्म हो गए हैं लेकिन नक्सली सोच मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में बायोलॉजी के सवालात लीक करने से वाबस्ता एक सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे नाम की यह मुलजिम महाराष्ट्र में पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर है। सीबीआई के मुताबिक वो नीट यूजी 2026 के इम्तिहान के अमल में शामिल थी और इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने उसे एक माहिर के तौर पर मुकर्रर किया था। सीबीआई ने कहा है कि उसने पुणे की मनीषा वाघमारी के जरिए नीट इम्तिहान के मुमकिन उम्मीदवारों को यज्जा किया था और पुणे की अपनी रिहायश

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: तारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश

कर रही हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जी.डी. माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 M.V. रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म A.V. मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म S.M. श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिल एक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।
2: तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा।
1: फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
3: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलईपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन, 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्क।

फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं।

0: संपादकीय, क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
1: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस

0: पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
2: मेरे पास माँ है।
1: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
3: तू न रोना के तू

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख से

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर मां के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में मां यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के सैफाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत

0: उस बेटे के साथ रहती हैं जो पुलिस वाला है।
1: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है, और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो।
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे, मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
3: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से

2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म एबीसीडी 2।
2: जब जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश। दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
1: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
0: ओहो,
1: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों, कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोग को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पर जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
0: जी।
1: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला रहा हूँ, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ मालूम नहीं।

पहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश।

0: उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विद मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरव अपने कार्य

0: कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पियासे, द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है।

0: Narendra Modi's visit to the Netherlands. ASML is known for having a monopoly in a category of lithography equipment which is critical for production of advanced small-size semiconductors. A Delhi court today sent the prime suspect in the NEET paper leak case P.V. Kulkarni and another accused Manisha Wagmare to CBI custody for 10 days. Special CBI judge Ajay Gupta ordered the remand after the probe agency submitted that the DO needed to be taken outside the national capital for further investigation and that the larger conspiracy had to be investigated. In IPL cricket, chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans were 177 for 1 in 16 overs against Kolkata Knight Riders in Kolkata when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 245 for 2 in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर इसी मीटर बैंड पर हम फिर हाजिर होंगे। तो अब इजाजत दीजिए जावेद खान को। जय हिंद।